0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयजशीतलां

एफएमबैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 8:56 होने वाले हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है शुभ विचार। इमानुएल कांट ने कहा है, एक झूठ से आदमी एक आदमी के रूप में अपनी मर्यादा का विनाश करता है। FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल का प्रसारण है। सवेरे के 9 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किसानों से परंपरागत खेती की ओर लौटने का आह्वान किया। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हुए। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्से तेज अंधड़ और बारिश से प्रभावित, आज 16 जिलों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। पांच

0: दिन के इस आयोजन में 70 से अधिक देशों के लगभग 500 एथलीट भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि प्रतियोगिता में पारंपरिक कलात्मक योगासन और लयबद्ध युगल सहित कई विधाएं शामिल होंगी। चैंपियनशिप में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर वर्गों में पुरुष और महिला एथलीटों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं होंगी। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्थानीय निकायों के लिए 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। उन्होंने इसे जमीन स्तर पर विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने आधुनिक शासन में तकनीक की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पंचायत प्रशासन में AI, डिजिटल उपकरणों और नवाचारों को अधिक अपनाने की आवश्यकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते। हम पंचायत के प्रतिनिधियों से आग्रह करें कि आप अपने पंचायत के आय के स्रोत में भी वृद्धि करिए, आप उसके लिए भी योजना बनाइए और उसको कार्यान्वित करने का काम कीजिए, तभी आप विकसित पंचायत के रूप में आपकी गिनती हो सके।
0: इस अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में 34 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। साथ ही नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी में 8 पंचायतों को पुरस्कार प्रदान किए गए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कल अलवर जिले के बगड़ राजपूत गांव में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कृषि गोष्ठी में उन्होंने किसानों को रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करते हुए परंपरागत खेती पद्धति की ओर लौटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेत का स्वास्थ्य सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। रासायनिक उर्वरकों के बहुत अधिक उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो रही है। इस दौरान मंत्री ने कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल अपने आवास पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही महिलाओं से संवाद किया। इसमें संबल सखी तथा माई भारत के माध्यम से समाज सेवा, कौशल विकास और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही महिलाएं शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार के क्षेत्र में उन्होंने प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाओं ने अपने विचार, अनुभव और समाज हित में किए जा रहे प्रयासों को मुख्यमंत्री से साझा किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। अभ्यर्थी 3 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन इस वर्ष 29 नवंबर को किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि इसमें राज्य सेवा के 192 और अधीनस्थ सेवा के 415 पदों पर भर्ती की जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत देश में उल्लेखनीय बदलाव आया है। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12,00,000 रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को

0: राहत पहुंचाई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने उप निरीक्षक दिनेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि अदालत ने दिनेश कुमार को 8 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। मामले में उसकी बहन निर्मा कुमारी की तलाश भी अभी जारी है। दोनों ने परीक्षा से पहले हल किया हुआ प्रश्न पत्र हासिल किया और उसी के आधार पर 15 सितंबर 2021 को आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा दी। और अब मौसम। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज अंधड़ और बारिश की गतिविधियां जारी हैं। आज भी कई स्थानों पर बारिश होने के समाचार हैं। सवाई माधोपुर में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है और बरसात हो रही है। बारह में शाम से शुरू हुआ बूंदाबांदी का दौर रुक रुक कर आज भी चल रहा है। हमारे भीलवाड़ा संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में तेज रफ्तार हवा के साथ कुछ देर झमाझम बरसात हुई।
1: बुधवार रात्रि को मौसम में पुनः परिवर्तन हुआ और गुरुवार सुबह भीलवाड़ा जिले के आसीन समूहगढ़ और गुलाबरा क्षेत्र में कुछ समय के लिए तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण आम जन को गर्मी से राहत मिली है। आज हुई बारिश के बाद अब किसान आगामी दिनों खरीफ की फसल की बुआई के लिए अपने खलिहानों की हकाई जुताई में जुट जाएंगे। लगातार 3 दिन पूर्व हुई बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा।
0: मौसम में आए इस बदलाव से तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर कल भी दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ज्यादातर हिस्सों में तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 43.7 डिग्री सेल्सियस के साथ जैसलमेर सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज भी 16 जिलों के लिए आंधी बारिश का येलो और 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाओं के साथ मध्यम से तेज बरसात हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना है। पाली में आज से 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो रही है। पुलिस लाइन हॉकी मैदान पर शाम को इसका उद्घाटन किया जाएगा। इससे पहले जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी ने टीम के टी शर्ट्स का विमोचन किया और मैदान का निरीक्षण किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों की 25 टीमें भाग लेंगी। 3 दिन चलने वाली ये स्पर्धा नॉकआउट पद्धति से होगी। वहीं पाली की नीलंजना चौधरी ने जकार्ता में आयोजित इंटरनेशनल रोलर स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना उनके निरंतर अभ्यास का परिणाम है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने किसानों से परंपरागत खेती की ओर लौटने का आह्वान किया। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हुए। और प्रदेश के ज्यादातर हिस्से तेज अंधड़ और बारिश से प्रभावित, आज 16 जिलों के लिए आंधी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। सवेरे की 9:10 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: सनम रे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। शान की आवाज में मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था और जीत गांगुली ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
5: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
6: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
5: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
6: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
7: सखी सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम में। अब समय एक और छोटे से अंतराल का है, फिर से हाजिर होंगे।

श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में आरक्षण फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। प्रसून जोशी ने इसे लिखा था और शंकर एहसान लॉय ने तर्ज बनाई थी। दोस्तों, आज महान पार्श्व गायक एसपी बाल सुब्रमण्यम का जन्मदिन है, उन्हें सादर नमन। एसपी बाल सुब्रमण्यम भारतीय सिनेमा के उन दुर्लभ गायकों में से हैं जिन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सहित कई भाषाओं में अपने मधुर आवाज से करोड़ों श्रोताओं के दिलों में अपना विशेष स्थान बनाया है। आपको याद दिला दें कि आज सुबह 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित होगा एसपी बाल सुब्रमण्य पर, जरूर सुनिएगा। अब चित्रलोक कार्यक्रम में एक और गाना।

हीर एक्सप्रेस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी सिमर कौर और नवेश रन की। हरमनजीत का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना। अब सत्यमेव जयते 2 फिल्म का ये गाना।

ज़ारा एहसान और जास मनक की आवाजों में ये सत्यमेव जयते टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार और संगीतकार तनिष्क बागची और जास मनक थे। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन से। अब चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की सविता सिंह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार और आप स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए, समृद्ध रहिए, इसी कामना के साथ आज यहीं से इजाजत लेते हैं। नमस्कार।

0: पापा
1: लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ,
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों गा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

0: लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट द फन।
0: दोस्तों आज के प्रोग्राम में फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक एस पी बाल सुब्रमण्यम।

0: शिवम सुंदरम।
1: 1981 की फिल्म एक दूजे के लिए अपने सुपरहिट गीत और संगीत के लिए भी जानी जाती है। इस फिल्म के गानों में अपनी आवाज देकर एसपी बाल सुब्रमण्यम ने हिंदी फिल्म संगीत प्रेमियों के दिलों में भी अपनी खास जगह बनाई और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए अपना दूसरा नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। इसके पहले 1980 में एसपी बाल सुब्रमण्यम को डायरेक्टर के विश्वनाथ निर्देशित तेलुगु फिल्म शंकरा भरणम के लिए भी अपने बेहतरीन गायन के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पहला नेशनल अवार्ड मिल चुका था और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बतौर सिंगर ख्याति पा चुके थे।

4 जून 1946 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के मूलापेटा में जन्मे एसपी बाल सुब्रमण्यम का परिवेश पूरी तरह से संगीतमय था। उनके पिता एक हरी कथा कलाकार थे और उन्होंने कई मंचित नाटकों में भी काम किया था। एसपी बाल सुब्रमण्यम की बचपन से ही संगीत में रुचि थी। यही वजह थी कि उन्होंने छोटी उम्र में ही हारमोनियम और बांसुरी बजाना सीख लिया था। हालांकि इंजीनियर बनने की चाहत में एसपी बाल सुब्रमण्यम ने अनंतपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हासिल कर लिया, लेकिन स्टडी के दौरान बीमारी की वजह से रुकावट भी आई, मगर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और इसी दौरान 1964 में एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेकर अवार्ड भी जीता।

गायन का सिलसिला शुरू हुआ तो तमाम एमेच्योर कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेकर एसपी बाल सुब्रमण्यम प्रोत्साहित होते रहे, आगे बढ़ते रहे और बाद में एक लाइट म्यूजिक ट्रुप के प्रमुख गायक बन गए। उस दौरान

दोस्तों एसपी बाल सुब्रमण्यम की फिल्मों में गायन की शुरुआत 15 दिसंबर 1966 में एक तेलुगु फिल्म से हुई। ये फिल्म थी श्री श्री श्री मर्यादा रामन्ना। उसके चंद दिनों बाद 1966 में ही कन्नड़ फिल्मों के लिए और 1969 में तमिल फिल्मों के लिए भी अपने गायन की शुरुआत करके एसपी बालसुब्रमण्यम चर्चा में आ गए। अपने दौर के दिग्गज कलाकारों जैसे जेमिनी गणेशन, शिवाजी गणेशन और एमजी रामचंद्रन की आवाज बनकर उभरे। एसपी बालसुब्रमण्यम को जी देवराजन ने मलयालम फिल्मों के लिए भी गायन के लिए इंट्रोड्यूस किया। एसपी बालसुब्रमण्यम उन दिनों साउथ में अपने गायन के चरम पर थे। व्यस्तता का आलम यह था दोस्तों कि 1981 में 8 फरवरी को 12 घंटे की अवधि में कन्नड़ भाषा में 21 गाने गाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। बाद में तमिल में एक दिन में 19 और हिंदी में भी 16 गीत एक ही दिन में गाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया।

उस दौर की साउथ की जानी मानी फीमेल सिंगर्स जैसे पी सुशीला, एस जानकी, वाणी जयराम और एल आर ईश्वरी के साथ भी एस पी बालसुब्रमण्यम की बेहतरीन ट्यूनिंग रही और उन्होंने तमाम युगल गीत गाए। आगे चलकर महान संगीतकार बने इलैया राजा के साथ एस पी बालसुब्रमण्यम का जुड़ाव बहुत पहले से रहा है, जब इलैया राजा उनके ऑर्केस्ट्रा ट्रुप में महज हारमोनियम और गिटार वादन किया करते थे। उनका यह जुड़ाव बाद में बना रहा और कई गीतों को रचकर और भी पक्का हो गया। 1989 में एसपी बालसुब्रमण्यम ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को अपनी आवाज दी। फिल्म थी मैंने प्यार किया। फिल्म के साथ साथ गानों ने भी धूम मचा दी थी। इस फिल्म के दिल दीवाना गाने के लिए एसपी बालसुब्रमण्यम को फिल्म फेयर के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।

बाद में सलमान खान के लिए ही एसपी बाल सुब्रमण्यम ने हम आपके हैं कौन फिल्म के गाने गाए, जो सुपर डुपर गीतों की श्रेणी में शामिल हो गए।

दोस्तों यहाँ काबिले जिक्र है कि एस पी बाल सुब्रमण्यम को कई लोग बतौर गायक ही जानते हैं, जबकि वो एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, वॉइस एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। कमल हसन, रजनीकांत, सलमान खान, के भाग्यराज, मोहन, अनिल कपूर, गिरीश कर्नाड, जेमिनी गणेशन, अर्जुन सरजा, नागेश, कार्तिक, रघुवरन जैसे हिंदी

और साउथ के तमाम कलाकारों के लिए साउथ की विभिन्न भाषाओं में वॉइसिंग भी कर चुके हैं एसपी बालसुब्रमण्यम। विभिन्न भारतीय भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गीत गाने वाले एसपी बालसुब्रमण्यम को अब तक 6 बार बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। एक दिन में अधिकतम गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वो बना चुके हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से तेलुगु सिनेमा का नंदी अवार्ड्स लगभग उन्हें 25 बार हासिल हो चुका है। फिल्म फेयर अवार्ड, साउथ फिल्म फेयर अवार्ड्स, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों के और भी कई अवार्ड्स हासिल कर चुके एसपी बालसुब्रमण्यम को भारत सरकार द्वारा सन 2001 में पद्मश्री और सन 2011 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन एसपी बालसुब्रमण्यम अपने सबसे बड़े अवार्ड को मानते हैं अपने प्रशंसकों की गुनगुनाहट के जरिए, वो जो उनके गीत गुनगुनाकर खुशियों में डूबे रहते हैं।

दोस्तों, एसपी बाल सुब्रमण्यम एक बेहतरीन गायक होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी हैं। उनकी पत्नी हैं श्रीमती सावित्री, एक बेटी है पल्लवी और एक बेटा है एसपी बी चरण, जो खुद भी पार्श्व गायक और फिल्म प्रोड्यूसर है। एसपी बाल सुब्रमण्यम ने फिर से एक बार हिंदी की ओर शुरुआत की 2013 में शाहरुख खान अभिनीत फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए भी पार्श्व गायन करके। संगीतकार विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में उन्होंने ये गीत गाया था।

एस पी बालसुब्रमण्यम दक्षिण भारतीय फिल्म संगीत तथा हिंदी फिल्म संगीत के इस महान पार्श्व गायक का निधन 25 सितंबर 2020 को हुआ। विविध भारती परिवार की ओर से एसपी बालसुब्रमण्यम की यादों को विनम्र नमन। हम तुम

0: था पार्श्व गायक एसपी बालसुब्रमण्यम पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: FM बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल। अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। सवेरे के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए विशेष कार्यक्रम योग वाणी।
1: आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ प्रस्तुत करता है विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ योग वाणी।

0: आज की इस कड़ी में हम जानते हैं योग से जुड़ी धारणाएं, भ्रांतियां और परंपराएं क्या हैं। पहले जानते हैं योग से जुड़ी धारणाएं और भ्रांतियां क्या हैं हमारी आज की योग शिक्षिका आशा जी कंवर से।
1: बहुत सी धारणाएं समय के साथ साथ प्रचलित हुई, जिन्होंने कुछ समय के लिए इसे जन सामान्य से जुड़ने नहीं दिया। पहली धारणा, योग अभ्यास के लिए व्यक्ति को घर बार छोड़कर जंगल या एकांत में जाने की आवश्यकता है। प्राचीन काल में यह विद्या गुरुकुलों में शिष्यों को सिखाई जाती थी और गुरुकुल जंगलों या एकांत स्थान पर होते थे, अतः इस तरह की धारणा विकसित हो गई, जबकि आज योग घर घर में प्रवेश कर चुका है। कुछ लोगों का मानना है कि योगाभ्यास केवल सन्यासी, योगी या साधु ही कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन या गृहस्थ जीवन योगाभ्यास में बाधक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जन सामान्य इसे अपनाकर स्वस्थ व खुशमय जीवन जी रहा है। तीसरी धारणा, लोगों का मानना है कि दुबले पतले लचीले शरीर वाले ही योगाभ्यास कर सकते हैं। इसके विपरीत, योगाभ्यास करने से हमारा शरीर सुदृढ़, स्वस्थ व लचीला बनता है। योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति की आयु को लेकर भी अनेक भ्रांतियां हैं, जबकि उचित निर्देशन के साथ, उचित परामर्श के साथ किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति योगाभ्यास करके स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। योगाभ्यास सिर्फ स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है, बीमारों के लिए नहीं, यह भी एक भ्रांति समाज में है। आज ये सिद्ध हो गया है, अनेकों व्याधियों का उपचार योग में निहित है।
0: हमारे जीवन को आनंदमय बनाने वाले योग की परंपराएं क्या हैं? अब यही जानकारी लेते हैं।
1: प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है व विशिष्ट है। अलग अलग प्रकृति, स्वभाव, पसंद नापसंद, परिवेश व वातावरण के अनुसार वह कार्य करता है और उसी के अनुरूप वह सृष्टि के साथ एकात्म का अनुभव करता है। इसे व्यापक रूप से चार वर्गों में विभाजित किया जाता है। कर्मयोग, जिसमें हम शरीर का प्रयोग करते हैं, ज्ञान योग में हम मन का प्रयोग करते हैं, भक्ति योग में भावनाओं का व क्रिया योग में ऊर्जा का। हम किसी भी एक का अनुसरण करके अन्य से भी जुड़ जाते हैं। इसे एक सरल से उदाहरण से हम समझ सकते हैं। आपको गुलाब जामुन का ज्ञान है, आप गुलाब जामुन के बारे में जानते हैं, यह है ज्ञान योग। उसे पाने के लिए आप प्रयत्न करते हैं, उसे घर पर बनाते हैं या हलवाई के यहाँ जाकर आप उसे लेकर आते हैं। ये सारी प्रक्रिया कर्म योग में आती है। उसके स्वाद को आप पसंद करते हैं, उसमें रस लेते हैं, ये हुआ भक्ति योग। और जिस आनंद का अनुभव करते हैं वो है क्रिया योग। समय के साथ साथ अलग अलग संप्रदायों, परंपराओं, दर्शनों, धर्मों व गुरु शिष्य परंपराओं के चलते भिन्न भिन्न पारंपरिक पाठशालाओं का उद्भव हुआ, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पातंजल योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, राज योग, जैन योग, बौद्ध योग आदि। प्रत्येक का अपना अलग दृष्टिकोण होते हुए भी सभी योग के मूल उद्देश्य मनुष्य को अर्थपूर्ण जीवन जीते हुए उस अंतिम सत्ता के साथ, शाश्वत सत्य के साथ स्थापित करने की ओर अग्रसर करते हैं।
0: आज की कड़ी में हमने योग से जुड़ी धारणाओं और परंपराओं की जानकारी प्राप्त की हमारी आज की योग शिक्षिका आशा जी कंवर से। योग वाणी की अगली कड़ी में कुछ और जानकारी लेकर कल इसी समय हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम योग वाणी FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का ये मीरा चैनल है। कुछ ही पलों में श्रोताओं आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: फिल्म संगीत कार्यक्रम में

आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, फूलों की मुस्कान कहती है कि भक्ति से मन को भर लो तुम, प्रेम दया और सेवा के पथ पर जीवन को सुंदर कर लो तुम। जब जब मन में दीप जलेगा, सत्य का पथ दिख जाएगा, प्रभु की असीम कृपा से ही हर संकट दूर हो जाएगा।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे भाभी की चूड़ियां फिल्म का गीत। श्रोताओं, धड़कनों की हर सरगम में एक मीठा सा संदेश छुपा है। न कोई शोर न कोई दावा, न कोई शोर न कोई दावा, बस विश्वास का साथ रहे। जीवन की हर कठिन डगर पर प्यार सदा एक साथ रहे।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, यूं तो प्रेम की अनुभूति शब्दों की मोहताज नहीं होती, है ना? कभी दिल की धड़कने ही प्यार का रंग उड़ेल उड़ेल जाती है। वह रंग मौसम के साथ फीका भी नहीं पड़ता, बल्कि प्रेम, विश्वास और समर्पण के रंग में जीवन भर महकता रहता है।

लता मंगेशकर की आवाज में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे बंदिनी फिल्म का गीत। श्रोताओं फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं मीरा चैनल से। यूं तो श्रोताओं मुलाकात की कोई ना कोई वजह होती है, कुछ लोग राहों में मिलते हैं और कुछ लोग बिछड़ भी जाते हैं, लेकिन श्रोताओं कुछ ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं को लांघकर दिल में बस जाते हैं। उनका साथ मौसम की तरह नहीं बदलता बल्कि एक मधुर धुन की तरह जीवन भर गूंजता रहता है। वे रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस एहसास बनकर जीते रहते हैं और समय की धूल भी उन्हें ढक नहीं पाती।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में श्रोताओं आप सुन रहे थे मिलन फिल्म का गीत। चलती चलती राह में कितने मौसम आएंगे, कुछ सपने बिखरेंगे, कुछ नए फूल खिलाएंगे, पर इतना विश्वास रहे हर सुख दुख में तेरा मेरा साथ रहे।

लता मंगेशकर की आवाज में गाए सौदागर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का ये मेरा चैनल है। सवेरे की 10:30 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक

0: प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% GST लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: पापा लाइए 3000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
2: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ।
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: साज के साथ आवाज, शमा के साथ परवाना, फूलों के साथ खुशबू और जीवन के साथ तराना। वैसे ही हर घर की मुस्कान हर रिश्ते की पहचान नारी है। संघर्ष में शक्ति, ममता में सागर और सपनों की उड़ान है नारी। नारी के इसी बहुरंगी व्यक्तित्व, उपलब्धियों और चुनौतियों, संभावनाओं के साथ महिला जगत कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ आपकी सखी सीमा अग्रवाल। सखी, सपनों को उड़ान देने का हौसला हो अगर तो हर दिन एक नई कहानी बन जाता है। हमारी रोजमर्रा की बंधी हुई जिंदगी में अलग एक ऐसी जादुई दुनिया है सखियों, जो हमारी क्रिएटिविटी को नया आयाम देती है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हम महिलाएं सिर्फ परिवार के बारे में सोचती रहती हैं, है ना? पर सखियों, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें तो हमारे मन को सुकून मिलता है। चाहे वो पेंटिंग हो, राइटिंग हो, डांस हो, मेहंदी, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कैलीग्राफी या सखियों और भी कोई भी हॉबी हो आपकी, सखियों ये गतिविधियां हमारे दिमाग के बंद दरवाजों को खोल देती है। माँ, पत्नी, कामकाजी महिला से अलग हमारी खुद की एक मौलिक पहचान बनाती है। हमारी कल्पना शक्ति को सखियों उड़ान मिलती है। कई बार सखियों, शौक के लिए जो हम कार्य करती है ना, वही आगे चलकर हमें सफल महिला उद्यमी बना देती है। तो प्यारी सखियों, अपनी हॉबी को सिर्फ समय काटने का जरिया मत समझिए। यह आपकी मानसिक शांति, आपकी आत्मविश्वास और आपकी क्रिएटिविटी का पावर हाउस है। तो अभी से सोचिए, सोचिए ऐसी कौन सी चीज है जिसे सीखकर आप अपनी सोच को एक नया आयाम देना चाहती है। तो कदम बढ़ाइए, क्योंकि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है सखियों।

सखियों, यूं तो बचपन मुस्कान का नाम है, सपनों की उड़ान का नाम है, पर इन बच्चों पर हिंसा की छाया पड़ जाए तो मानवता के लिए यह सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। सखियों, दुनिया के अनेक हिस्सों में बच्चे युद्ध, हिंसा, बाल श्रम, दुर्व्यवहार और विस्थापन जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। शारीरिक दर्द तो समय के साथ सखियों ठीक हो जाता है, लेकिन मानसिक आघात जीवन भर उनका पीछा नहीं छोड़ता है। तब केवल बच्चों का नहीं बल्कि पूरी मानवता का नुकसान होता है। इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सखियों, हर वर्ष 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। सखियों, आक्रामकता केवल युद्ध या संघर्ष तक ही सीमित

नहीं है। यदि हमारे घरों में कठोर व्यवहार, स्कूलों में बुलिंग, समाज में भेदभाव और बच्चों पर अनावश्यक दबाव भी उनके मन को गहरे तक प्रभावित कर सकता है। बच्चे घर की रौनक होते हैं सखियों, और उनकी मुस्कान से ही तो हमारा आंगन महकता है ना? इसलिए बच्चों को ऐसा माहौल देना चाहिए कि वे हमारे साथ खुलकर हर बात साझा कर सकें। सखियों, बच्चों का आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब उन्हें यह महसूस हो कि उनकी बात सुनी जा रही है और उनकी भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियो, आज जयंती एक ऐसी अभिनेत्री की जिनकी आंखों ने अभिनय की नई भाषा लिखी। उन्होंने अपनी सादगी और संजीदगी से दर्शकों के दिलों पर राज किया। सखियो में बात कर रही हूँ सदाबहार और बेमिसाल अभिनेत्री नूतन की। 4 जून 1936 को एक फिल्मी परिवार में जन्मी नूतन को अभिनय विरासत में मिली। उनकी माँ शोभना समर्थ अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री थी। उन्होंने महज 14 साल की उम्र में फिल्म हमारी बेटी से अपने करियर की शुरुआत की, पर साल 1955 में आई फिल्म सीमा ने उनके करियर को एक नई दिशा दी। सखियो सुजाता, बंदनी में उन्होंने वो सब कह दिया जो पन्नों के संवाद भी नहीं कह सकते। देवानंद के साथ पेइंग गेस्ट और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में चुलबुले और रोमांटिक किरदार भी निभाए। वहीं मिलन और सरस्वती चंद्र जैसी फिल्मों में उनके संजीदा अभिनय ने लोगों को रुला दिया। अभिनय के साथ साथ सखियो नूतन ने छबीली फिल्म में गाने भी गाए थे। साल 1991 में कैंसर की वजह से यह चमचमाता सितारा हमसे हमेशा के लिए दूर चला गया, लेकिन अपनी फिल्मों, अपनी सादगी और अपनी बेहतरीन मुस्कान के जरिए वे आज भी हमारे दिलों में जिंदा है।

सखियों, आज हम बात करेंगे भारतीय रंगमंच और सिनेमा की ऐसी प्रतिभाशाली कलाकार की जिन्होंने अपने सहज अभिनय और रंगकर्म के प्रति समर्पण से लोगों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। यह नाम है सुलभा देशपांडे का। 21 फरवरी 1937 को मुंबई में जन्मी सुलभा देशपांडे ने अपने अभिनय जीवन की शुरुआत रंगमंच से की। उन्हें प्रायोगिक रंगमंच आंदोलन की प्रमुख हस्तियों में गिना जाता है। उन्होंने अपने पति अरविंद देशपांडे के साथ आविष्कार नामक नाट्य संस्था की स्थापना की, सखियों, जिसने भारतीय रंगमंच को नई दिशा दी। सुलभा देशपांडे ने मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं के रंगमंच तथा फिल्मों में उल्लेखनीय योगदान दिया। सखियों, उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में भूमिका, गमन, खून भरी मांग, विरासत, इंग्लिश विंग्लिश है। सखियों, उनकी अभिनय शैली की सबसे बड़ी विशेषता थी सादगी और स्वाभाविकता। वे किसी भी किरदार को इतने सहज ढंग से कहती थी कि दर्शक उससे स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस करने लगते हैं। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुए। 4 जून 2016 को सुलभा देशपांडे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वैसे सखियों, आज एक बात दिल में आ रही है, कह दूं? हम ज्ञान के लिए इंटरनेट खंगालते हैं ना, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं जीवन का सबसे बड़ा सर्च इंजन घर के बड़े बुजुर्ग हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों को संस्कार, सामाजिक और नैतिक सीख अपनों से मिल सकती है, वो किसी स्कूल या कॉलेज की किताबों में नहीं लिखी होती। सखियों, बुजुर्गों के पास केवल उम्र नहीं बल्कि अनुभवों का वो अनमोल खजाना होता है जो हमें सही और गलत का अंतर सिखाता है। वो सिखाते हैं कि परिवार को जोड़कर कैसे रखा जाता है, समाज में मिलजुल कर कैसे रहा जाता है। सखियों, जब आप और बच्चे उनसे बात करते हैं तो सिर्फ बात नहीं करते बल्कि आप अपनी जड़ों से जुड़ते हैं।

सखियों, प्रतिदिन की गई छोटी सी छोटी कोशिश एक दिन बड़ा परिणाम लाती है। इसी बात के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो महिला जगत कार्यक्रम से सीमा अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल। सवेरे के 11 बज रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: विविध भारती पर हमारा अगला कार्यक्रम रंग तरंग।

श्रोताओं नमस्कार। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

रंग तरंग कार्यक्रम का आगाज हमने किया हरिओम शरण की इस गाई हुई इस भक्ति रचना के साथ, प्रेमांजलि एल्बम से, जिसे हसरत जयपुरी ने लिखा था। अब बढ़ते हैं छाया गांगुली की गाई मीराबाई की इस पारंपरिक रचना की ओर।

रंग तरंग कार्यक्रम में अभी आपने भक्ति सुधा एल्बम से छाया गांगुली के स्वर में मीराबाई की यह पारंपरिक रचना सुनी, जिसे संगीत से संवारा था संगीतकार जयदेव ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

एल गजल एल्बम से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर रंग तरंग कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं देव कोहली के रचना और आनंद राज आनंद के संगीत की ओर।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: देव कोहली के बोल थे आनंद राज आनंद का संगीत, शुभा मुद्गल और समुद्र की आवाजों में आप सुन रहे थे ये मोहब्बत है एल्बम का ये गाना। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

रोशन के संगीत से सजी ये कव्वाली आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। दिल ही तो है फिल्म का नाम था और साहिर लुधियानवी का कलाम। चलिए अब एक नाजुक से गीत की ओर बढ़ते हैं।

ये है प्रेम एल्बम से, ये बड़ा ही नाजुक सा सॉफ्ट सा गाना आपने सुना। श्याम अनुरागी ने इसे लिखा था, आवाज और संगीत का जादू मिलिंद इंगले का था। चलिए अब अगले एल्बम में आवाज का जादू है मोहित चौहान और कैम त्रिवेदी के साथ अतुल मित्तल का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत किया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमता का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के

0: बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान श्री रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं लेकर यादों की महफिल।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम यादों की महफिल। और इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आज सबसे पहला जो गाना शामिल किया वो 100 डेज फिल्म से था। एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ लता मंगेशकर की आवाज, दिलीप ताहिर ने इसे लिखा था, राम लक्ष्मण का मचलता संगीत। और मेरे ख्याल से आपने ये गाना सुना और आप जान ही गए होंगे कि आज यादों की महफिल में वो गाने शामिल हो रहे हैं जिनमें गायक आवाज है एसपी बालासुब्रमण्यम की। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है तो हम उनको उनके गीतों के जरिए याद करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले गाने की ओर।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में साजन और मैंने प्यार किया, इन दो फिल्मों के बाद अब बारी आ रही है वंश फिल्म के इस गाने की।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सागर फिल्म का ये गाना आपने सुना। साथियों, एसपी बालासुब्रमण्यम की गायकी का एक अलग ही अंदाज रहा है। हर भाव के गीतों को कितनी सहजता से समेट लेते थे। अब ये गीत ही सुनिए ना। गीत संगीत बोल आवाज सब कुछ कमाल।

छू लेने वाले सच्चे बोल, जावेद अख्तर के सुरीला संगीत, राहुल देव बर्मन का गर्दिश फिल्म में इस गाने में आवाज एसपी बालसुब्रमण्यम की। चलिए यादों की महफिल कार्यक्रम के अगले गाने की ओर बढ़ते हैं।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के साथ अलका याग्निक की आवाज में आपने मझधार फिल्म का गाना सुना। यादों की महफिल कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए कुछ बेमिसाल गाने। और अब बारी है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों वाले उस गाने की जिसकी फिल्म का नाम है पत्थर के फूल।

हाँ तो भाई, पत्थर के फूल फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में, और यही गाना बना आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अभी श्रोता सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। दोपहर का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में श्रोताओं आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 5 दिन चलने वाली इस चैंपियनशिप का उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करना है। प्रतियोगिता में 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। योगासन भारत की यह पहल वैश्विक स्तर पर योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों सहित 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। वर्ष 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिससे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली शुरू हुई। सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए वर्ष 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम की शुरुआत की गई। जैम पर अब तक कुल कारोबार 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज 2 योजना में चयनित गांवों में अंडरग्राउंड बंकर बनाए जाएंगे। युद्ध की स्थिति में खतरे का सायरन बजते ही ग्रामीण इन बंकरों में शरण ले सकेंगे। इस योजना में श्रीगंगानगर जिले के 68 सीमावर्ती गांवों का चयन किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि इनमें सबसे अधिक 20 गांव घड़साना उपखंड क्षेत्र के हैं। इन गांवों में कम्युनिटी हॉल के नीचे इन बंकरों का निर्माण किया जाएगा। श्री यादव ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज योजना का उद्देश्य चयनित गांवों को पक्की सड़कों और मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना है। प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जनाभियान के तहत जल संरक्षण को लेकर कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज विभिन्न जिलों में निबंध, नारा लेखन, चित्रकला, खेलकूद प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से वर्षा जल संग्रहण और भूजल पुनर्भरण का

0: आदेश दिया जा रहा है। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सरकारी भवनों में बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं की साफ सफाई की जा रही है। विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर जल चौपाल के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। कल इस अभियान का समापन होगा। इस दौरान जिला स्तरीय समारोह में जल संरक्षण और जन भागीदारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले भामाशाहों, संस्थाओं, पंचायतों, नगर निकायों और जल योद्धाओं को जल गौरव सम्मान दिया जाएगा। शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा 2026 के 607 पदों के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन इस वर्ष 29 नवंबर को किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। गौरतलब है कि इसमें राज्य सेवा की 192 और अधीनस्थ सेवा के 415 पदों पर भर्ती की जानी है। और अब मौसम। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज कई इलाकों में सुबह बरसात हुई। भीलवाड़ा में ग्रामीण इलाकों में तेज बरसात का दौर चला। वहीं सवाईमाधोपुर में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज अधिकांश जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन स्थानों पर अंधड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: FM 102.9 MHz पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का ये मीरा चैनल है। 1:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम।

0: जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिन बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन हर बार हर रोज सुनता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
1: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
1: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
2: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख

0: ये शीत मरुस्थल की, इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
0: अजी जी, इसका कारण ये है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
0: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी,
0: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आए।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
0: जी,
1: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
0: जी,
1: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
0: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
0: जी,
1: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
0: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
1: हाँ, जरूर कीजिए।
0: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
1: जी,
0: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
1: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे मैग्नेटिक हिल?
0: बिल्कुल याद है।
1: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
0: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था। लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
1: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
0: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
1: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
0: जी,
1: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
0: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
0: जी,
1: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए, हमारे ईमेल का पता

0: है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
1: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
1: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
4: The scoop shot, it gets through, it's a big one, it's a huge boundary. It goes wide, through the offside. He's got him, that's it, India win.
3: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
5: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
3: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
6: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
7: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा, तुम दोनों आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ शाबाश।
6: क्या अभी आपके पास समय होगा?
7: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
6: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
7: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
6: जी वही। सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
7: अच्छा।
6: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
7: और
6: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
7: हाँ, बोलो बोलो।
6: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
7: बिल्कुल।
6: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही हैं। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
7: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
6: 5000 वर्ष पहले?
7: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
6: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
7: अच्छा, ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
6: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
7: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
6: अच्छा।
7: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
6: जैसे
7: इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
6: वैदिक समूह?
7: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।

0: भरत?
1: भरत नाम तो हमने सुना है।
2: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
0: ओह भरत, अच्छा तो ये बात है।
2: हाँ।
0: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
2: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
0: अच्छा।
2: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
1: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
2: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
0: वो क्या सर?
2: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।
1: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदु या हिंदू कहा है,
0: भला ऐसा क्यों?
2: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
0: अच्छा।
2: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
0: है ही नहीं?
2: हाँ।
0: ऐसा कैसे?
2: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
0: ओ।
2: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
0: हिंदू,
2: हिंदू। शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
0: तो फिर?
2: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
2: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
1: आपने अब तक तीन ग्रंथों के नाम बताए।
2: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो तीन ग्रंथ?
0: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
2: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
0: अच्छा।
2: हाँ।
1: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
2: बिल्कुल।
1: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
2: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
0: अच्छा।
2: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारत वर्ष भी कहा गया है।
0: अच्छा।
2: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
0: वो क्या?
2: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
0: जम्बूद्वीप?
2: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारत वर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
0: जम्बूद्वीप?
2: हाँ।
0: ये नाम भला क्यों?
2: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
0: अच्छा।
2: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
0: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
2: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है, उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
0: इतने सारे देश?
2: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
0: अच्छा।
1: सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
2: बिल्कुल।
0: ये नाम कैसे आए?
2: लगता है सब कुछ जानकर ही मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
0: जी सर।
2: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
0: अच्छा।
2: हाँ, यूनानी।

0: यानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
1: ओ,
0: हाँ।
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा।

0: पान था। हाँ।
1: और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
0: अच्छा, इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
1: हाँ?
0: और हिंदुस्तान?
1: देखो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
0: अफगानिस्तान।
1: बिल्कुल सही।
0: बलूचिस्तान।
1: सही।
0: तुर्किस्तान।
1: बिल्कुल। और उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
0: सर अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
1: अच्छा?
0: हाँ, बिल्कुल।
1: अरे वाह क्या बात है।
2: सर आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
1: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है इंडिया जो कि भारत है।
2: अच्छा।
1: हाँ अच्छा ये बताओ तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
0: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
1: बहुत अच्छे, तो हमारे देश का नाम हुआ भारत जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
0: जी सर।
1: शाबाश। अच्छा आज जो भी तुमने जाना है समझा है उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
0: सबके साथ?
1: हाँ सबके साथ।
3: तो साथियों कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
5: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
6: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
7: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
8: हाँ स्टीफन, भाई हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
9: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
8: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
9: हाँ पूछो बेटा।
8: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
9: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
8: लेकिन माँ।
9: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा जोसेफ
8: जी,
9: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
8: अच्छा माँ, ये लो माँ।
9: ला।
7: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
8: मिल गया। हाँ

0: गया मुझे, अरे मिल गया मुझे,
1: क्या मिल गया
0: मुझे, माँ माँ ओ माँ,
1: क्या मिल गया, क्या मिल गया,
0: मुझे मिल गया,
2: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया
1: सब, क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही क्या हो गया है।
0: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया, हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
2: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ
0: स्टीफन, स्टीफन माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो, हाँ इस कमरे के धुएं को देखो, इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ, बताओ उसमें क्या उड़ रहा है,
1: कुछ हाँ? भी तो नहीं,
2: कुछ भी तो नहीं है।
0: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है, उड़ रही है ना,
2: वो तो है मगर
0: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
2: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो,
0: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें है?
2: हाँ।
0: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
2: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है, चलो चलो जोसेफ चलो देखते हैं।
0: ठीक है आओ मेरे साथ।
1: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ स्टीफन, जोसेफ सुनो तो।
3: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था, दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे अरे
5: गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा,
6: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
7: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं।
6: अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या,
8: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
6: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
8: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा, आओ चलो।
6: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
9: भाई साहब हट जाइए,
6: आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं। अरे अरे वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
8: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। हाँ? वो देखो टोकरे में, हाँ
6: अरे अरे, अरे, अरे टोकरे में तो एक भेड़ है, अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
8: हाँ? क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे
6: दोस्त, लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे, अरे वो देखो,
8: हाँ?
6: स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है
8: और, हाँ? और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
6: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है। अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
8: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
6: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया,
8: बहुत अच्छे बहुत। देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
6: अरे जबरदस्त, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
8: वो देखो वो देखो, गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है, देखो पेड़ों की तरफ।
6: अरे
8: देखो,
6: अरे हाँ हाँ, अरे वो पेड़ों की तरफ।

0: हाँ साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान। और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मेरा चैनल है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: FM 102.9 MHz पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का ये मीरा चैनल है। आइए श्रोताओं, आपको फिर से सुनवाते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: FM 102.9 MHz पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का ये मीरा चैनल है। आइए श्रोताओं, आपको फिर से सुनवाते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

सटीक आंसर दिया। साथियों ने लिखा है कि सुनील दत्त टेलीफोन पर यह गाना उन पर फिल्माया गया है और इस गाने में नूतन भी टेलीफोन पर ही हैं जो सुनील दत्त के दिल की बातें सुन रही हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि फिल्म खानदान का तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा ये गाना जो है बहुत से संगीत कार्यक्रमों में गाया है मैंने और एक प्रतियोगिता में इस गाने के लिए पुरस्कार भी जीता है। वाह भाई क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। तो आगे एक हमारी सखी लिखती हैं कि बंदिनी सुजाता और सीमा आगे लिखा है कि नूतन जी की किसी एक फिल्म को चुनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैंने मेरी सबसे ज़्यादातर तीन फिल्मों का अलग अलग फिल्मों के बारे में जो इन्होंने लिखा है ये फिल्में इन्हें बहुत पसंद है। एक कमेंट है जिन्होंने लिखा है कि मैंने रेडियो थोड़ा देर से चालू किया और जैसे ही चालू किया मोरा गोरा रंग गाना आया, मन खुशी से झूम उठा। मुझे लगा शायद ये गाना बच चुका है। मैं जब छोटी थी दूरदर्शन पर सुजाता पिक्चर देखी, हर पिक्चर देखकर मन रो देता था। हमेशा अपने ऊपर होने वाले अन्याय के लिए चुपचाप सहती रहती नूतन जी। वैसे तो हमारी मम्मी के जमाने की हीरोइन थी लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो सीधी और शांत सहेलियां रहती थी उनको हम सब कहते थे ये नूतन है और बाकी सब तनुजा। तो बताइएगा जरा कि नूतन जी और तनुजा जी में रिश्ता क्या है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म सुजाता का गाना हमने सुना, सुनील दत्त साहब टेलीफोन पर नूतन जी को अपने दिल की बात कह रहे हैं, आवाज तलत महमूद साहब की है। और एक ने लिखा है कि फिल्म सुजाता में सुनील दत्त जी हैं और बहुत अच्छा फिल्म अंकन है ये। दूसरे साथी लिखते हैं कि श्वेत श्याम फिल्मों का दौर भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम अध्याय था जहां अभिनेत्री नूतन ने अपने स्वाभाविक अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास स्थान बनाया। इन्हीं स्मृतियों में सुजाता का भोला चेहरा, गहरी आंखें और मासूम अदाएं जीवंत हो उठती हैं। कहीं वो बंदिनी है, कहीं अनाड़ी की नायिका, तो कहीं प्रेम और विरह के गीतों में डूबी एक संवेदनशील स्त्री। उनकी फिल्मों में के अनेक गीतों को के साथ प्रेम, प्रतीक्षा तथा सपनों से भरे इस अमर श्वेत श्याम गीत को आज भी जब रेडियो पर सुनते हैं, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तब श्वेत श्याम दौर की फिल्में और गाने सुनहरी यादें बनकर मन को छू जाते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि आज की भारत में शब्द ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस शख्सियत की फिल्मों से गीत ढूंढना है जिनका नाम नूतन है। आज उनका जन्म स्मृति दिन है, उस छबीली अभिनेत्री को विनम्र नमन करते हैं। उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार में नूतनता भरी होती थी क्योंकि नूतन एक अभिनेत्री ही नहीं भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति थी। हर कोई एक कार्य की सीमा होती है लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदारों की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वो कन्हैया नाड़ी या छलिया राज कपूर के साथ हो, या सौदागर अमिताभ बच्चन के साथ हो, या धर्मेंद्र के साथ एक रात की बनकर चुनरिया रंग ली हो, या हैंडीकैप सुनील दत्त की पत्नी राधा बनकर उनकी सेवा करते हुए खानदान का नाम रोशन किया हो, या पेइंग गेस्ट देवानंद को तेरे घर के सामने घर बनाने और दुनिया बसाने की हामी भरती हो, उस छोटी सी गुड़िया की कहानी का सुनने का इंतजार रहेगा। और इन्होंने अपना उनको विनम्र नमन भेजा है। तो चलिए, जब अनाड़ी फिल्म का भी जिक्र आ चुका है राज कपूर जी के साथ, तो अब हम अनाड़ी फिल्म के गाने की ओर बढ़ते हैं। आपको ये बताना है कि ये गाना जैसे ही शुरू होता है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं।

तेरा जाना, दिल के अरमानों का लुट जाना, अनाड़ी फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज और फिल्माया गया नूतन जी पर। जैसा कि हमने पूछा था कि इस गाने में जैसे ही शुरुआत होती है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं, तो हमारे सभी साथी लिखते हैं कि पियानो बजा रही हैं अभिनेत्री, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। और हमने ये भी पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी में आपस में क्या रिश्ता है, तो उसको लेकर भी बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए हैं। उससे पहले हम नूतन जी की फिल्मों से लेकर एक याद साझा की है हमारे एक साथी ने कि एक घर बनाऊंगा जी, मैं बताना चाहूंगा कि शादी से पहले मैंने होने वाली धर्म अपनी धर्म पत्नी के घर के सामने तो घर नहीं बनाया, लेकिन एक बड़ा घर बनाया उनके घर के सामने वाली सड़क पर, और अजमेर की उसी कॉलोनी में फिर ब्याह कर अपनी धर्म पत्नी को उसी घर में स्वागत किया। एक ये प्यारी सी याद इनकी बड़ी ही मीठी सी रही, बहुत अच्छी लगी। और वहीं जहां पर हमने पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी का रिश्ता, तो लिखते हैं साथी कि नूतन और तनुजा आपस में सगी बहनें हैं, लेकिन दोनों का फेस बिल्कुल नहीं मिलता। तो दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन की छोटी बहन है तनुजा, दोनों शोभना समर्थ जी की बेटियां हैं जो स्वयं अपने दौर में नायिका रही हैं। फिल्म सुजाता के लिए लिखते हैं कि ये सदाबहार गीत जलते हैं जिसके लिए तलत महमूद की मखमली आवाज में गाए गए, मजरू सुल्तानपुरी के सबसे खूबसूरत रोमांटिक गीतों में से एक है, एस डी बर्मन के संगीत और सुनील दत्त के फोन पर अभिनय से मधुर बनाया है इसे। और एक साथी ने कुछ अपनी यादें साझा की हैं कि नूतन बुआ जी की तो सभी फिल्में देखी हैं, पर अब आप लोग कहेंगे कि इसकी बुआ कैसी, तो बताती हूँ, जब हम ठाणे में थे और बाबा पिताजी के दोस्त पर्सनल सेक्रेटरी थे नूतन बुआ जी के, तब वो मुमरा में रहा करती थी, बाबा को बालू चाचा ने एक बार नूतन बुआ जी के घर में ले गए थे, तो वो बाबा की वो अनमोल याद मिली जो बहुत कम लोगों को मिलती है, तब नूतन जी ने खाना खुद बनाया और इन दोनों को खिलाया, बहुत सिंपल सा, और नूतन बुआ मराठी में बहुत सुंदर बातचीत करते हुए खुद को परोसा गेट तक छोड़ने आई और मराठी में कहा, ये तरहा भाऊ कधी कधी वेल मिलाला तर बालू दादा सोबत। बाबा नतमस्तक हो गए कि इतनी बड़ी हीरोइन खुद खाना बनाती है, परोसती है, ऊपर से गेट तक आती है, भाव कह के ऐसी हीरोइन कहीं नहीं मिलेगी। बहुत यादगार बात है। नूतन जी के लिए कुछ और हमारे पास कमेंट्स हैं, लिखते हैं कि नूतन हिंदी फिल्म जगत की एक नामचीन अदाकारा रही हैं, उनके अभिनय का लोहा हर किसी ने माना है, गूगल ने हिंदी सिनेमा की इस दिग्गज अभिनेत्री को उनके 81वें जन्मदिन पर एक विशेष गूगल डूडल के माध्यम से याद किया था, उनकी बेजोड़ अभिनय क्षमता को श्रद्धांजलि देते हुए डूडल में उनके

निभाए गए सबसे प्रतिष्ठित किरदारों के भावों को दर्शाया गया। नूतन की बहुमुखी प्रतिभा को केवल एक चित्र में समेटना मुश्किल था, इसलिए डूडल में उनके चेहरे के चार अलग अलग भावों को चित्रित किया गया था। ये भाव बंदिनी की संघर्षरत कल्याणी, सुजाता की व्यथित और सीमा की एक उपद्रवी अनाथ लड़की के रूप में उनके उत्कृष्ट अभिनय को दर्शाते हैं। नूतन की एक विशिष्ट अभिनय शैली थी जिसमें वे चेहरे की न्यूनतम भाव भंगिमाओं और आवाज के मॉड्यूलेशन से गहरा भाव प्रवण अभिनय किया करती थी। बिल्कुल, और इस गाने में भी जो अब आप सुनेंगे उनका जो आंखों का और जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं वो कुछ कम तो नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इस गाने में उनके नायक कौन है, और हमारे मुझे ऐसा लगता है कि ये गाने का भी इंतजार आप सबको है। वैसे आप सब अपनी अपनी लिस्ट के गाने नोट कर रहे हैं ना, हम तक भेजिए जरूर कि आपके अब तक कितने गाने टिक हो चुके हैं।

सौदागर फिल्म का ये गाना था और हमारे सभी साथियों ने लिखा कि इस गाने में नायक थे अमिताभ बच्चन। एक साथी लिखते हैं कि रविंद्र जैन जी का जादुई संगीत, तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा कि वह बेहतरीन मधुर और भावपूर्ण गीत। बेचारी का इस गाने के बाद अमिताभ द्वारा तलाक देना दर्शकों को झकझोर गया था। दूसरे साथी ने लिखा है कि विविध भारती के लिए भी हम यही कह रहे हैं कि तेरा मेरा साथ रहे, दिन हो के रात सदा बना रहे ये साथ। तो दूसरे साथी ने लिखा कि भाई मेरा तो पांचवा गीत हीरो अमिताभ बच्चन रहे एक फिल्म नूतन जी के साथ, इनका पांचवा गीत शामिल हुआ। और दूसरे साथी ने लिखा कि फिल्म अनाड़ी नूतन पियानो बजा रही है, मेरा वाला गाना आ गया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि वो पियानो बजा रही है, वैसे गाने में बांसुरी का भी खूबसूरत प्रयोग किया गया है, अनाड़ी तेरा जाना हाई पिच पर विशेष गायकी। तो दूसरे साथी ने लिखा कि मेरी लिस्ट का तीसरा गीत भी शामिल हो चुका है। और एक साथी लिखते हैं कि गुड आफ्टरनून, आज प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत लेट हो गई, मेरी तबीयत कुछ खराब है और ये अभी हॉस्पिटल से आई हैं, तो जैसे ही आपकी आवाज़ सुनी प्रोग्राम नूतन जी पर है उनके जन्मदिन पर उन्हें नमन करते हैं और उनके बारे में क्या कहें, उनकी फिल्मों में से कोई एक फिल्म चुननी बहुत मुश्किल है, मुझे तो उनकी सारी फिल्में बहुत पसंद हैं, उनकी बंदनी सीमा ये दोनों फिल्में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अब वक्त हो चला है कि आज के इस कार्यक्रम का आखिरी मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबकी नजर।

एक साथ ही लिखते हैं कि आज महान अभिनेत्री न्यूटन जी को श्रद्धांजलि स्वरूप सुरीला सफर में सम्मान दिया जा रहा है। बेहद पसंद आया ये आपका जेस्चर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम FM 102.9 MHz पर। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके

0: द्वारा बहुत सारे योजनाएं शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
1: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है। शॉर्ट सर्किट से कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है। बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरल में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरल और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरल से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरल के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरल में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरल से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में

0: विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM मिंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल। आइए श्रोताओं, आपको फिर से सुनवाते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
2: विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब, कुछ अनमोल सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया लाड साहब फिल्म का ये गाना था आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार

0: दिल ने फिर याद किया फिल्म का। ये दो गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वर, जीएल रावल के बोल थे, सोनी कोमी का संगीत। रोशन के संगीत से सजा होगा अगला गाना, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: चलिए साथियों, अब सुना जाए रोशन के संगीत से सजा और साहिद लुधियानवी का लिखा गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। क्या कहता है ये गाना, दिल ही तो है।

मिलन फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अब आपको सुनवाते हैं नौशाद की तर्ज पर शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम शबाब।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर दिल्ली का ठग फिल्म के इस गाने में आप सुन रहे थे। एसएच बिहारी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार रवि ने।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। साथियों, इन सदाबहार नगमों की सुंदरता, इनका सौंदर्य, इनका हुस्न कल भी तरोताजा था, खूबसूरत था, आज भी है और हमेशा रहेगा। चलिए अब आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश की ओर बढ़ा जाएं। शंकर जयकिशन की तर्ज पर शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर। क्या कहता है कन्हैया फिल्म का ये गाना, चलिए सुनते हैं साथ साथ।

0: ही सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। और ममता जी क्या बात है, आप थोड़ी बुझी बुझी सी, थोड़ी सी खामोश सी, थोड़ी सी नाराज सी नजर आ रही।
1: अब कहां नाराज तो बिल्कुल थी नहीं पहले भी, लेकिन जो बुझा बुझा चेहरा आपको लगा और आपके हाथों का स्पर्श मिला तो उदासी तो मेरी चली गई वैसे ही। और जिंदगी में क्या होता है कि थोड़ा गम थोड़ी खुशी सबको मिलती है, कई बार हम यूं ही बेवजह चुपचाप बैठ जाते हैं तो लोग उसको उदासी समझते हैं। तो ऐसे ही कुछ आपके साथ हुआ, तो आपने जब स्पर्श किया और हाथ मिलाया मुझसे और कहा कि क्या बात है, क्यों थोड़ी सी उदास लग रही, बस मैं मुस्कुरा उठी
2: और वो छू मंतर हो गया सारा दर्द। क्योंकि देखिए ना, हर किसी के जीवन में थोड़ी ना थोड़ी परेशानी होती है, और हम ऐसे है ना कि अगर हमारे मन से थोड़ा भी अलग हुआ ना तो हम भी परेशान हो उठते हैं। भले ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, पर हम उसे बहुत ज्यादा मान भी लेते हैं कि अरे ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ में।
1: बिल्कुल,
2: तो हर किसी के साथ ऐसा होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ तो होता ही है कि थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई तो परेशान हो जाते हैं,
1: किसी ने कुछ कह दिया
2: किया तो नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो घर की दादी माँ, नानी माँ या फिर पिताजी माँ, जिनसे हमारा स्पर्श कम होते जाता, उनका हाथ में हाथ थाम लिया और बस उनको एक झप्पी दे दी, प्यार भाई गले लगा लिया, तो वे फिर खुश हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। तो जो उदास बैठा है उसके पास जाकर जादू की झप्पी दे दे और प्यार से उसके कंधे पर उसके सिर पर हाथ रखे कि चलो सब ठीक हो जाएगा। भले ही आपको कारण पता हो ना हो, लेकिन इतने से कोई बहुत बड़ा दुख या अवसाद होता है तो दूर हो जाता है। और कई बार ये घटनाएं भी इससे घटित होती हैं कि लोग दुनिया अपनी जिंदगी से अपने हालात से बहुत परेशान हाल होते हैं और वो कोई बड़ा कदम आत्महत्या जैसे कर रहे हो तो भी वो वक्त टल जाता है। और ये कहा जाता है कि आत्महत्या का बस कुछ लम्हा होता है, वो लम्हा अगर कुछ सेकंड टल गया तो वो टल गया, फिर उसके बाद मन ठीक हो जाता है। तो इसलिए जब भी कोई उदास चेहरा दिखाई पड़े तो बस उसके सिर पर हाथ रखें, एक स्पर्श से किसी की उदासी, किसी की नाराजगी, किसी का दुख दूर हो जाता है।
2: और साथ में आज हम कहानी पद्मश्री की इस सेगमेंट के अंतर्गत दुलारी देवी, जो मधुबनी पेंटिंग के लिए जानी जाती है, उन्होंने मधुबनी पेंटिंग इस क्षेत्र

0: में बहुत नाम कमाया है तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे, और साथ ही मुझे कुछ कहना है तो इसमें गर्मी की छुट्टियों में आम खाने का आनंद,
1: बिल्कुल
0: यानी बचपन याद आ गया, नॉस्टैल्जिया हो गया ना।
1: मतलब आम के बाग में जाकर वो ढेला जो होता था पत्थर कंकड़, उससे फेंका और आम जो टूटता था और उस आम को लेने की पकड़ने की होड़ होती थी, कई लोग झुंड होता था बच्चों का, तो वो झुंड दौड़ता था कि हम लेंगे हम लेंगे, और उसमें जो आनंद था वो तो जो इकट्ठा आम मिल जाए, और अब जो आम मैंगो शेक बना के पीने का आनंद है, या फिर पेटी में जो आम आता है जिसे आप खोलते हैं, वो आनंद कहाँ है?
0: वो जो आनंद था उसकी तुलना ही नहीं हो सकती, भले उसमें पंछी ने भी अगर उसमें थोड़ा सा
1: खासतौर से खा लिया
0: तो भी हम उसे धोखे खा लेते
1: तो
0: थे।
1: कहा जाता है कि तोते ने अगर जूठा किया है तो वो मीठा
0: और भी मीठा
1: होगा और वो देसी आम तरह तरह के आम। तो हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि वो आम खाने का क्या सुख था वो बचपन वाला, और साथ में किस तरह के आम आपने खाए हैं, कौन कौन सी प्रजाति होती है आम की,
0: आपके क्षेत्र में कौन सी प्रजातियां होती है,
1: लिख भेजें।
0: हाँ, और साथ ही उपयोगी टिप्स, इन्हें आम खा लिया, बहुत सारा आम खा लिया और व्यायाम नहीं किया तो वजन तो बढ़ ही जाएगा, वजन कैसे घटाए इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखना शुरू भी कर दिया है, तो आप कितना आम खाते हैं और वजन घटाने के लिए क्या करते हैं, इस बारे में हमें लिखकर
1: विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टिप्पणी करें और कोई अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं आम खाने से जुड़ा हुआ। और ये जो हमने विषय दिया है बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श, कि आज मोबाइल का जमाना है तो वो टाइम ही नहीं है लोगों के पास, पता ही नहीं चलता कि कमरे में बैठा हुआ कोई रो रहा है, लोग अपने मोबाइल में अपने कंप्यूटर में अपने काम में बिजी रहते हैं, बहुत देर बाद पता चलता है। तो ये जो ऐसा कोई अनुभव है वाक्या है तो आप जरूर साझा करें, और हम अब साझा करते हैं ये गीत।

0: तो ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे, और अब आप मोबाइल के स्क्रीन से बाहर लौट आइए, क्योंकि अभी भी तो हम बात कर रहे थे ना मोबाइल के स्क्रीन से बाहर आना, लेकिन अगर आप बाहर आ गई तो
1: श्रोताओं के कमेंट्स कैसे
0: पढ़ेंगे, ये बात तो है। तो ठीक है, मोबाइल के स्क्रीन को साथ में रखिए, लेकिन अभी हम पद्मश्री दुलारी देवी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
1: जी, मधुबनी जिले के रांटी गांव की रहने वाली दुलारी देवी ने कभी स्कूल की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी। 25 साल पहले उन्हें पद्मश्री अवार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज पूरा देश उन्हें पद्मश्री दुलारी देवी के नाम से जानता है। और ममता जी, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। जिस तरह वे अपने कैनवास को अलग अलग रंगों से रंगीन बनाती है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी मेहनत से अपने जीवन में सफलता के रंग भरे। दुलारी देवी कहती कि मैंने जीवन में बहुत गरीबी देखी, मुझे पेंटिंग बनाना पसंद है, और आज इसी के बदौलत उन्हें इज्जत और सम्मान मिल रहा है।
0: और आज जब हम कहीं किसी शॉप में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़ों की शॉपिंग खासतौर से, तो मधुबनी पेंटिंग ढूंढते हैं कि मधुबनी पेंटिंग वाली डिजाइन का कुर्ता हमें मिल जाए, ड्रेस मिल जाए, तो वो पहन ले, और फिर मधुबनी पेंटिंग खरीद कर ले आते हैं, अपनी दीवार को सजाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग कितनी ज्यादा मशहूर है और कितनी उसकी अहमियत है, तो दुलारी देवी ने मधुबनी में रहते हुए मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा दिया और उसमें आगे बढ़ी, पद्मश्री से सम्मानित हुई। दुलारी देवी की जिंदगी की शुरुआत बहुत नीचे तबके से हुई और एक आम लड़की की तरह गरीब परिवार में हुई। उनके परिवार में शिक्षा को लेकर बहुत कम जागरूकता थी और आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वो कभी स्कूल नहीं गई इस वजह से। उनका परिवार मजदूरी करके जीवन बिताता था। दुलारी देवी बचपन से ही माँ के साथ काम पर जाती और घर में भाई बहनों की देखभाल करती थी, और उनके पिता मछुआरे थे।
1: देखिए,
0: तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें हुई उन्हें, इस कारण दुलारी देवी मायके वापस आ गई थी।
1: और मायके वापस आने के बाद उन्होंने मिथिला पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया।
0: जी, कितनी अजीब बात है ना कि कितने छोटे काम करती थी और उसके बाद और कहाँ तक पहुंची।
1: और आगे चलकर यहीं से उन्होंने मधुबनी पेंटिंग बनाना भी सीखा। दुलारी देवी ने तकरीबन 25 साल तक कर्पूरी देवी के घर पर काम किया। दोनों मिथिला आर्टिस्ट कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी को पेंटिंग बनाते देख दुलारी देवी को भी मैथिली पेंटिंग सीखने की चाहत हुई। और दुलारी देवी को मिथिला पेंटिंग का शौक तो था ही, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे रंग, कागज और कपड़े खरीद पाती। इसी दौरान उनके लगन को देखते हुए कर्पूरी देवी ने उनकी मदद की और पेंटिंग की बारीकियां उन्हें सिखाई। और 1983 में प्रख्यात पेंटर गौरी मिश्रा ने महिलाओं को मिथिला पेंटिंग सिखाने और उनके काम को प्रमोट करने के लिए एक संस्था बनाई, और कर्पूरी देवी की मदद से दुलारी देवी को वहां पर सीखने का मौका भी मिला।
0: और उनकी पहली पेंटिंग सिर्फ 5 रुपए में बिकी थी। सोचिए, 5 रुपए, आज के जमाने में उसकी तो कोई कीमत ही नहीं, उस समय भी इतनी 5 रुपए की बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी। इस संस्था से जुड़ने के बाद उनकी कुछ पेंटिंग बिकने लगी। चूंकि बिहार का मधुबनी जिला मिथिला पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में मशहूर है, इसलिए कई विदेशी लोग यहाँ के कलाकारों से मिलने और पेंटिंग खरीदने आते रहते हैं। पेंटिंग से जुड़ी अपनी पहली कमाई के बारे में वो बात करते हुए कहती हैं कि जापान से आए कुछ मेहमानों ने उनसे पेंटिंग वाले 7 पोस्टकार्ड्स खरीदे थे और एक कार्ड की कीमत 5 रुपए थी।
1: और जो फॉरेनर होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, इन कलाओं को बहुत महत्व देते हैं, और स्थानीय लोगों से जब चीजें खरीदते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, और उन्हें पैसा भी मिला होगा उससे। और गौरी मिश्रा की संस्था से जुड़कर उन्होंने 16 साल तक काम किया। वहीं अपने सबसे महंगी पेंटिंग के बारे में बात करते हुए कहती है कि मैंने अपनी एक पेंटिंग 3 लाख रुपए में बेची थी, जिसे बिहार सरकार ने खरीदा था। आज भी वो पेंटिंग पटना के बिहार म्यूजियम में लगी हुई है।
0: क्या बात है।
1: और दुलारी देवी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन कर्पूरी देवी ने उन्हें मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ खुद का नाम लिखना भी सिखाया। कला के प्रति अपनी रुचि और मेहनत के दम पर दुलारी देवी ने आगे चलकर कई सारे अवार्ड जीते। और दुलारी देवी के पेंटिंग को इग्नू के लिए मैथिली में तैयार पाठ्यक्रम के होम पेज के लिए भी चुना गया था। कितनी गौरव की बात है।
0: बिल्कुल। और आज भी वो सुबह 4 बजे उठकर पेंटिंग बनाने का काम करती हैं और कहती हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में किया गया काम हमेशा अच्छा होता है, इसलिए वो जल्दी उठकर पेंटिंग बनाती हैं आज भी। साथ ही वो कोशिश करती हैं कि अपनी कला के माध्यम से लोक कथा और संस्कृति से

0: लोगों को जोड़ सकें।
1: और पिछले 8 सालों से वे मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में पेंटिंग सिखाने का काम भी कर रही है। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें राज्य सरकार से भी मिथिला अस्मिता का सम्मान मिल चुका है।
0: और
1: पद्मश्री से नवाजे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि जब दाई जी यानी महासुंदरी देवी को पद्मश्री मिला था तब मैंने पहली बार इस विशेष सम्मान के बारे में सुना था। आज अगर मेरी गुरु जीवित होती तो मुझे इस मिले सम्मान को देखकर बेहद खुश होती। तो सचमुच कितनी खुशी होती है ना ऐसी बात सुन।
0: बिल्कुल, और प्रेरणा की स्रोत है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं और फिर बातें

0: तो सोना लीजिए कि गाना हमने सखियों और सखाओं को सुनाया और बात कर रहे थे शुरुआत में स्पर्श की कि एक जरा से स्पर्श से आपका मन कितना हल्का हो जाता है। कई बार बहुत बड़ा हादसा टल जाता है सिर्फ स्पर्श से। तो पहले जो दादी नानी के आंचल का स्पर्श होता था वो एक वटवृक्ष की तरह था
1: सचमुच,
0: जैसे हम तपती धूप से निकल कर कहीं पेड़ की छांव में बैठ जाए, इतना सुकून मिलता था माँ और दादी ये नानी के आंचल तले, है ना। लेकिन अब वो सब खत्म होता जा रहा है, वो जैसे समय ही खत्म हो गया, वक्त ही नहीं है। अब परिवार में जितने सदस्य हैं सब लोग वर्किंग होते हैं अमूमन, और फटाफट तैयार होकर बाहर जाने की हड़बड़ी होती है, होड़ होती है, तो कहाँ वक्त रह गया है। लेकिन इसी में, इसी भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा समय निकालें, एक साथ परिवार के साथ बैठे, थोड़ा टच थेरेपी का इस्तेमाल करें।
1: और हम लोग है ना, हम लोग भारतीय, खासकर हम लोग ना बस हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ते चरण स्पर्श में भी ना हम लोग ऐसे पैर को छूते नहीं है, बस जमीन में ऐसा झुक गए और जमीन में बस ऐसे घुटने तक ही कर दिया,
0: अब तो घुटने तक
1: बस इतना करते हैं। पर जब हम किसी को छूते हैं ना तो उसको भी बहुत खुशी मिलती है, और हमें जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उस स्पर्श मिलता है उसकी कोई तुलना ही नहीं है। स्नेह का सबसे सुंदर जो है ना, स्नेह सबसे सुंदर और सहज रूप होता है स्नेहिल स्पर्श। ये स्पर्श कभी माँ की उंगली पकड़कर चलने में महसूस होता है, कभी पिता के कंधे पर हाथ रखकर मिली हिम्मत में मिलता है, कभी दादा दादी के आशीर्वाद में, तो कभी मित्रों के आत्मीय आलिंगन में। ये स्पर्श शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है ममता जी, और इसमें प्रेम की भाषा होती है, विश्वास का संदेश होता है और सुरक्षा का आश्वासन होता है।
0: और इन स्पर्श में ऐसी जादुई शक्ति होती है जो मन की व्याकुलता को शांत कर देती है। बच्चा या बड़े शायद शब्दों को भूल जाएं जो उन्हें सुनाए गए थे, लेकिन प्रेम से भरा वो स्पर्श जीवन भर उनकी स्मृतियों में अंकित होता है। वो स्पर्श दो दोस्तों का भी होता है, माता पिता का होता है, पति पत्नी का होता है, भाई बहन का होता है, कि आप जब गले लग जाते हैं तो जैसे प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद रोता हुआ शांत हो जाता है, जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति, और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी। और ये प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान में भी ये बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है, और वो केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। सोनाली, आप ये देखिए ना कि जब कोई कहीं जब घर छोड़ता है, बाहर जा रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, गले लगते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि आप प्रेम का इजहार कर रहे हैं, और वो जो अंतिम मुलाकात होती है एक दूसरे से बिछड़ने की, वो आपके जहन में बस जाती है, या आप हाथ पकड़ के सिर पर हाथ रख देते हैं, जैसे कोई दुखद घटना घटित हो जाती है तो कहीं जाते हैं और उसके पीठ थपथपा देते हैं, या बच्चे को पीठ थपथपा के कह देते हैं कि देखो तुम तो विजेता होकर लौटोगे, तो ये बातें याद रह जाती है, और इसमें बहुत शक्ति होती है।
1: पर समय के साथ साथ ये सब हम चीजें भूलने भी लग गए। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी, बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे जाता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
0: बिल्कुल सही बात है। जो परिवार कभी एक साथ बैठकर सभी भोजन किया करते थे, अलग अलग शहरों और देशों में अब बट गया है। दूरी केवल भौगोलिक नहीं होती, वो भावनात्मक भी होने लगी है। फोन और वीडियो कॉल से बातचीत हो जाती है, लेकिन माँ के हाथों की वो जो ममता, पिता के कंधे का वो जो सहारा और अपनों की निकटता का वो अनुभव कहीं न कहीं पीछे छूटता

0: जा रहा, वो थकान थके लौटे स्कूल कॉलेज से तो माँ के कंधे पे सिर टिका लिया, भाई से भाई के गले लग गए, तो जैसे थकान कहीं दूर हो जाती थी
1: है ना?
0: लेकिन अब वो समय कहाँ है, और अब समय एक गाना सुनाने का,
1: सुनते हैं कि

0: यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। सचमुच प्यार आंचल में बांधा जा सकता है क्या?
1: सचमुच उसे,
0: स्पर्श के माध्यम
1: हाँ,
0: से?
1: उसे समेट कर रखा जा सकता है और बहुत दिनों तक सहेज कर भी रखा जा सकता है। ममता जी, एक हमारे
0: बीबर ने लिखा था ये गाना और आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज से, आनंद आश्रम फिल्म का गीत था।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि हमारी तीन सासू माएं, तीनों देवरानी जेठानी की उम्र 80 के ऊपर है और ये चाहती है कि बहुएं हमारे पास बैठे, बातें करें और अपना समय दे। हम सभी कोशिश तो करते हैं पर उनकी इच्छाएं पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाते क्योंकि हमारी अपनी निजी जिम्मेदारियां भी हैं। वो हमारा प्यार, स्नेह, समय और स्पर्श ही चाहती है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो अब हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर और सखियों और सखाओं के कमेंट्स शामिल करते हैं।

0: दोस्तों विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां सोनाली जी यहां आ चुकी हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। देखिए एक श्रोता ने लिखा है कि बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे देता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
1: एक सखी ने लिखा है कि दुनिया भर में मां अमृतानंदमय इसलिए मशहूर है कि वे अपने से मिलने वालों को गले लगाती है। डॉक्टर इसे स्पर्श थेरेपी कहते हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, जरा सा स्नेह स्पर्श उनके मन की जिजीविषा को दोगुना कर एक नई ऊर्जा से भर देता है। मौका खुशी का हो या दुख का, दिल से किया हुआ आपका प्रेमिल स्पर्श किसी चमत्कार से कम न होगा। अगर आपस के कुछ मतभेद होंगे तो वे भी सुधरेंगे और रिश्तों में मजबूती देने का सुखद और सकारात्मक माहौल बनेगा।
0: और एक कह रहे हैं कि ये विषय आधुनिक समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन, बिखरते संयुक्त परिवारों और मानवीय संवेदनाओं में आ रही कमी को दर्शाता है। स्नेहिल स्पर्श केवल शारीरिक स्पर्श नहीं बल्कि ये अपनों का प्यार, सम्मान, परवाह और मानसिक संबल है। समस्या का मूल मानव जीवन में बचपन और जवानी जिस चकाचौंध और सामाजिक सक्रियता में बीतती है, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ही वो सब बदलने लगता है।
1: बहुत सही बात इन्होंने कही। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श। हाँ, मुझे भी ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते थे तो हम हर पल उन्हें प्यार दुलार देते थे, उनके सुबह उठने से लेकर रात के बुलाने तक। लेकिन बड़े होने पर हम उस तरह से देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि वे कुछ काम अपने हाथों से करने लगते हैं, परंतु प्यार तो हम आज भी बचपन जैसा ही करते हैं पर जताते नहीं है।
0: और फिर यही इसी वजह से बच्चे भी ते हैं, क्योंकि जब आप बचपन में उन्हें दुलराते थे, गोद में लेके टहलाते थे, या फिर जब बड़े हो गए तो भी आप गले से लगाते थे, अपनी छाती से चिपकाते थे, बड़े होने पर वो दूरी आपने मेंटेन कर ली, तो बच्चों को वो बचपन वाली बात तो याद नहीं रहती, वो बड़े होने के बाद याद रहती है, तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं। तो इसलिए जो आपके घर में जो माहौल होता है कि अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से दूरी मेंटेन रखते हैं या सास बहू के बीच एक दीवार खड़ी है, ननद भाभी के बीच, भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, फिर बच्चे भी वो नहीं कर पाते हैं जो आप उम्मीद करते हैं जिसकी।
1: और एक साथी ने लिखा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी कोई आधुनिक आविष्कार नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय और वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान भी यही बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव जीवन में ऊर्जा प्रवाहित होती है। ये केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती स्पर्श थेरेपी का जादू इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने हमारे हाथों में ही इलाज की

0: गोद में लेके टहलाते थे, या फिर जब बड़े हो गए तो भी आप गले से लगाते थे, अपनी छाती से चिपकाते थे, बड़े होने पर वो दूरी आपने मेंटेन कर ली, तो बच्चों को वो बचपन वाली बात तो याद नहीं रहती, वो बड़े होने के बाद याद रहती है, तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं। तो इसलिए जो आपके घर में जो माहौल होता है कि अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से दूरी मेंटेन रखते हैं, या सास बहू के बीच एक दीवार खड़ी है, ननद भाभी के बीच, भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, फिर बच्चे भी वो नहीं कर पाते हैं जो आप उम्मीद करते हैं जिसकी।
1: और एक साथी ने लिखा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद खुद शांत हो जाता है, जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति, और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी कोई आधुनिक आविष्कार नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय और वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान भी यही बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव जीवन में ऊर्जा प्रभावित होती है, ये केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। स्पर्श थेरेपी का जादू इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने हमारे हाथों में ही इलाज की

0: बेटे बेटियों को उनके किसी भी अचीवमेंट पर स्नेह स्पर्श भी करते हैं और प्यार की झप्पी भी देते हैं, चाहे बेटे अभी पढ़ रहे हैं बेटियां जॉब में हैं। हाँ, मेरे से ज्यादा मेरे धर्म पति इस मामले में दो कदम आगे हैं।
1: क्या बात है भाई,
0: महिलाएं हर क्षेत्र में आगे
1: जी तो वैसे भी ये कहा जाता है महिलाओं के हिस्से में ये जोड़ दिया जाता है कि सहनशीलता आपके हिस्से में है, सहनशील बनो। तो ये दोनों तरफ होना चाहिए। अब जमाना बदल चुका है कि अब सिर्फ सहनशीलता महिलाओं के हिस्से में नहीं, पुरुषों को भी उतना ही सहनशील होना चाहिए।
0: और जैसे आपने कहा ईगो की बात है, तो उस ईगो को झाड़ दीजिए। जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं वैसे ही हमारे ऊपर से झाड़ू फेरा के उस ईगो को फेंक दीजिए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना उसकी मिठास ही कुछ और होती है और अपने अपने ही होते हैं। बस अहंकार को हमें आड़े नहीं आने देना चाहिए।
1: बिल्कुल। और अपने रिश्तों को छोड़कर कई बार बाहर प्यार जब तलाशा प्यार तलाशा जाने लगता है तो स्थिति और बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये जो स्पर्श वाली चिकित्सा है इसको मेंटेन रखें। एक श्रोता ने एक अनुभव साझा किया है, लिखा है कि वैसे स्पर्श बहुत फायदेमंद होता है, खासकर बुजुर्गों की सेवा और बच्चों जानवर वगैरह। एक बार पिताजी की बुरी हालत थी, उनकी निरंतर सेवा कर स्पर्श ध्यान द्वारा भी जल्दी ठीक हो गए थे। और अन्य ध्यान आप करते हैं जिसमें जिससे मन शांत होता है, ये स्पर्श के बहुत अच्छा होता है। स्पर्श से बच्चों का दिमाग और उनका स्पर्श हमेशा फायदेमंद होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं बच्चों के साथ अगर आप उन्हें टच करके छू कर बात करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि ये बीच में एक दौर आया था जहां पर एक दूरी मेंटेन कर दी गई थी, वो था कोरोना समय कि छूना नहीं है, कितनी विपरीत और विषम स्थिति थी। तो ये घर में तो ठीक है अपनों को छू कर बात करना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों की आदत इतनी ज्यादा होती है टच करके बात करने की, बाहर अजनबियों से टच करके बात करते हैं तो वहां पे हालत स्थिति बिगड़ भी सकती है। इसका भी ध्यान रखें आप।
0: बस हमें संतुलन बनाए रखना है उस स्पर्श में भी कि कहां जरूरी है और कहां नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: कहां हद से ज्यादा नहीं आगे बढ़ना है और कहां और हमें गले।
1: खासतौर से अगर कोई लड़की चली जा रही है और कोई लड़का आकर उसे छू कर बात करे कि हाँ एक्सक्यूज मी मुझे कुछ कहना है तो निश्चित रूप से थप्पड़ पड़ जाएगा। और इस समय अब गाना सुनवा दे,
0: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली जी, मुझे लगा कि आम खाने की तैयारी में लग गई आप।
1: आम अभी पढ़ना है ममता जी।
0: आम आम बहुत खास है, कहने को
1: आम खास हो गए।
0: बिल्कुल, क्योंकि आम जब आम की बाहर आती है गर्मी के मौसम में तो वो खास हो जाता है। फिर सबसे पहला सवाल ये होता है कि आम है कि नहीं खाने में।
1: हाँ।
0: फिर नाश्ते में, खाने में, दोनों टाइम, मतलब लंच डिनर सब जगह आम शामिल हो जाता है। और उसको कभी आम का रस बना के पूड़ी के साथ, और आम का रस पराठे के साथ, मैंगो शेक बना के कभी काट के। तो आप बताइए आप को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मतलब मुझे तो काट के,
1: मुझे तो वैसे ही पसंद है ममता जी, बस मैं काट के खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। क्योंकि ना जो आम रस होता है ना, वो थोड़ा पचने में भारी होता है। क्योंकि हमने उसे बनाया, फिर ऐसा लगा कि अरे ये तो थोड़ा सा फीका लग रहा है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल
0: दी।
1: फिर माँ बोलेगी कि भाई वो थोड़ा गरिष्ठ होता है, उसमें थोड़ा दूध डाल दो, इलायची डाल दो, ऐसे करते करते करते थोड़ी बादाम की कतरन डाल दो, ऐसे करते करते वो थोड़ा भारी हो जाता है। और फिर है ना, खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक कटोरी से समाधान नहीं होता, ऐसा लगे और थोड़ा सा ले ले। फिर खाने में दूसरे भी आइटम होते, सब्जी भी है, दाल चावल है, रोटी है, और भी है, सलाद है, पापड़ है, फिर वो बहुत भारी हो जाता है। तो मैंने अभी शुरू कर दिया है कि बस दो तीन फाक खा लो
0: बस।
1: हाँ,
0: मतलब एक आम जैसे तैसे, उससे ज्यादा नहीं खाना।
1: और फिर अगर तो ये आम जी भर के खाना है तो फिर थोड़ा सा खाने को कम कर दो, कि जैसे रात में थोड़ा सा हल्का सा कुछ लिया, और उसके साथ में फिर अगर मैंगो शेक लिया है या फिर घर में बनी हुई मैंगो की आइसक्रीम ली है, तो फिर हम इस तरह से अगर करें ना, तो फिर आम का भी आनंद ले सकते हैं और हमारी सेहत का भी ध्यान।
0: अच्छा, तो मतलब सत्तू के पराठे के साथ और पूरी के साथ आम का रस नहीं खा सकते?
1: खा सकते हैं ना, बिल्कुल खा सकते हैं।
0: लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता है जो इनके शौकीन होंगे, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है अरे क्या बना है, आम का रस और पूरी, तो बहुत, और साथ में आलू की भुजिया।
1: हाँ,
0: तो हमारे श्रोता बता सकते हैं कि कौन कौन लोग अभी इन दिनों में कितनी बार आम का रस पूरी खा चुके हैं,
1: और लोग बुलाते भी हैं, चलो हमारे घर आज आम रस पूरी का आयोजन है, तो आप आइए खाने के लिए। उसके साथ में सूखी आलू की सब्जी भी रख देते हैं, तो बहुत बहुत आनंद आता है सब खाने।
0: तो हमारे कौन से श्रोता हैं जिन्होंने बाग में जाकर आम तोड़ कर खाया है, और कौन कौन से आम? हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमने तो ये देसी आम बहुत सारे खाए हैं, और तोतापरी एक ने लिखा है, चौसा, लंगड़ा, ये आम हमने खाए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने तो रत्नागिरी आम खाया है बहुत सारा, इधर महाराष्ट्र में और कोंकण साइड में खासतौर से ये अल्फांसो जो आम होता है, हापुस आम, ये बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन जो लोग लंगड़ा और चौसा खा चुके हैं उन्हें इनमें स्वाद नहीं आता है। उनको तो फिर लंगड़ा आम तो ऐसे है कि कच्चा आम भी आपको मीठा ही लगता
1: बहुत
0: है,
1: बहुत अच्छा लगता है वो आम,
0: तो उसमें जो
1: आम भी बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ, तो उसमें जो शक्कर मिलाने वाली बात है ना, जरूरत
1: नहीं, जरूरत ही नहीं है उसमें। और वो तो हम लोग ना बारिश होती है ना उसके बाद भी खाते हैं, यानी रक्षाबंधन आता तब तक वो आम आता है
0: अभी। लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में खासतौर से केसर आम,
1: हाँ,
0: बहुत मीठा आ
1: रहा, केसर आम है। फिर उसके बाद में जो बैगन फल्ली आम जो आता है, वो जो साउथ का आम है, वो भी खाते हैं। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी हमारी तो गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती, तो क्या हम आम खाने का आनंद ना उठाएं? वैसे तो आम खाने का आनंद उठाएंगे, आम का नाम सुनते ही हरे पीले रसीले आम आंखों के आगे घूमने लगते हैं। मार्केट जाओ तो हर तरफ आम ही आम दिखते हैं, घर घर में आम के चर्चे, किसने कितने बॉक्स आम के मंगवाया। पर मेरा तो कुछ खास ही अनुभव रहता है, घर का बगीचा है, आम का पेड़ है, सच मानिए एक आम का पेड़ ही कितने सारे आम दे देता है कि आपने जान पहचान के लोगों को खिलाने के बाद भी काफी सारा आम रह जाता है, बिल्कुल शुद्ध बिना रसायन वाला आम। आम के अचार बनाए, आम रस बनाए, मिल्क शेक, आम लस्सी, स्मूदी, सब कुछ, और गर्मियों का आनंद आम के साथ ले रही हूँ।
0: बिल्कुल, और

0: जहाँ आम के बगीचे से याद आया कि हमने भी बचपन में आम का बगीचा, बड़े बड़े बाग देखे हैं और वहाँ पेड़ से तोड़कर आम खाए हैं और गिरे हुए आम बटोरे हैं, भले खाए नहीं लेकिन वो अजीब सा शौक होता था। तो वो जो पिता और दादा के लगाए हुए बाग हैं उनको बढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए आपको नए नए आम के पेड़ भी लगाना चाहिए। वो चाहे कलमी आम हो, लंगड़ा, चौसा या रत्नागिरी, जो भी आम लगाया जाता है वो सीख कर आपको आम के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। और बड़ा आसान होता है, कई कई कुछ आम तो गुठलियों से ही पनप जाते हैं, उग जाते हैं। जैसे यहाँ विविध भारती के परिसर में भी हमने कुछ गुठलियों से आम लगाए हैं और वो बड़ा पेड़ हो गया, तो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में आम खाने का आनंद, आहा बस पूछिए मत। एक दो हो तो कुछ बात भी बने, मगर इतनी वैरायटी के आम की पूछो मत। जहां गए वहीं खा लिया, यदि नहीं गए तो अपना लंगड़ा आम तो है ही है, फिर दशहरी का क्या कहना। हापुस, वाह वाह, ये तो इधर मिलता ही नहीं है, जबकि दक्षिण का तोता परी, अरे यही तो दक्षिण भारत से इधर सबसे पहले आता है। मगर हापुस, जी हाँ, सब खाया जाता है और जी भर के खाया जाता है, अब रोग भी लगाए तो कैसे भाई, स्वाद का मामला है। और भी बहुत सारा इन्होंने लिखा है, तो इनकी बात से हमें याद आ गया कि गांव में बाल्टी में आम भिगो दिया जाता था और लोग बाल्टी, पूरी की पूरी बाल्टी आम खा लेते,
1: और वो छोटे छोटे चूसने वाले आम थे जी, वो
0: और आप तो कह रही कि एक आम दो फाक,
1: अब तो ओ ममता जी उस जमाने में तो 10 आम भी खा लो तो कुछ नहीं होता था, पर अब एक आम भी खाया तो भारीपन लगता है ना,
0: और उसमें केमिकल नहीं होता था, कोई भी केमिकल नहीं, कोई दवा मिला के नहीं, वो सीधे देसी आम।
1: खेलते कितने थे ममता जी हम उस वक्त, कि आम खाए और फिर खेलने चले गए, दिन भर वो बाल्टी में भिगोए हुए आम, आते जाते 20 भी खा लिए, 25 भी खा लिए तो पता नहीं चलता था, अभी तो एक आम खाते खाते परेशान हो जाते। एक हमारे साथी ने लिखा ममता जी की, गर्मियों की चिलचिलाते धूप में जब फ्रिज से निकला हुआ ठंडा ठंडा आम खाने को मिलता है तो मन और तन दोनों तृप्त हो जाते हैं। पारिवारिक जुड़ाव, आम खाने का असली मजा अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठकर हाथ सरो सरो कर आम निकाल कर खाना और रस निकालने, परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। और बहुत सारी किस्में हैं भारत में आम की, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हाफुस, केसर, हर किसी को पसंद होते हैं। और इसके व्यंजन भी, जैसे आमरस है, मैंगो शेक है, आइसक्रीम और अचार भी थालियों की शान बढ़ाते हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम गांव जाते थे तो पेड़ से आम टूट के आते थे तो पहले उसे अनाज की भूसी में रखा जाता था, जब पक जाते थे तो उसे निकाला जाता था और बड़ी बड़ी बाल्टी में मिट्टी के नाद में उसे पानी में डाल दिया जाता था और फिर उसे बाल्टी में ही रखकर खाते थे। तब होर लगता था कि किसके सामने गुठलियों की ढेर ज्यादा होती है। इन गर्मियों में आम के चलते हमें बचपन में फोड़े फुंसी आम के रस से चेहरे पर भी कई तरह के दाग निशान हो जाते थे
1: और आम का पे
0: और आम का पना भी बनता था और साथ में गांव में तो आम के, आम को भून कर आग में उसका रस निकाल कर उससे बाल भी धोए जाते थे। तो ये कितने तरह के आम के, कितने तरह के गुण, और आम के अचार की तो बात ही निराली।
1: और आम की जो रोटी भी बनाते थे, आम का रस बच गया तो उसको थाली में थोड़ा सा आम पापड़ लगा के, आम पापड़ उसमें डाल के उसको सूखा दिया, वो साल भर खाते थे।
0: अमावट भी कहा जाता है जिसे। तो और बोलिए,
1: एक साथी ने लिखा है कि भाई आम जो है सब साथ में बैठकर खाते हैं और आम बैगन फली खाएं, परिवार के साथ बैठकर खाएं, आम खाने का मजा ना अलग होता है, सब बैठकर आम के छिलकों को चूसने लगते हैं, आम की तारीफें कहना और क्या कहना, तुमने उसको ज्यादा आम दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसका तो मजा ही कुछ अलग होता था। आज भी आता है, आज आम का जो स्वाद होता है ना, मैं कहूंगी सारे दिन की थकान मिटाने में सक्षम होता है, इसलिए गर्मी में आम नहीं खाया तो क्या खाया, और वो भी परिवार के साथ कर बैठकर खाया तो उसका आनंद दुगना हो गया।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की गर्मी की छुट्टियों की बात याद आती है तो सबसे पहले नानी का गांव याद आता है। नानी के गांव के उन देसी आमों की बात ही कुछ और थी, बाजार में मिलने वाले हाइब्रिड या बड़े बड़े आमों में वो स्वाद कहां जो उन छोटे रेशेदार आमों में होता था। तो अब क्या इरादा है,
1: आप एक गीत सुन ले।
0: सुनते हैं।

0: वजन कैसे कम करना है इस बारे में हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सुबह 5 बजे विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, फिर हमें राहे प्यार के तक दोपहर तक बाजार बैंक से जुड़े काम निपटा लेता हूँ, सखी सहनी सुनने के बाद आराम कर लेता हूँ, शाम को इनिंग वॉक करने जाता हूँ जिसके कारण दोपहर का खाना भी आसानी से पच जाता है, और जब आपका पेट साफ सुथरा रहेगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी, चलने के कारण आपके हाथ पैर में दर्द भी शिकायत नहीं होगी, ये मेरा निजी अनुभव है। वही एक साथी कहते कि मैं और मेरी श्रीमती सुबह 4 बजे योग, शाम 6 बजे 5 किलोमीटर जाकर वापस घर पैदल आते हैं, रात का भोजन सिर्फ दाल और मूंग की दाल और 2 रोटी लेते हैं, दिन में संतुलित आहार दलिया दूध हरी सब्जी पालक लौकी करेला ग्वारफली 2 रोटी पर्याप्त और 1 कटोरी आम का रस, हर 1 घंटे 1 गिलास पानी। क्या बात है,
1: बिल्कुल। दरअसल होता क्या है कि अगर नियमित रूप से व्यायाम करते रहें और जितनी कैलोरी ले रहे हैं उतना आप शारीरिक श्रम करते रहें तो वजन बढ़ेगा नहीं। व्यायाम शरीर की अतिरिक्त कैलोरी जलाने में सहायता करता है, इसलिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तेज चाल से पैदल चलना चाहिए। इसके अलावा योगा, साइकिलिंग, तैराकी और नृत्य भी अच्छे विकल्प हैं।
0: और सबसे जरूरी बात है ममता जी, नींद पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे ना भोजन छोड़ने लगते हैं कि कुछ लोग ये खाना बंद कर देते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद में अचानक से खाना शुरू कर देते हैं, उससे भी हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही तनाव कम करें, जो लोग तनाव लेते हैं तो उन्हें भी उनका भी वजन बढ़ता है। और मीठे और जंक फूड पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, पिज्जा बर्गर चिप्स केक और मिठाइयों में कैलोरी ज्यादा होती है, तो पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं लेकिन इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए, और घर के बने भोजन को, पौष्टिक भोजन को हमें प्राथमिकता देना चाहिए।
1: मतलब आम के रस में शक्कर नहीं मिलाना चाहिए, आपने जैसे बताया था।
0: हाँ, आम के रस में शक्कर बिल्कुल नहीं मिलाना,
1: बिल्कुल मीठी चीज में शक्कर मिला के ना खाएं।
0: अब कुछ लोग चाय में भी इतनी सारी शक्कर डाल के पीते हैं, तो जहां तक हो सके अगर मिठाई खाना है तो चाय फीकी पी सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वही हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि ये जो वजन घटाने की गति तेज करने के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम स्तर पर कार्डियो, जैसे तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, मांसपेशियों के निर्माण के लिए कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से भी शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे आराम करते समय कैलोरी बर्न होती है।
1: और साथ में पानी ज्यादा पीते रहना चाहिए, ये जो गर्मी का मौसम है इसमें तो खास ख्याल रखना चाहिए। और हमें

0: छोटी बहन फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजें थी। और अब सोनाली जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं यूनुस खान बोल रहा हूँ। स्टूडियो नंबर एक वो स्टूडियो है जहाँ हम अपने फोन इन कार्यक्रमों के लिए आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0222867 0288, यानी 2867 0288, और 0224002466 2, यानी 400-2466। तो सोमवार को दिन में 11 बजे से रिकॉर्डिंग होती है। देश भर के श्रोता फोन करते हैं और कई श्रोता इस बात से निराश होते हैं कि उनका फोन नहीं लगता। दरअसल फोन लाइंस की अपनी सीमाएं हैं ना। देश के कोने कोने से जब हजारों लाखों श्रोता एक साथ कॉल करते हैं तो कुछ खुशनसीब श्रोताओं का कॉल लग जाता है और उनकी हमसे बात हो जाती है। बस ये है कि आप कोशिश करते रहिए। और हाँ, जहाँ से फोन कर रहे हो वहाँ शोर नहीं होना चाहिए। नेटवर्क अच्छा हो तो आपकी रिकॉर्डिंग अच्छे से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार,
1: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ, प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, कैसी हैं आप?
1: बहुत ही अच्छे हैं। मजेदार गर्मी का मजा लेते हुए हम आपको कॉल कर रहे हैं सर जी।
0: गर्मी का मजा, ये बड़ा तंज है ये।
1: हर मौसम का अपना मजा है सर जी। यदि अपन बारिश में फिर ये गर्मी धूप ढूंढेंगे तो फिर प्राप्त नहीं हो पाएगा ना।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन इस साल की गर्मियां कहर हैं, आपको ऐसा नहीं लगता?
1: नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सभी मौसम के आदी हैं और हमें हर मौसम में अपने उनका मजा लेना बहुत अच्छा लगता है।
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: फिल्म का नाम है हम आपकी है कौन।
0: अच्छा,
1: उस फिल्म में लता मंगेशकर एंड एसपी बाल सुब्रमण्यम का गाया हुआ गीत है सर जी, उस गीत को प्ले कीजिएगा
0: जी।
1: गीत के बोल मैं थोड़ा गुनगुना के बता दूं क्या सर जी?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: किसी जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, कुछ पल की जुदाई फिर लौट आना है। अलग सर जी,
0: क्या बात है। अच्छा, आपने बताया कि आपका नाम पूनम नायडू है और आप बस्तर से हैं, तो बस्तर में कब से हैं आप या यहीं पैदा हुई हैं?
1: नहीं, हम यहीं पर पैदा हुए हैं सर जी। जब एमपी था, मेरे पापा का जॉब यहाँ आंध्रा से यहाँ हो गया तो हम लोग यहीं पे बस गए, मम्मी पापा, और हमारी पैदाइश जो है यहीं पे हुई एमपी में। बाद में डिवाइड हुआ ना छत्तीसगढ़ और एमपी।
0: अच्छा, तो आपको तेलुगु आती है?
1: हाँ, तेलुगु पूरा बोलते, घर में तो हमारी मातृभाषा है ना सर जी।
0: तो बताइए तेलुगु में इस बात को कैसे बोलेंगे कि सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गाना।
1: हाँ, एनंदी मी मीरु मी नचकुनी पाटा।
0: अरे बाप रे बाप। नहीं, इसको थोड़ा छोटा बोलिए।
1: वेरवंडी वीरू मी नचिंदी पाटा।
0: वेरवंडी वीरू मी नचिंदी पाटा, सुनिए अपनी पसंद पर ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश,
1: राकेश यादव बोल रहा हूँ, सासनी के टलीगढ़ से।
0: राकेश जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, ठीक है।
0: क्या काम करते हैं?
1: दुकान करते हैं मोबाइल के, टाइम बहुत सुनता हूँ मैं, काफी दिनों से सुन रहा हूँ। जब हमारे जब ऐसा वो रेडियो था
0: जी,
1: बहुत काफी समय पहले से रेडियो भारती सुन रहे हैं।
0: अच्छा, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है।
1: आशा पिक्चर का ही गाना सुनना चाहते हैं, शीशा हो या दिलो आखिर टूट जाता है।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्ते सर, जगदीश चौहान पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी जगदीश जी, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया सर।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मुझे वो सुमन कल्याणपुर जी और मुकेश जी की आवाज में मेरा प्यार भी तू है, बहार भी तू है, रूही नजारों में।
0: साथी फिल्म का गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल, नौशाद की तर्ज। सुमन जी हमारे बीच नहीं रही और एक तरह से आप इस गाने के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं।
1: जी सर।
0: जी चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम अपने एमपी सागर से विक्रम सिंह और चालू राजा।
0: विक्रम सिंह सागर में कौन से इलाके से बोल रहे?
1: सागर इलाके मैंने तहसील बंडा, हमारा ग्राम छोटा सा गांव पड़ता है क्वायला।
0: बंडा तो समझ में आ गया हो, पर गांव का नाम समझ में नहीं आओ।
1: क्वायला क्वायला।
0: अच्छा बताओ क्या कर रहे हैं आज?
1: अब बैठा है सर, छोटी सी किराने की दुकान है जी।
0: अच्छा, और गर्मी अर्मी कैसी पड़ रही?
1: गर्मी तो सर बहुत है, अभी आपको थोड़ी राहत मिल चुकी है।
0: काय बारिश हो गई का?
1: जी बारिश हो गई 2 दिन तक में।
0: अच्छा कितनी बारिश हुई, बहुत सारी हुई या थोड़ी सी हुई?
1: थोड़ी सी हुई है सर, ज्यादा तो नहीं हुई है।
0: हाँ अभी तो 9 तपा चल रहे, ये खत्म हो गए।
1: तीन दिन बाकी
0: तनक बाकी है, 3 दिन बाद तो फिर बारिश आ जाए है, फिर मौज हो जाए है। काय
1: जी सर।
0: अच्छा कौन सा गाना सुनने हैं जी बताओ?
1: हमको सुना है पगला कहीं का।
0: है पगला कहीं का? को है पगला?
1: पगला कहीं का फिल्म का मैंने फिल्म का नाम है पगला कहीं का, और बोल है वो मन्ना डे की आवाज में है, मेरी भैंस को डंडा तो हमारा।
0: ए दद्दा रे, किसी ने किसी की भैंस को डंडा मार दो का? कहा होगा हमें तो बताओ।
1: आपसे बात करके
0: मजा आ गया, हमसे बात करके हमें सो ही मजा आ गया, आपसे बात
1: आनंद आया सर।
0: सच्ची हमें भी बहुत ही आनंद आ गया, हमें जितने भी अपने श्रोता हरण है ना सबसे बात करके बहुत ही मजा आता है
1: जी। आपका बिल्कुल सर बुंदेलखंड जैसा बटका है बिल्कुल आपका।
0: बुंदेलखंडी आए अपन शुद्ध वाले। हाओ तो चलो बातों का सिलसिला कर रहे खत्म, और आपको सुना रहे आपकी फरमाइश को जे गाना।

वो लड्डू पेड़े खाती है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती है, ये मच्छर बीन बजाते हैं, वो अपना राग सुनाती है, वो ठुमक ठुमक नाचे जब मैं दिल का बजाऊं एक तारा मेरी भैंस को डंडा।

हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हम सब तो रेल के डिब्बे हैं, वो अपनी इंजन गाड़ी है, वो गुस्सा जब भी करती है तो बन जाती है, तो बन जाती है। अंगारा मेरी भैंस को डन

चांद बढ़कर प्यारी है, क्या बोलूं एक कटारी है, कजरारी उसकी अखियां है, विश्वास अपनी यारी है। मैंने तो अपनी कल्लो का है नाम रखा जहानारा। मेरी भैंस को डंडा,

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी कौन?
1: मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ।
0: ज्योति जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: पीतमपुर जिला धार मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा बताइए, क्या हालचाल है पीतमपुर के?
1: जी बढ़िया है, गर्मी पड़ रही है।
0: गर्मी पड़ रही है, सब जगह गर्मी पड़ रही है और बहुत जोरदार पड़ रही है कि नहीं
1: जी?
0: अब हमें ये बताइए, हमें ये बताइए कि इस साल गर्मी से बचने के क्या उपाय किए आपने?
1: गर्मी के से बचने के लिए बाहर जाए तो तावील लेके जाए, छाता लेके जाए, पानी अपने साथ लेके जाए।
0: बहुत सही, बिल्कुल।
1: ज्यादा से ज्यादा धूप में कहीं ना निकले।
0: सही बात है। अच्छा बताइए, आज किस गाने की फरमाइश है?
1: गाना फिल्म का नाम है सूरज, तुमसे इतना प्यार है।
0: क्या बात है, चलिए बातें करते हैं पूरी और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: अच्छा बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: अनिल नाइक बोरोली मुंबई से बात कर रहा हूँ।
0: जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ।
0: क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: पैसा धन का गाना सुनना चाहते। पैसा
0: गाने के बोल बताइए।
1: जिन्हें ना रहे इन लोग पर वो कहाँ है।
0: क्या बात है, साहिर लुधियानवी के बोल, शानदार गाना, SD बर्मन का संगीत। जी कुछ कहना चाहते हैं इस गाने के बारे में?
1: बहुत बढ़िया गाना है
0: जी।
1: कितना भी सुने तो मन भरता नहीं है।
0: बिल्कुल, कितना भी सुने इस गाने को मन नहीं भरता।
1: और मोहम्मद रफी की आवाज में तो क्या गर्व था।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने की फरमाइश के लिए। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं दुलगोविंद मिश्रा, उड़ीसा से, डिस्ट्रिक्ट झारसुगड़ा। हमारा गांव का नाम सुल्हाई है।
0: अच्छा, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी सर, बहुत बढ़िया है। एक साल के बाद आपसे बात हो रहा है। मैंने दिल्ली हर सोमवार को हम फोन लगाता है, लेकिन आपका नंबर नहीं लगता है सर। बीजी बताता है।
0: देश भर के श्रोता फोन कर रहे होते हैं, तो इस वजह से मुश्किल होती है फोन लगने में।
1: आप बोलते हैं कि महीना में एक बार लगाने के लिए, मैं तो हर सोमवार को लगाता हूँ, लेकिन मेरा नंबर एक साल हो गया, कभी नहीं लगा सर।
0: तो आज लगा है, ये बहुत खुशी की बात है।
1: बहुत खुशी बात है, मेरे को बहुत खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि उड़ीसा का नंबर नहीं लगता है, क्या सोच रहा था मैं?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश के कोने कोने से लोगों के फोन आते हैं और सबके नंबर बारी बारी से लगते हैं। इतने लोग लगा रहे होते हैं कि फोन लाइन की भी अपनी सीमाएं हैं।
1: जी
0: बताइए, क्या हालचाल है आपके इलाके के, उड़ीसा के?
1: जी हालचाल तो सिर्फ गर्मी के लिए तो बहुत, हर आदमी परेशान है, बहुत गर्मी हो रहा है। ये तीन दिन से थोड़ा सा मैंने बारिश हो रहा था, थोड़ा सा राहत मिला है।
0: जी जी, बारिश होने से वाकई राहत मिल गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश की खबरें हमें मिल रही हैं।
1: जी जी,
0: कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं विविध भारती के आपको?
1: जी हमको तो ज्यादा हेलो फरमाइश, और जो आप जो सुनाते हैं, जो मैंने संदेश टू सोल्जर वो वाला, फनकार जो सुनाते हैं वो वाला, और अभी जो नया एक्ट जो शुरुआत किए हैं, एक बजे जो सुनता हूँ वो अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इन कार्यक्रमों को पसंद करने के लिए। बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी दोस्ती फिल्म का राही मनवा, दुख क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना है, सुनते हैं ये गाना।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को,

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश यूनिस साहब, कैसे हैं आप?
0: जी। मैं अच्छा हूँ।
1: मैं तो आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि पूछे मैं नहीं आप तो। मैं कितने आपके इंटरव्यू सुने, कितने आपके शब्दों में बोले तो मजा आ गया, क्या बात है।
0: मजा आ गया, क्या बात है। कौन बोल रही हैं आप?
1: मैं आशा बोल रही हूँ बेंगलुरु से, और मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। आपके बड़े सारे प्रोग्राम मैं सुनती हूँ, और मैं 3 हफ्ते 5 हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ आपका। जब सुनती हूँ लोग बात कर रहे, बड़ी जलन होती थी।
0: अरे बाप रे,
1: मैं भी बात कर रही हूँ। ये
0: क्या बात है। देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना।
1: पहले बात तो मैं कहना चाहूंगी कि आपके पुराने प्रोग्राम में सब है, आपने एक राइटर से बात की थी, तब वो राइटर ने आपसे कहा था, आपसे या किसी और से, यूनिस खान से बात करने से ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने देवर से बात।
0: ओहो क्या बात है।
1: वो राइटर ने ऐसे बोला था कि मेरे मतलब जहन में है, वैसे ही मैं आप भी मेरे जहन में हो
0: जी।
1: आप लोगों से तो मेरा ऐसा रिश्ता है कि पूछो मत, सारा दिन मैं सुनती रहती हूँ, सारे प्रोग्राम सुनती रहती हूँ
0: जी।
1: लोग मेरे से तंग आ गए, कितना बजाओगी करके।
0: अच्छा, विविध भारती का साथ इसी तरह से बना रहे हैं आपके साथ, है ना?
1: मैं बस जिंदगी भर अंत तक सुनती रहूंगी, उनका यही लक्ष्य है बस।
0: क्या बात है जी। तो बताइए, कौन कौन से कार्यक्रमों का जिक्र करना चाहेंगी जो आपके दिल के करीब रहे हैं?
1: सभी कार्यक्रम, ज्यादातर पिटारा के सारे प्रोग्राम
0: जी,
1: वो बहुत अच्छे रहते हैं
0: जी।
1: और हेलो फरमाइश, हेलो सहेली, और सब आप अभी तो एकदम से मैं एक्साइट हो गई हूँ, प्रोग्राम के नाम ही याद नहीं रहे आपसे बात करते हैं।
0: जी, जी, जी।
1: सबसे ज्यादा तो आज के फनकार मैं सुबह जरूर सुनती हूँ
0: जी।
1: सुबह 8 बजे से लेके मेरा विविध भारती शुरू हो जाता है, न्यूज से लेके, और जब तक हो सके तब, और रात को भी जब भी टाइम मिले तब।
0: अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो आज कौन सा गाना चुन रखा है आपने?
1: मैंने राम तेरी गंगा मैली का, सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, तुम्हारे पथ पर जो भी आए, उन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए।
0: क्या बात है भाई, इतने सारे बोल भी याद है आपको?
1: अरे अरे, मेरे को तो कुछ कुछ गानों के पूरे पूरे बोले आते, पूरा गाना सुना सकती हूँ।
0: वाह वाह वाह, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मतलब वो जो आप कहती है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्या बात है,
1: क्या बात है। थैंक यू
0: जी, शुक्रिया।
1: बचपन से आप बिलीव नहीं करवाए, 57 नाउ, और मैं कम से कम 5-6 साल से विविध भारती सुन रही हूँ।
0: ये लंबा सफर तय किया आपने विविध भारती सुनते हुए।
1: बस सब सब आप लोग पुराने गाने, सब मतलब जो चीजें कहीं नहीं बचती वो विविध भारती पे बस।

0: क्या बात है जी, शुक्रिया, ये जान के बहुत अच्छा लगा।
1: मैं आपसे बात करके गदगद हो गई हूँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया मेरा आपसे बात। थैंक यू थैंक यू थैंक यू,
0: शुक्रिया। हम ये दुआ करेंगे कि आगे भी आपका फोन लगे और बातें हों। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर बातों का सिलसिला यहीं करते हैं खत्म, और आपको सुनवाते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ भैया जी नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी जी बताइए।
1: एकदम बढ़िया है भैया।
0: क्या करते हैं आप?
1: हमारा मूल काम खेतीबाड़ी का है भैया।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, और अभी तो फिलहाल गर्मी में आराम करना ज्यादा होता है और बरसात जैसे लगेगा धान की बुआई करेंगे।
0: और छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के इलाके में गर्मियों के मौसम में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत लुभाती हैं, जैसे कि आम?
1: आम और अमरूद तो इधर बहुत मिलता है भैया, मतलब आम तो बाहर से ही आते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: लेकिन जो अमरूद वगैरह होते हैं वो प्रायः घर में अमरूद है, पपीता हो गया, बेर का पेड़ हो गया, ये मतलब बहुत आयत सबके घर में मिल जाते हैं।
0: सही है सही है। अच्छा बताइए कि इस साल क्या गर्मियां बीते कई सालों की तुलना में ज्यादा पड़ी?
1: बिल्कुल ज्यादा पड़ा है भैया, 44 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। और कई इसके कारण होंगे भैया, सबसे ज्यादा तो यही अपन जो देखते हैं पर्यावरण में हस्तक्षेप करना, और हम मानव समाज के लिए बेहद जरूरी है कि हम प्रकृति से निकटतम प्रेम करें और वो सामंजस्य बना के रखें।
0: बहुत प्यारी बात कही आपने। अब मुझे ये बताइए कौन से गाने की फरमाइश है?
1: फिल्म है राजा और रंग के गीत के बोल है, ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, ये प्यारा सा गीत सुनना है।
0: बहुत ही बढ़िया, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 2867-0288, दूसरा है 400-24662, अंग्रेजी में बता दें 2867-0288 और 4002-4662। मुंबई का एसटीडी कोड 022 है। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से होती है। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज शामिल हो गए वो कृपया दो महीने तक हमें फोन ना करें ताकि नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। और हाँ, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए जब आप बातें करें तो अपने इलाके के बारे में कुछ बताएं, कुछ दिलचस्प बातें करें, कुछ गाने सुनाएं तो इस कार्यक्रम को हम अच्छी तरह से सजा सकते हैं। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो, फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है रोज।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की कार्यक्रम FM 102.9 MHz पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। श्रोताओं, इस वक्त शाम के ठीक 5 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या साथियों, स्वागत है आप सभी का फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की शाम जो है ना, थोड़ी सी खास है, थोड़ी नहीं बेहद खास है, क्योंकि भारतीय सिनेमा के आकाश में यूं तो कई सितारे चमके, लेकिन एक सितारा ऐसा था जिसकी आंखों में सादगी, अभिनय में गहराई और मुस्कान में गजब का ठहराव था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक, नूतन जी की। आज उनका जन्मदिन है और इस खास मौके पर हम उनकी जिंदगी के सफर को याद करेंगे और सुनेंगे उनके अभिनय से सजे कुछ बेहद ही खूबसूरत नगमे। तो दोस्तों, निर्देशक कुमार सेन समर्थ और अभिनेत्री शोभना समर्थ के घर जन्मी नूतन ने महज 14 साल की उम्र में फिल्म हमारी बेटी से इस इंडस्ट्री में कदम रखा। लेकिन उनकी शुरुआती सफर की एक बेहद दिलचस्प बात यह भी है कि वो 1952 में मिस इंडिया भी चुनी गई। सादगी और ग्लैमर का यह अनूठा संगम हमें उनकी फिल्मों में भी देखने को मिला।

तो आइए नूतन जी के इसी चुलबुले और रोमांटिक अंदाज से इस कार्यक्रम की यानी कि फिल्म संगीत की शुरुआत करते हैं। देवानंद साहब के साथ आई उनकी फिल्म पेइंग गेस्ट का ये बेहद ही चुलबुला गीत आइए सुनते हैं आपके अपने रेडियो सेट पर, जिसे आपने ट्यून किया है FM 102.9 MHz पर। हमारे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी, देश दुनिया में कहीं से भी।

छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। वाकई नूतन जी और देव आनंद साहब की केमिस्ट्री इस गाने में कमाल की थी। दोस्तों, नूतन जी सिर्फ अपनी एक्टिंग में ही नहीं बल्कि अपने किरदारों के साथ किए गए प्रयोगों के लिए भी जानी जाती थी। और अगर हम बात करते हैं प्रयोग की, तो आइए क्यों न हम और आप मिलकर भी एक नया प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रयोग करते हैं? तो आपके पास मोबाइल तो है ही, और आप इस मोबाइल से जाहिर सी बात है सेल्फी भी लेते होंगे। तो हम कौन से प्रयोग की बात कर रहे हैं, कौन सी सेल्फी की बात कर रहे हैं, तो ये जानेंगे हम इस

तो अभी आपने इस संदेश को सुना आपने आकाशवाणी के 90 वर्ष। तो जी हाँ, तो हमारा और आपका जो प्रयोग है वो भी कुछ ऐसा ही कहता है, यानी कि आकाशवाणी के 90 वर्ष। और इन 90 वर्षों में यानी कि इस अवसर पर आपको क्या करना है, आप जाहिर सी बात है रेडियो पर इस वक्त आप हमको सुन रहे हैं, तो क्यों ना उसी रेडियो के साथ अपनी एक सेल्फी लिए। जी हाँ, बैकग्राउंड में आपके साथ आपका रेडियो आना चाहिए और एक आप सेल्फी लीजिए अपने मोबाइल से और उस सेल्फी को अपलोड कर दीजिए आज की हमारी सोशल मीडिया पोस्ट पर, यानी कि फेसबुक पर, जो आज युवाणी कार्यक्रम जो आने वाला है शाम को 5:30 बजे, उसके रिगार्डिंग जो पोस्ट है उसके कमेंट में आप उस सेल्फी को अपलोड कर दीजिए और साथ ही अपनी पसंद का कोई खास गाना भी आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, अपना नाम और अपने गाँव या शहर का नाम तो आपको जाहिर से बातें बताना ही है। और हाँ, एक काम और आप और कर सकते हैं, आप इसी सेल्फी को आप मेरे ईमेल के पते पर भी भेज दीजिए। हमारा जो ईमेल का पता है वो है akashwani.chittorgarh@gmail.com। और हम एक आने वाले दिनों में एक खास कार्यक्रम में आपकी फरमाइश को हम दुनिया को सुनाने वाले हैं और साथ ही आपके नाम और आपके गांव की भी हम चर्चा करने वाले हैं उस कार्यक्रम में। तो तुरंत अभी अपने रेडियो सेट के साथ सेल्फी लीजिए और भेज दीजिए हमारे ईमेल के पते पर, और युवाणी के लिए भी आप भेज ही सकते हैं। तो अब हम चलते हैं फिर से अपने इसी कार्यक्रम में, यानी कि फिल्म संगीत में, और बात करते हैं नूतन की। और हम नूतन के साथ हम बात कर रहे थे उनके द्वारा किए गए प्रयोगों के लिए। तो जहां एक तरफ उन्होंने बेहद गंभीर भूमिकाएं की, वहीं राज कपूर के साथ भी फिल्म अनाड़ी में उनका मासूम और चुलबुला अंदाज दर्शकों के दिलों को छू गया। साल 1959 की इस फिल्म ने नूतन जी को हर दिल अजीज बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस बेहद खूबसूरत शाम में नूतन जी के जन्मदिन का जश्न मनाता हुआ ये बेहद ही खूबसूरत सा गीत। गीत के बोल, जी हाँ, आपने सही समझा, वो चांद खिला।

वो चांद खिला, वो तारे हंसे। नूतन जी के चेहरे की चमक भी किसी चांद से कम नहीं थी दोस्तों। वैसे नूतन जी ने हर बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया, लेकिन बिमल रॉय साहब की फिल्मों में उनका एक अलग ही रूप निखर कर सामने आया। फिल्म सुजाता में जहां उन्होंने छुआछूत की पीड़ा को पर्दे पर जीवंत किया, वहीं साल 1963 में आई फिल्म बंदिनी में कल्याणी के किरदार में उन्होंने जो अभिनय किया, उसे आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से गिना जाता है। तो क्या आपने वो फिल्म देखी थी? जी हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपने बंदिनी फिल्म देखी थी, या फिर आपको बंदिनी का कौन सा गाना पसंद है? तो अगर आपको फिल्म बंदिनी का कोई गीत पसंद है जो नूतन पर फिल्माया गया हो, तो क्यों ना आज उस गीत की आप फरमाइश कर लीजिए रेडियो विद सेल्फी के साथ। जी हाँ, आप इस वक्त अपने रेडियो के साथ यदि इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो एक सेल्फी लीजिए, और जो भी गीत आप पसंद करते हैं फिल्म बंदिनी से, या फिर कोई सा भी और गीत जो आप चाहते हैं रेडियो पर सुनना अपने नाम के साथ, तो उस सेल्फी को भेज दीजिए हमारे ईमेल के पते पर। हमारा ईमेल का पता है akashwani.chittorgarh@gmail.com। और हाँ, अपना नाम और अपने गांव या शहर का नाम बताना मत भूलिएगा, और हम इस तमाम जानकारी को आपकी रेडियो विद सेल्फी को हम एक आने वाले खास कार्यक्रम में शामिल करेंगे और आपकी फरमाइश को हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुँचाएंगे। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं बंदिनी की और बंदिनी के गानों की। तो उस गीत में यानी कि उस फिल्म में नूतन का जो अभिनय था, उसे आज भी सबसे बेहतरीन अभिनय में गिना जाता है। इस फिल्म में उनकी आंखों से बहते दर्द और खामोशी ने सबको रुला दिया था। तो आइए सुनते हैं इसी कालजयी फिल्म से संजीव कुमार और नूतन जी पर फिल्माया गया ये सुरीला गीत, जिसे सुरों से सजाया है लता मंगेशकर जी ने।

0: मोरा गोरा अंग लहिले मोरे श्याम रंग दई दे, इस गीत की सादगी सीधे रूह में उतर जाती है। और दोस्तों, इस गीत को जब हम सुनते हैं और या फिर जब हम टीवी पर पर्दे पर देखते हैं तो नूतन जी की छवि हमारी आंखों से कभी ओझल हो ही नहीं सकती। उनकी वो साड़ी पहनने की स्टाइल, उनकी मासूमियत, उनकी गंभीरता उनकी किरदारों तक सीमित नहीं थी। अगर हम बात करते हैं साड़ी की, तो साड़ी के बारे में जो ये भारतीय पहनावा है साड़ी, इसके बारे में आपसे कुछ और भी रोचक और मजेदार बातें करने के लिए आ रहे हैं कार्यक्रम युववाणी को लेकर हमारे सहयोगी रोहित, तो सुनिएगा जरूर आज शाम ठीक 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी। और हाँ, इसी कार्यक्रम में हमारे उन श्रोताओं के बारे में भी बात की जाएगी जिन्होंने सेल्फी विद रेडियो पोस्ट की है इस कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में, यानी कि फेसबुक पर इस कार्यक्रम के संबंधित जो पोस्ट थी आज की, उसमें भी हमारे कुछ श्रोताओं ने अपनी सेल्फी अपलोड की है और अपने मनचाहे गीत की फरमाइश भी की है। तो उनके बारे में भी हम कार्यक्रम युववाणी में आपको जानकारी देंगे और ये जानकारी लेकर आ रहे हैं हमारे सहयोगी रोहित, तो सुनिएगा जरूर शाम को ठीक 5:30 पर। फिलहाल हम बात कर रहे हैं नूतन की और नूतन की सादगी की। तो उनकी सादगी और गंभीर जो है गंभीरता जो थी वो केवल किरदारों तक सीमित नहीं थी, वो अपने जमाने से कहीं आगे थी। साल 1958 में आई फिल्म दिल्ली का ठग में उन्होंने किशोर कुमार साहब के साथ काम किया और इस फिल्म में एक तैराक यानी कि स्विमर आशा का रोल निभाकर स्विम सूट में एंट्री लेकर 50 के दशक में तहलका मचा दिया। उनका ये बोल्ड और बेबाक अंदाज उनकी बहुमुखी प्रतिभा का सबूत था। तो आइए इसी फिल्म से किशोरदा और नूतन जी का ये सदाबहार और सुहाना गीत सुनते हैं। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ की मीरा चैनल से।
1: ये रातें, ये मौसम

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

तो दोस्तों अभी ये संदेश हमने सुना आकाशवाणी के 90 वर्ष और इसी संदेश के रिगार्डिंग हमने आपसे बात की थी सेल्फी विद रेडियो। और देखिए हमारे श्रोताओं ने इस वक्त हमारे जो अगला जो कार्यक्रम है युवाणी उसके जो आज के कमेंट में उसके कमेंट बॉक्स में हमें कुछ सेल्फीज हमें मिली हैं, तो हम स्वागत करते हैं आप सभी श्रोताओं का उस कार्यक्रम में। और जो श्रोता जिन श्रोताओं ने अभी हमने सुनना प्रारंभ किया है तो हम उनको बताना चाहेंगे कि आकाशवाणी के 90 वर्ष हम मना रहे हैं। तो यदि आप भी सेल्फी विद रेडियो में भाग लेना चाहते हैं तो आपको करना केवल यह है कि अब इस कार्यक्रम को आप जिस भी माध्यम से सुन रहे हैं यानी कि रेडियो से या मोबाइल से, तो उसके साथ अपनी सेल्फी लीजिए। खासतौर से अगर आपके पास रेडियो है तो रेडियो के साथ सेल्फी लीजिए और हमारे ईमेल के पते पर भेज दीजिए akashwani.chittorgarh@gmail.com। और हाँ, साथ में जो गीत आप सुनना चाहते हैं उस गीत के बोल जरूर बताइएगा, साथ में अपना और अपने गाँव या शहर का नाम भी आप हमें लिख भेजिएगा, तो उसको हम आने वाले एक विशेष कार्यक्रम में जरूर हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुंचाएंगे, आपकी पसंद को, आपकी फिल्मी पसंद को। और हम फिलहाल बात कर रहे हैं अभिनेत्री नूतन के फिल्मी सफर पर। और इस संदेश से पूर्व हमने गाना भी सुना था, ये रातें ये मौसम, फिल्म का नाम था दिल्ली का ठग। और इस गाने को सुनकर पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। दोस्तों नूतन जी की जो जिंदगी थी ना, वो एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल जी से शादी की और बेटे मोहनीश बहल के जन्म के बाद फिल्मों से एक छोटा सा ब्रेक भी ले लिया, लेकिन जब उन्होंने वापसी की तो वो वापसी बेहद धमाकेदार थी। साल 1963 में वो देव आनंद साहब के साथ एक ताजा तरीन रोमांटिक कॉमेडी

तेरे घर के सामने में नजर आई। इस फिल्म का टाइटल ट्रैक कुतुब मीनार के अंदर फिल्माया गया था, जो आज भी एक मिसाल है। तो जल्दी ये सुनते हैं देव साहब और नूतन जी का ये लाजवाब गाना, फिल्म का नाम तेरे घर के सामने।

दिल का भंवर करे पुकार प्यार का राग सुनो। और ऐसे ही प्यार का राग सुनाते सुनाते साल आया 1991, जब वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ते हुए इस दुनिया से चली गई, अलविदा कहे गई। भले ही आज नूतन जी हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन अपनी 70 से अधिक फिल्मों, अपनी बेमिसाल अदाकारी, अपनी खूबसूरत मुस्कान और इन सदाबहार गानों के जरिए वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुकी हैं। तो आज उनके जन्मदिन पर हमारा ये शो, ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम उनकी इन्हीं खूबसूरत यादों को एक छोटा सा नमन था। आपको हमारा ये आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अब अपने दोस्त यानी कि अपने रेडियो वाले दोस्त महेंद्र खेरारू को दीजिए अनुमति, इस कार्यक्रम से आप सुनते रहिए आपका अपना FM मीरा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। इस वक्त शाम के ठीक 5:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार साथियों, मैं आपका रेडियो दोस्त रोहित सुथार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में। दोस्तों, हम सभी अपनी ज़िंदगी को लेकर बड़े बड़े सपने देखते हैं और अपनी मनचाही ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, इसे खुद अपने हाथों से बनाना पड़ता है। दोस्तों, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ख्वाब बुनने और उसे हकीकत में जीने के बीच एक बहुत बड़ा पुल होता है जिसे हम मेहनत और अनुशासन कहते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है जो हमें बाज़ार में मिल जाए। ये खाली कैनवस की तरह है जिस पर मेहनत के रंग और फैसलों के ब्रश से हमें खुद अपनी मनपसंद तस्वीर उकेरनी होती है। अगर आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिए, जिनमें सबसे पहले दोस्तों किस्मत के भरोसे बैठना छोड़िए और लगातार मेहनत और कोशिश करते रहिए, और छोटे छोटे ही सही लेकिन लगातार कदम बढ़ाइए। दोस्तों, अगर आप वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं तो आपको वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता आया है। इसलिए कभी भी बदलाव से मत डरिए और असफलताओं को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, याद रखिए, ज़िंदगी आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, ज़िंदगी आपको वो देती है जिसके लिए आप काम करते हैं। तो अपनी तकदीर के लेखक खुद बनिए। आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी कहानी है, जितना हो सके इसे कमाल लिखिए। तो साथियों, आज से ही अपनी मनचाही ज़िंदगी बनाना आरंभ कीजिए, और यह आरंभ कैसा होना चाहिए इसके लिए आइए सुनते हैं एक गीत।

है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो।

सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार।

जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, जब हम अपने देश की संस्कृति और परंपरा की बात करते हैं तो हमारे मन में जो सबसे पहली तस्वीर उभरती है वो है यहाँ का अनूठा और गरिमामय पहनावा। और भारतीय पहनावे की बात तब तक अधूरी है जब तक हम दुनिया के सबसे प्राचीन और सुंदर परिधान की बात न करें। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साड़ी की। साथियों, सनातन परंपरा में पहनावा सिर्फ तन ढकने का साधन नहीं बल्कि ये हमारे आंतरिक विचारों, पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक है। भारतीय महिलाएँ जब साड़ी धारण करती हैं तो साक्षात देवी स्वरूप नजर आती हैं। साड़ी का स्वरूप शरीर में सात्विक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाता है। ये महिला की शालीनता, लज्जा और शक्ति को एक साथ प्रदर्शित करता है। साथियों, हमारे हिंदू संस्कृति में आदि शक्ति माँ दुर्गा, धन की देवी माँ लक्ष्मी और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की कल्पना भी हमेशा साड़ी में ही की गई है। प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई देवियों की मूर्तियाँ प्रमाण है कि साड़ी काफ़ी पुराने समय से नारी की दिव्य शक्ति का परिधान रही है। साथियों, फैशन के इस दौर में जहाँ रोज नए ट्रेंड्स आते हैं और चले जाते हैं, साड़ी कल भी सदाबहार थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। ये हमारी महान हिंदू संस्कृति की मर्यादा, सनातन धर्म के संस्कार और हमारे देश की पहचान का एक जीवंत प्रतीक है।

साथियों, हम अभी आकाशवाणी का 90वां वर्ष मना रहे हैं। इस अवसर पर हम अपने तमाम श्रोताओं के लिए इस कार्यक्रम में खास अवसर लेकर आए हैं। अभी तक इस कार्यक्रम को आप सुन रहे थे, लेकिन आज आप इस कार्यक्रम में भागीदारी भी करेंगे। तो आपको करना केवल यह है कि इस कार्यक्रम से संबंधित हमारी आज की सोशल मीडिया पोस्ट के कमेंट बॉक्स में रेडियो के साथ अपनी सेल्फी भेजिए, और साथ ही जो गीत आप अभी सुनना चाहते हैं उस गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना और अपने गांव या शहर का नाम लिखकर पोस्ट कीजिए। आइए मनाते हैं साथ मिलकर आकाशवाणी के 90 वर्ष। और अब चलते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में मंगल जनागल राही जी ने अपनी बेहद ही खूबसूरत रेडियो के साथ अपनी सेल्फी भेजी है, और गाना उन्होंने सुनना चाहा है फिल्म मीरा का मोहन से। आइए सुनते हैं उनकी पसंद का गीत।

सोनू मिस्त्री, महेंद्र सुथार, कालू मिस्त्री जी ने। तो आइए अब सुनते हैं उनकी पसंद का गीत जो है फिल्म धर्मवीर से। गीत का नाम है सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी।

साथियों, अगला ये गाना सुनेंगे हम थोड़ी देर बाद, लेकिन हम चलते हैं अगली सेल्फी की तरफ जो हमें भेजी है नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, पवन सुथार, शंकर बिहारी, शिव कुमार,

दोस्तों, इस कार्यक्रम के लिए आपकी सेल्फी हमें लगातार मिलती जा रही है और एक और श्रोता की उनकी सेल्फी के साथ, उनकी फरमाइश के साथ शामिल करते हैं। आप हैं अशोक दशोक।

दोस्तों सेल्फी विद रेडियो को आप अपनी फरमाइश के गीतों के साथ ईमेल कीजिए हमारे ईमेल के पते पर जो है akashvani.chittorgarh@gmail.com। हम आने वाले खास कार्यक्रम में आपकी सेल्फी और आपकी फरमाइशों को हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। आइए अब बात करते हैं आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। दोस्तों बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा घर और समाज में खुशियां बिखेरता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में लाखों बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बचपन हिंसा, युद्ध और आक्रामकता की वजह से छिन जाता है। आज यानी 4 जून को पूरी दुनिया में आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 1982 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। उस समय लेबनान युद्ध के दौरान बहुत से मासूम बच्चे हिंसा का शिकार हुए थे, तब दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचने के लिए इस विशेष दिवस की घोषणा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों के दर्द को समझना है जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से किसी भी तरह की हिंसा या आक्रामकता का शिकार हुए हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि बच्चों को एक ऐसा सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए जहां वे बिना किसी डर के खुलकर सांस ले सके, पढ़ सके और खेल सके। दोस्तों बच्चों के हाथों में खिलौने और किताबें ही अच्छी लगती हैं, आंसू और जख्म नहीं। उनकी मुस्कान बनी रहे, ये हम सभी की जिम्मेदारी है।

इसके साथ साथियों अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी रोहित सुथार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। इस वक्त शाम के ठीक 6 बज रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मीरा भजन।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, विविधा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से, और इसी कार्यक्रम में आज आप सुनने वाले हैं मीरा भजन। तो कार्यक्रम का पहला मीरा भजन हम आपको सुनवाते हैं प्रिया सक्सेना के स्वर में।

0: प्रिया सक्सेना के स्वर में इस मीरा भजन को भी आपने सुना। कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत मीरा भजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से, जिसे आपने ट्यून किया है FM 102.9 MHz पर। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं, देश दुनिया में कहीं से भी।
1: क्या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल स्टोरी और रील्स देखने के लिए करते हैं? तो अब सोशल मीडिया को बनाइए और भी मजेदार हमसे जुड़कर।
2: वो भला कैसे?
1: कुछ बातें आपको कहनी होती है मगर कह नहीं पाते, कुछ बातें आप सुनना चाहते हैं लेकिन कोई कहने वाला नहीं है,
2: कुछ बातें आपको अच्छी लगती हैं और कुछ नहीं भी लगती, ये किस तरह की बातें होती होंगी, कौन सी होती होंगी?
1: बस आपके दिल की ऐसी ही बातों को समेटे हम आ रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर।
2: सोशल मीडिया पर साझा करिए अपने दिल की बात, सुनिए उसे FM मीरा पर अपने खास गीतों के साथ।
1: ये कुछ बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं फेसबुक पर आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के पेज पर,
2: या इंस्टाग्राम पर कहना चाहते हैं तो सर्च करिए AIR चित्तौड़गढ़। तो अब सोशल मीडिया को यूज करिए और साथ ही उसका लाभ भी उठाइए कुछ बातें कुछ गीत के साथ,
1: प्रत्येक सोमवार शाम 7:30 PM।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए सुनते हैं शबनम चतुर्वेदी के स्वर में इस मीरा भजन को।

0: जब से तुम बिछोड़े मोरे प्रभु जी कब हो न पायो।
1: शबनम चतुर्वेदी के स्वर में इस मीरा भजन के साथ ही कार्यक्रम विविधा अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। इस वक्त शाम के ठीक 6:15 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान, भाग संख्या 208। गायन स्वर है सुरेश वाडकर के, संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

भरत को चतुरंगिणी सेना के साथ चित्रकूट आते देख निषादों की भांति लक्ष्मण के मन में भी आशंका हुई कि राजपद पाकर भरत को प्रभुता का मद हो गया है और श्री राम को वन में अकेला असहाय समझ वे युद्ध करने आ रहे हैं। अतः लक्ष्मण ने भरत से युद्ध करने की ठान ली। श्री राम के चरणों की वंदना कर चरण रज माथे से लगाते हुए बोले, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने वैसे भी हमारा कम अहित नहीं किया है और अब युद्ध करने आ रहे हैं। आखिर हम ये सब कहां तक सहन करेंगे, जबकि आप हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। अग्रज से युद्ध की आज्ञा मांगते हुए लक्ष्मण साक्षात वीररस के अवतार दिख रहे थे। सिर पर जटाजूट और कमर में बंधा बाणों भरा तरकस। भरत का सामना करने को वो पूरी तरह तैयार हैं। उपस्थित समाज के वहां एकत्रित होने के कारण उनका हौसला और भी बढ़ गया है। मन में दृढ़ निश्चय हो गया है कि आज वो अपना सारा पिछला क्रोध

अच्छी तरह प्रकट करेंगे। क्रोधित लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख सारा जगत भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे तात, जो बिना विचारे जल्दी में कुछ करके बाद में पछताते हैं उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता।

अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान भाग संख्या 208। गायन स्वर था सुरेश वाडकर का, संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। श्री रामचरितमानस गान का अगला भाग आप सुन सकते हैं कल इसी वक्त इसी चैनल यानी एफएम मीरा पर, एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। प्रस्तुत है आज की सभा के शेष रहे कार्यक्रमों का विवरण। श्रोताओं, अब से कुछ ही समय पश्चात आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 6:40 पर जिले के चिट्ठी, फिर 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। हमारे मीरा चैनल से आप सुनिएगा शाम 7 बजे देश गान। शाम 7:10 पर हमारे दिल्ली केंद्र से सुनिएगा विशेष प्रसारण, केंद्रीय सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का चौथा भाग। विषय रहेगा स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल से इस बारे में बातचीत की जाएगी। शाम 7:45 पर आप सुनिएगा फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो फरमाइश, जो कि फोन इन पर आधारित होता है। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण किया जाएगा रात 8:15 पर। समाचार संध्या का वक्त रहेगा रात 8:45 पर और इसे आप सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। रात 9:15 पर आप सुन सकते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम और इन कार्यक्रमों को आप सुनिएगा रात 10 बजे तक। ये थी जानकारी हमारी आज की सभा के शेष रही कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। समाचारों में पहले आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर 6:40 पर जिले की चिट्ठी, तत्पश्चात 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रही। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ, हमेशा, देश और दुनिया भर में, कहीं भी।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के,
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा जारी किया। कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई की ओर से उपलब्ध करवाए गए विश्लेषण पर आधारित नहीं होगा। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा के 2 प्रत्याशियों का ऐलान। सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया। देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार आज नई दिल्ली में लॉन्च की गई। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, राज्य सरकार हर घर और खेत तक निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई की ओर से उपलब्ध कराए गए विश्लेषण और एल्गोरिथम निर्णय लेने पर आधारित नहीं हो सकता। मसौदे पर लोगों से इस महीने की 20 तारीख तक सुझाव मांगे गए हैं। इस ड्राफ्ट में एआई सहायता प्राप्त कार्यों, केस प्रबंधन, कानूनी अनुसंधान, दस्तावेज सारांश, अनुवाद और प्रतिलेखन की अनुमति दी गई है। हालांकि इसमें सभी अदालती कामकाज को मानव नियंत्रण में रखना अनिवार्य किया गया है। प्रस्तावित मसौदा एआई को निर्णय देने, सजा तय करने, गवाहों की विश्वसनीयता का आकलन करने और कानूनी परिणामों का निर्धारण करने से रोकता है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाली राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने आज राजस्थान सहित 5 राज्यों के लिए

0: अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की। राज्य में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज की आज नई दिल्ली में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश, स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया गया। पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुदेंद्र टंडन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस बैठक में ऊर्जा क्षेत्र की साझेदारी करने पर विशेष रूप से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी का कल गुजरात और दमन दौरे का कार्यक्रम है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने और जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रौद्योगिकी ने अहम भूमिका निभाई है। एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आज आयोजित सुधार उत्सव में उन्होंने ये बात कही। श्री रिजिजू ने कहा कि तकनीक को अपनाने से मंत्रालयों को लाभार्थियों के जीवन में बड़े बदलाव लाने में मदद मिली है।
1: भारत के कोने में बैठने वाला एक महिला भी हमारा स्कीम का लाभ उठा करके जिंदगी में, तो ये कितना कि हमारा मिनिस्ट्री का स्कीम से लोगों का जिंदगी में बदलाव आया है। 2047 में हमको टारगेट सेट करना ही है, और जब हिंदुस्तान का आजादी का 100 साल पूरा होगा 2047 में कोई गरीब नहीं बचेगा हिंदुस्तान।
0: संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली शुरू की है। आयोग ने इसका सफल उपयोग हाल ही में हुई सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षाओं में किया है। यूपीएससी अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने बताया कि इसके तहत आवेदन भरते समय उम्मीदवार की जो फोटो अपलोड की जाती है उसका मिलान कर देखा जाता है कि वही अभ्यर्थी परीक्षा देने आया है। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निलहानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 1982 में हथकड़ी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले श्री निलहानी ने आग ही आग, शोला और शबनम, आंखें, दिल तेरा दीवाना और तलाश सहित कई प्रसिद्ध फिल्में बनाई। वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। देश की पहली फ्लैक्स फ्यूल यात्री कार आज लॉन्च की गई। फ्लैक्स फ्यूल ऐसे वाहन होते हैं जो पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये 20% से लेकर 100% एथेनॉल तक के ईंधन का उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में इसकी लॉन्चिंग की। इस मौके पर श्री पुरी ने फ्लैक्स फ्यूल तकनीक को देश में ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि इसका बड़े पैमाने में इस्तेमाल होने से एथेनॉल आधारित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। श्री गडकरी ने कहा कि फ्लैक्स फ्यूल वाहन प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात की निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इससे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के तहत बिजली उत्पादन निगमों की ओर से किए गए बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बिजली उत्पादन, आपूर्ति व्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। श्री नागर ने किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के प्रयासों के बारे में भी बताया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर घर हर खेत तक निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है।
2: जयपुर में रूफ टॉप कई जगह लग रहा है, लेकिन वो दिन के समय जो रूफ टॉप लग रहा है वो वापस हमें ट्रांसमिशन में आता है। ऐसे कई हमने जीएसएस चिन्हित किए हैं, जहां हमारे पास वो ट्रांसमिशन वापस आता है तो वही उसी जीएसएस पर हम बैटरी स्टोरेज लगाएं और उसको वही स्टोर करें, वही उसको उपयोग करें ताकि वो ट्रांसमिशन पर हमारा जब पीक हावर्स के टाइम लोड पड़ता है जो वो ना पड़े और वो वहीं डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से वहीं पर ही उसका उपयोग हो जाए, इस पर निरंतर हम काम कर रहे हैं।

0: देश में सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के निर्धारित लक्ष्य का 80% काम अब तक पूरा हो चुका है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि देश भर में 53,000 से अधिक सरकारी भवनों पर कुल 855 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा प्रणालियां लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में इस संबंध में बैठक ली। इस दौरान विभिन्न शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिपो, चार्जिंग स्टेशन बनाने और अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान को 1,150 बसें आवंटित की गई हैं। ये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर और कोटा सहित 8 शहरों में चलाई जाएंगी। इन बसों का ट्रायल हो चुका है। इसके लिए आवश्यक सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश भाजपा की ओर से राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। विश्वास से विकास, सेवा से सुशासन नाम का ये जनसंपर्क अभियान 21 जून तक चलेगा। कार्यक्रम की सहसंयोजक अपूर्वा सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इस दौरान विभिन्न गतिविधियां होंगी।
1: विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक पेड़ माँ के नाम की मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें विभिन्न बूथों पर गांवों में, ढाणियों में समस्त जन को जागरूक भी किया जाएगा पर्यावरण के प्रति, और पर्यावरण के आगे कैसे संरक्षित करना है इसका पाठ भी उनको पढ़ाया जाएगा। 5 जून के बाद में विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता के कैंप, वृक्षारोपण के कैंप और इन 12 वर्षों में जो प्रगति के पथ निर्मित हुए हैं वहां पे भ्रमण करने का, उन प्रगति के जो इमारतें हैं वहां पर जाकर विकास की सूचक से रूबरू होने का मौका मिलेगा।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी ने लोगों से पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया है। विश्व पर्यावरण दिवस से पूर्व राज्यपाल ने अपने संदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत छायादार पौधे लगाने और उनकी उचित देखभाल करने की अपील की है। वहीं पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने और नागरिकों को पौधरोपण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कल से हरियालो राजस्थान 2026 अभियान की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री लाल शर्मा जयपुर से इसकी शुरुआत करेंगे। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में होने वाले इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम लोगों की भी सहभागिता रहेगी। प्रदेश भर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम रखे गए हैं। इस मौके पर पाली के जवाई क्षेत्र में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा। वहीं ब्यावर के टूरिस्ट विलेज देवमाली गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आज देश में आगमन हो गया है। केरलम से मॉनसून ने प्रवेश किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नजर आ रही हैं। इससे राजस्थान में भी आंधी बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है। इस बीच राज्य में आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इससे उदयपुर जिले में दोपहर बाद बरसात हुई, वहीं डूंगरपुर के साबला में ओले भी गिरे। चूरू जिले के बीनासर, सातड़ा और सहला सहित कई गांवों में तेज अंधड़ के बाद अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया है। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही को छोड़कर बाकी स्थानों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से कुछ भागों में अगले 3 दिनों तक तेज आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। वहीं कुछ हिस्सों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने की आशंका है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2025 बैच के 7 प्रशिक्षु अधिकारियों को सहायक कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर जिलों में इन्हें पदस्थ किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा जारी किया। कोई भी न्यायिक निर्णय केवल एआई की ओर से उपलब्ध करवाए गए विश्लेषण पर आधारित नहीं होगा। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए भाजपा के 2 प्रत्याशियों का ऐलान, सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया। देश की पहली फ्लैक्स फ्यूल कार आज नई

0: दिल्ली में लॉन्च की गई। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, राज्य सरकार हर घर और खेत तक निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख आशीष मेहता ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां एक ओर पूरे महीने में भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर बना रहा, वहीं महीने के आखिरी दिनों में आंधी और बारिश की गतिविधियों ने जिलेवासियों को प्रभावित किया। इसी सिलसिले के साथ जून महीने की भी शुरुआत हुई। इससे लोगों को प्रचंड गर्मी से तो निजात मिली, लेकिन अभी भी दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। अस्पतालों में हीट वेव से प्रभावित लोगों के उपचार के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। बदलते मौसम के बीच जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकानों की गिनती और सूचीकरण का काम किया जा रहा है। प्रगणक घर घर जाकर डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। इस दौरान वे लोगों से 33 सवालों के जवाब पूछकर सूचना एकत्रित कर रहे हैं। जनगणना निदेशक विष्णु चरण मलिक बीते दिनों कोटा आए और उन्होंने जनगणना कार्य की प्रगति के संबंध में बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सभी जानकारियां वास्तविक स्थिति के अनुरूप ही दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही डेटा की गुणवत्ता, सत्यापन प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गई। जिले में इन दिनों भूजल संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण को लेकर वंदे गंगाजल संरक्षण जनअभियान चलाया जा रहा है। अभियान की शुरुआत पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने चंबल रिवर फ्रंट से की। यह अभियान कल संपन्न होगा। 15 दिन के इस अभियान के दौरान जल संरक्षण और साफ सफाई से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। इनमें कलश यात्रा, सरोवर और पीपल पूजन, ग्राम सभाओं का आयोजन, जल संरचनाओं की सफाई, प्रभात फेरियां, साइकिल रैली जैसी गतिविधियां शामिल हैं। 3 जून को ऊर्जा विभाग द्वारा जिले भर में ट्रांसफॉर्मर्स के आसपास साफ सफाई की गई। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने दिघोद के डोंगरजय स्थित कमल सरोवर में ग्रामीणों और अधिकारियों के साथ श्रमदान करते हुए घाटों की सफाई की। कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। इसमें जिले में 100 से अधिक किसानों और कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। जिले की महिला किसान वंदना गौड़ और किसान राहुल नागर को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जिला स्तरीय पुरस्कार दिया गया। कोटा का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अगले वर्ष अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा। दिसंबर से नियमित व्यावसायिक उड़ानें शुरू होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ने एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति को लेकर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। संभागीय आयुक्त तथा कोटा और बूंदी के जिला कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बीते महीने जिले को कई विकास कार्यों की सौगात मिली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र की मानस गांव, रंगपुर, किशनपुरा, तकिया, ताथेड़, आरामपुरा, खेड़ा रामपुर, भीमपुर, जाखोड़ा, अरंडखेड़ा, अरलिया, जागीर, गंदीफली और गोदलिया हीड़ी ग्राम पंचायतों में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन पर 18,29,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पिछले दिनों सांगोद स्थित अपने निजी आवास पर ERCP और बिजली विभाग से जुड़े उच्च अधिकारियों और अभियंताओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में परवन वृहद सिंचाई परियोजना की प्रगति, बिजली कनेक्शन और क्षेत्र की विभिन्न लिफ्ट परियोजनाओं पर चर्चा की गई। ऊर्जा मंत्री ने धुलेट टू लिफ्ट परियोजना से तत्काल कनेक्शन जारी करने को कहा, ताकि कनवर क्षेत्र के 14 गांवों को जल्द से जल्द पानी मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने देवली लिफ्ट परियोजना से भी शीघ्र पानी देने के निर्देश दिए। श्री नागर ने मंडिता, कुंदनपुर, विनोद खुर्द और मंडाप गांव का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया और क्षेत्र में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने बीते दिनों युवा आवास प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक की। युवा मामले और खेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार गठित की गई इस कमेटी के साथ कोटा में बन रहे यूथ हॉस्टल के प्रबंधन, रख रखाव सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य जल्द पूरा करने और स्टाफ नियुक्त करने के निर्देश दिए। कोटा जिले

0: चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर रूपेश है, प्रादेशिक समाचार। पहली आज री खास खास खबरां। सर्वोच्च न्यायालय अदालता माए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रा उपयोग रो मसौदो जारी करियो। कोई भी न्यायिक फैसलो केवल एआई री कानून मुहैया कराया गया, विश्लेषण माथे आधारित नी वेला। राजस्थान सू राज्यसभा री 3 सीटा माथे चुनाव खातर भाजपा रा 2 प्रत्याशी ऐलान। सतीश पूनिया और अलका गुजर ने उम्मीदवार बनाए गयो। देश री पहली फ्लेक्स फ्यूल कार आज नई दिल्ली माए लॉन्च करी गई। और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कया राज्य सरकार हर घर और खेत माए लगातार बिजली पुगाबा खातर कोशिश कर रही है। समाचार आरएस आ गए, मैं रचना पारिक और अब है समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ अदालता माए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काम माए लेवन रो मसौदो जारी करियो। इनमाए साफ किनो है कि कोई भी न्यायिक फैसलो केवल एआई री कानून मुहैया कराया गया, विश्लेषण और एल्गोरिदम फैसला लेबा माथे आधारित नी सकेला। मसौदा माथे लोगानु इन मीनारी 20 तारीख तय सुझाव मांगया गया है। इन ड्राफ्ट माए एआई सहायता प्राप्त काम, केस प्रबंधन, कानूनी अनुसंधान, दस्तावेज सारांश, अनुवाद और प्रतिलेखन री मंजूरी दी गई है। हालांकि इन माय सगड़ा अदालती कामकाज ने मानव नियंत्रण माय राखनो जरूरी करियो गयो है। प्रस्तावित मसौदो एआई ने फैसला लेबा, सजा तय करबा, गवाहारी विश्वसनीयता को आकलन करबा और कानूनी नतीजा तय करबा सु रोके है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 3 सीटा माथे होबा वाला राज्यसभा चुनाव खातर आपरा 2 प्रत्याशियों रो ऐलान करियो है। पार्टी सतीश पूनिया और अलका गुजर ने आपरो उम्मीदवार बनायो है। भाजपा रा राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह आज राजस्थान समेत 5 राज्यां खातर आपरा प्रत्याशियों रो नाम ऐलान करियो है। राज्य माए 3 सीटा माथे राज्यसभा चुनाव वेला इन खातर 8 जून तई नामांकन दाखिल करया जा सके है। 18 जून ने वोट पड़ेला और 19 दिन नतीजा ऐलान करया जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएलारी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रीगेज री आज नई दिल्ली माए मुलाकात हुई। इन दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा, निवेश, स्वास्थ्य और ऑटोमोबाइल समेत दूजा हलका माए इमदाद बढ़ाबारी संभावना माते विचार करियो गयो। पूर्वी हलकारा सचिव रुद्रेंद्र टंडन मीडिया सु बातचीत माए बताया कि इन बैठक माए ऊर्जा हलकारी साझेदारी करबा माथे खास रूप में चर्चा करी गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी रो काल गुजरात और दमन दौरा रो कार्यक्रम है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कया के शासन व्यवस्था ने चोखो बनाबा और जनहित योजनावा ने चलाबा माए प्रौद्योगिकी महती भूमिका निभाई है। एनडीए सरकार रा 12 बरस पूरा होबारे मौके नई दिल्ली माए आज राख्या सुधार उत्सव माए या बात की गई। श्री रिजिजू कया के तकनीक ने काम में लेबा सु मंत्रालय रा लाभार्थियों रा जीवन माए बड़ो बदलाव लियाबा माए इमदाद मिली है।
2: भारत के कोने में बैठने वाला एक महिला भी हमारा स्कीम का लाभ उठा करके जिंदगी में, तो ये कितना कि हमारा मिनिस्ट्री का स्कीम से लोगों का जिंदगी में बदलाव आया है। 2047 में हमको टारगेट सेट करना ही है और जब हिंदुस्तान का आजादी का 100 साल पूरा होगा 2047 में कोई गरीब नहीं बचेगा हिंदुस्तान।
1: संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा प्रक्रिया ने और सुरक्षित और साफ गोई बनाबा खातर फेंस ऑथेंटिफिकेशन प्रणाली शुरू करी गई है। आयोग इनरो सफल इस्तेमाल हाल ही मायवी सिविल सेवा और भारतीय वन सेवारी शुरुआती परीक्षा माय करियो। यूपीएससी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार बताया रे इनरे तहत आवेदक भर्ती टेम उम्मीदवारी जो फोटो अपलोड करी जावे है उनरो मिलान कर देखियो जावे है के उन्हें अभ्यर्थी परीक्षा देबा।

0: आयो है। जानिया मानिया फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी आज मुंबई माए देवलोक वह गया। वह 76 बरस रहा। बरस 1982 माए हथकड़ी फिल्मों आपरा कामरी शुरुआत कर बाबाला श्री निहलानी आगिया शोला और शबनम आंखें दिल तेरा दीवाना और तलाश समेत कई नामजोग फिल्मा बनाई। वे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड रा अध्यक्ष भी रहा। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। देश री पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार आज लॉन्च करी गई। फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल रा मेल सु चाल सके है। ये 20 लेर 100% एथेनॉल ने ईंधन रा रूप माए काम माए ले सके है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नई दिल्ली माए इनरी लॉन्चिंग करी। राजस्थान ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनावारा लगस रहते बिजली उत्पादन निगम रिकानियों करिया गया चोखा प्रदर्शन ने लेर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज जयपुर में प्रेस वार्ता करी। इन दौरान वना प्रदेश में बिजली उत्पादन आपूर्ति व्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना माते विस्तारों चर्चा करी। श्री नागर किसाना ने दिन माए बिजली मुहैया कराबा खातर आबाद की। ऊर्जा मंत्री कहा कि राज्य सरकार हर घर हर खेत ताई लगातार बिजली पुगावा खातर कोशिश कर रही है।
1: जयपुर में रूफ टॉप कई जगह लग रहा है, लेकिन वो दिन के समय जो रूफ टॉप लग रहा है वो वापस हमें ट्रांसमिशन में आता है। ऐसे कई हमने जीएसएस चिन्हित किए हैं जहां हमारे पास वो ट्रांसमिशन में वापस आता है, तो वही उसी जीएसएस पर हम बैटरी स्टोरेज लगाएं और उसको वहीं स्टोर करें, वहीं उसको उपयोग करें, ताकि वो ट्रांसमिशन पर हमारा जब पीक आवर्स के टाइम लोड पड़ता है जो वो ना पड़े और वो वहीं डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से वहीं पर ही का उपयोग हो जाए, इस पर निरंतर हम काम कर रहे हैं।
0: देश में सरकारी भवना माथे सौर ऊर्जा संयंत्र लगावारा तय लगसरो 80% काम हाल तय पूरो वैग्यो है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी आज न्यारा न्यारा मंत्रालय और संस्थानारा एहलकाना सागे बैठक करी। श्री जोशी सोशल मीडिया माथे बताया कि देश भर में 53,072 सरकारी भवना माथे कुल 855 मेगावाट बूतारी सौर ऊर्जा प्रणालियां लगाई जा चुकी है। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक बसा चलाबा खातर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और जरूरी व्यवस्था पक्की करबारो काम चल रियो है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में इन बाबत बैठक ली। इन दौरान न्यारा न्यारा शहरा में इलेक्ट्रिक बसा खातर डिपो चार्जिंग स्टेशन बनाबा और दूजा कामारी समीक्षा करी गई। बताई जावे है कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना रे तहत राजस्थान ने 1150 बसा आवंटित करी गई है। ये जयपुर जोधपुर बीकानेर अजमेर अलवर और कोटा समेत 8 शहरा माए चलाई जावेला। इन बसारो ट्रायल वह चुकियो है। इन खातर जरूरी सुविधा बात है तेजियों विकास काम करियो जा रियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई वाली केंद्र सरकार 12 बरस की उपलब्धियां ने जन जन ताई पुगाबा खातर प्रदेश भाजपा रिकानियों राज्य व्यापी अभियान चलायो जावेला। विश्वास सु विकास सेवा सु सुशासन नाम रोयो जनसंपर्क अभियान 21 जून तई चालेला। कार्यक्रम री सह संयोजक अपूर्वा सिंह आकाशवाणी ने बतायो के इन दौरान न्यारी न्यारी गतिविधियां वेला।
2: विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक पेड़ माँ के नाम की मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें विभिन्न बूथों पर गांवों में ढाणियों में समस्त जन को जागरूक भी किया जाएगा पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण के आगे कैसे संरक्षित करना है इसका पाठ भी उनको पढ़ाया जाएगा। 5 जून के बाद में विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता के कैंप, वृक्षारोपण के कैंप और इन 12 वर्षों में जो प्रगति के पथ निर्मित हुए हैं वहां पे भ्रमण करने का, उन प्रगति के जो इमारतें हैं वहां पर जाकर विकास की सूचक से रूबरू होने का मौका मिलेगा।
0: राज्यपाल हरिभाव बागड़े लोगाओं पर्यावरण मुजब जीवन शैली बनाबारी अरज करी। विश्व पर्यावरण दिवसों पहली राज्यपाल आपरा संदेश माए एक पेड़ माँ के नाम अभियान रे तहत छायादार पौधा लगाबा और वारी चोखी देखभाल कर बारी अरज करी। अठीने पर्यावरण संरक्षण ने जन आंदोलन बनाबा और नागरिका ने पौधा लगाबा खातर जाग जगाबारा लगसू कालू हरियालो राजस्थान 2026 अभियान की शुरुआत

0: वेरी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुरो इंडी शुरुआत करेला विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान माए होबावाला इन कार्यक्रम माए जन प्रतिनिधि पढ़निया स्वयं सेवी संस्थावा और आम लोग मौजूद रहेला। प्रदेश भर माए विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके कई कार्यक्रम रखा गया। इन मौके पालीरा जवाई हल्का माए खास स्वच्छता कार्यक्रम चलायो जावेला। इन मौके ब्यावरा टूरिस्ट विलेज देवमाली मा सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान चलायो जावेला। दक्षिण पश्चिमी मानसून आज केरलम सो देश माए आ गयो है। भारत रा मौसम विज्ञान महकमो ने पुष्टि करी है के आवता दो तीन दिन माए मानसून आगे बढ़ सके है। इनसो राजस्थान माए भी आंधी बारिश हो बारो अंदाजो है। इन बीच राज्य माए आज सो नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय वियो है। इनसो उदयपुर जिला माए दोपहर पाछे मेह बरस्यो। वठीने डूंगरपुर रा सांबला माए ओला पड़िया। चूरू जिला रा बीनासर सातड़ा और सहला समेत कई गांव माए तेज अंधड़ रे पाछे चोखो मेह बरस्यो। मौसम महकमो आज नौ जिला माए आंधी बारिश रो ऑरेंज अलर्ट बतायो। वठीने जैसलमेर बाड़मेर जालोर और सिरोही ने छोड़कर बाकी ठोड़ा माथे येलो अलर्ट जारी करियो गयो है। विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप रा पहला संस्करण शुरुआत आज अहमदाबाद में भी। पांच दिन रा इन आयोजन में देश दुनिया रा करीब 500 एथलीट भाग ले रिया है। बाड़मेर में आज उत्तर पश्चिमी रेलवे रा पहला वाटर रिसाइकलिंग संयंत्र उद्घाटन करियो गयो। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा महाप्रबंधक अमिताभ रेलवे स्टेशन माथे इनरी शुरुआत करी। करीब 2.5 करोड़ रुपया री लागत बढ़िया इन कारखाना रेलवे लीलन री धुलाई माए काम माए लियो गयो पानी दोबारा काम माए लियो जा सकेला। और अब है आखिर माए खास खबर एक फेरू। सर्वोच्च न्यायालय अदालत माए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रा उपयोग रो मसौदो जारी करियो। कोई भी न्यायिक फैसलो केवल एआई री कानी मुहैया कराया गया विश्लेषण माथे आधारित नी वेला। राजस्थान उ राज्यसभा री तीन सीटा माथे चुनाव खातर भाजपा रा दो प्रत्याशी ऐलान। सतीश पुनिया और अलका गुर्जर ने उम्मीदवार बनायो गयो। देश री पहली फ्लेक्स फ्यूल कार आज नवी दिल्ली माए लॉन्च करी गई। और ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर कया राज्य सरकार हर घर और खेत ताई लगातार बिजली पुगावा खातर कोशिश करी है। इंडस आगे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी हो। मां को आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमार है 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। आइए सुनते हैं देश गान।

सूर्य हे हम चंद्रमा हम, समूह स्वरों में इस देशगान को भी आपने सुना। कार्यक्रम देशगान आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला देशगान।

अभी समूह स्वरों में आपने सुना देशगान, इसके साथ ही सुगम संगीत का, माफ कीजिएगा, इसके साथ ही देशगान अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.9 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के नीरा चैनल से। इस वक्त शाम के ठीक 7:10 हो रहे हैं। आइए सुनते हमारे दिल्ली केंद्र से रिले विशेष प्रसारण, केंद्रीय सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का चौथा भाग। आज का विषय है स्वास्थ्य सेवा

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants are Dr. V.K. Paul, former member, Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur. Moderator is Priyanka Arora.
2: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
3: नमस्कार।
2: तो जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
3: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशन को देखूं तो जो एक्सेस

0: टू हेल्थ केयर बढ़ी है,
1: जी
0: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता है खास नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार है,
1: जी
0: इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था, उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नज़र से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जो हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं,
1: जी
0: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूँ कि इन दोनों को जोड़ के देखूं तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है, उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
1: जी हाँ, यह भूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
2: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपये डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपये उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 3500-4000 रुपये के बीच में आ गया है। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पे इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है।
1: जी
2: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं।
1: जी
2: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
0: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़
1: जी
0: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल, उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है।
1: जी
0: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, इनके

0: इंसेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है, और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में, जिनमें कि कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए, ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत पीएमजे के अंतर्गत हर रोज 85,000 से 90,000 व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80,000 से 90,000। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है, अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहां तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7%, less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों जोड़ दिया गया है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सबके लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको कि एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की, उसके साथ जोड़ के वयोवंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है, और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था, और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
1: जी,
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने पर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है, और अब इसको आगे ले जाकर के UN IT प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाए

0: खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है, इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे दो बड़ी बीमारियां हैं
1: जी।
0: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है, वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में, उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है, वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो जो भी हमारे कार्यक्रम हैं, अभियान हैं, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से। और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके, तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही है?
2: आपके सवाल में दो हिस्से हैं। पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा
1: जी।
2: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं जो होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों की, इन्फेक्शियस बीमारियों, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा था, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक, इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर 3 साल में 5 साल जैसा प्रोटोकॉल है, इस पे 3 कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई, आंख का इलाज, ENT, कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने
1: जी।
2: शुरू के 5 पैकेजेस 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1,70,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 1,20,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 1,20,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ, सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयां, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री, और PHC वाले में 42 से ज्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे,

0: कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब खत्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, जरूरत होगी तो टेली मेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा। और जो बाकी सेवाएं शुरू से हैं, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, टीबी कंट्रोल है, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चलने ही है, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्लानट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेके जाएगा। क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और जरूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर पीएमसी जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: ये हिस्टोरिक जब देखा जाए

0: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो ये बहुत बड़ी बात है।
1: दूसरी बात आपने कही कि
0: जी
1: हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया है, बहुत बड़ी बात है।
0: जी
1: यह हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में यह माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद हमारा सिद्ध है, हमारे पास यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पनपे हुए सिस्टम है, इन सब के जो योग है
0: जी
1: वो भी स्वास्थ्य के लिए भी और
0: जी
1: स्वास्थ्य से भी ऊपर का है वो, उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको लिए बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम आधुनिक पद्धति का भी हो
0: जी।
1: और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है ये भी अनप्रेसिडेंटेड है।
0: बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जैसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है, और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: जो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने तीन कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है, उसी के लिए वैक्सीन है ये।
0: जी।
2: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। तो एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में, एम्स का संख्या एक से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शियरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं इन सारे में, ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पर बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पर ध्यान देकर के उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये

0: सुविधाएं उपलब्ध है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य आईडी जैसी

0: और जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेली मेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेली मेडिसिन। उसके और डायमेंशन भी है कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
2: We have just seen last 2 days some of the recent data. One of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14 percent points. Now this is remarkable because this is, jisko kehte hain, bilkul phasi hui cheez thi, jisko ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था। और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो पढ़ करके लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ।
1: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो व्हाट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
0: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया। एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक

0: जो मिशन बनाया गया है उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रांग किया गया है। हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमिया का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा जो एक IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया। वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं। काफी बड़े तौर पे इन सारे को पिछले लेसन को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें कि आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए। तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
0: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। ये इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
1: जी,
0: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है, बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं ये सब जगह, सब प्रदेशों में, सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन्स जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है और उसका जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, president, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
5: अभी आपने सुना हमारे दिल्ली केंद्र से रिले खास कार्यक्रम, केंद्रीय सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का चौथा भाग। आज का विषय था स्वास्थ्य सेवा। FM 102.9 MHz

ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। शाम के 7:45 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या साथियों, मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त महेंद्र खेरारो। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम समय जाया नहीं करते हैं और चलते हमारे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग्स की और बाकी बातें करेंगे हम कार्यक्रम के अंत में। कार्यक्रम हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरी आवाज आ रही है?
1: आ रही है सर।
0: अपना परिचय दीजिए, आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: मैं सर जी हिंगोली महाटरा से चांदू जवादे बोल रहा हूं।
0: जी, तबीयत कैसी आपकी?
1: बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है सर जी। और हमारे इधर सर जी थोड़ी थोड़ी कल बारिश हुई थी
0: जी,
1: बुआई नहीं चालू हुई है। हमारे इधर सोयाबीन की बुआई और हल्दी की बुआई चालू होती है ये महीने में।
0: तो देखिए, बारिश का जो है तो वो केरल से दस्तक दे चुका है मानसून, और जहां तक बारिश है तो हमारे यहां भी, यानी कि अभी राजस्थान के कई शहरों में भी पिछले दो तीन दिनों से काफी तेज बारिश, और जिसको हम प्री मानसून भी कह सकते हैं, वो हुई है। और कई जगह पर तो अंधड़ और ओले गिरने की भी सूचना हमको मिली है। तो आपके वहाँ पर भी बारिश किस प्रकार से हुई है, मतलब तेज अंधड़ वाली हुई या नॉर्मल हुई?
1: नॉर्मल बारिश है।
0: तो अभी बताइए कि खेती के अलावा और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती के अलावा सर जी ड्राइविंग करता हूँ।
0: LMV करते हैं या हेवी व्हीकल करते हैं आप?
1: नहीं नहीं, खेतों में सर जी ट्रैक्टर चलाते हैं।
0: तो देखिए, तकनीक का जो खेतों में जो प्रयोग होता है तो उससे तो खेतों में काफी ज्यादा सहूलियत मिलती है खेतीबाड़ी करने में, क्योंकि यही अगर जैसे कि हम पुराने तरीके से पशुओं के माध्यम से अगर हम करते हैं, उनका उपयोग लेते तो काफी।
1: पहले जमाने में खेती लोग करते थे तो हमारे पूर्वज जो करते थे जो बैलों से करते सर जी, और ये जमाने में हमारे जमाने में कैसा है, अभी सभी ट्रैक्टर पे हो रहा है सर जी, और जो पहले की और आज में बहुत फर्क है सर।
0: फर्क तो काफी है, उससे हमको सहूलियत मिलती है और आसानी भी रहती है, और प्लस हम प्रोडक्शन भी ज्यादा
1: माने के
0: पाता
1: सर जी। जो पशुओं से दो दिन में काम चलता था तो अभी ये मशीन आने की वजह से समझो एक डेढ़ घंटे में काम हो जाता है।
0: काम हो जाता है और आसानी से होता है और फिनिशिंग से होता है।
1: जी,
0: अच्छा, अब कौन से गीत की फरमाइश आप करने वाले हैं?
1: सर जी मुझे सुनना है, फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का।
0: जी, और गीत के बोल?
1: और उसमें से का कौन सा भी गाना चलेगा सर? मेरे दोस्त है सुनने ख्वाहिशमंद है, अमरावती जबरदी गुरु जी गढ़ू, गौतम राय बोले, शाहजी बोड़के, मोहन सिंह ठाकुर, लोकेंद्र वर्मा है सर।
0: चलिए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म लाल दुपट्टा मलमल से गीत को।
1: जी जी जी,
0: धन्यवाद आपका।

0: जी, हमारी आपसे पहले कभी बातचीत हुई या पहली बार आपने फोन लगाया है?
1: सर, मैंने पहली बार ही कॉल किया, लेकिन मैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ को लगातार नियमित रूप से सुनता हूँ।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें काफी अच्छा लगा कि आप हमारे नियमित श्रोता हैं। जब आप हमारे कार्यक्रमों से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो फिर इस कार्यक्रम से इतनी दूरी क्यों की आपने फोन लगाने में?
1: सर, आकाशवाणी की पहुँच अब तो पूरे देश में है, और अब तो तकनीक के जरिए, मतलब न्यूज ऑन एआईआर के जरिए आकाशवाणी राजस्थान के सभी केंद्रों को हम आसानी से सुन सकते हैं।
0: जी,
1: और आकाशवाणी क्योंकि बहुजन सुखा बहुजन हिताय का नारा भी है, तो एक संदेश देना चाहता हूँ मैं आकाशवाणी के लिए, क्योंकि 5 जून आने वाला है। तो मेरा संदेश है कि हम पेड़ को लगाएं, जल बचाएं और पर्यावरण को अपने बचाएं, क्योंकि लगातार वैश्विक तापमान बढ़ भी रहा है, तो इसके प्रति सजग रहने की आवश्यकता भी है। खासतौर पर पानी एक बड़ी समस्या भारत के अंदर पैदा हो रही है, तो हम जल को बचाएं, क्योंकि जुलाई के महीने में बरसात होती है, इस जल को हम संरक्षण जरूर करें।
0: जी, आपने सही फरमाया। आपने ये जो हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाने वाले हैं 2 दिन बाद, तो हमें केवल इसे एक दिवस के तौर पर नहीं मनाना है, बल्कि इसको साल के 365 दिन हमको पर्यावरण के प्रति सजग रहना है।
1: जी जी, बिल्कुल सर। और राजस्थान में लगातार हम देखते हैं भी, तो श्रीगंगानगर काफी गर्म भी रहता है, अब तो हमारा जो बुंदेलखंड का बांदा ये भी ज्यादा गर्म होने लगा है, तो पर्यावरण के प्रति युवा पीढ़ियों को सजग रहने की बहुत आवश्यकता है, तो इसके पर्यावरण के प्रति हम जरूर सजग हों, जागरूक हों, पेड़ों की कटाई कम हो और पानी बचाने में हम लोग अपना अहम योगदान प्रदान करें।
0: जी, आपने सही फरमाया है, और हम अच्छा लगा जानकर आपके विचारों को। अब हम ये भी जानना चाहेंगे साथ साथ कि इस कार्यक्रम में कौन से गीत की आप फरमाइश करने वाले हैं।
1: सर, एक लावारिस फिल्म अक्षय खन्ना और मनीषा कुलरा स्टार्टेड फिल्म थी ये लावारिस, कहीं दूर चले जाएं हम, ये गाना काफी अच्छा लगता है हमें सुनने में, तो मैं फरमाइश करूंगा कि हम ये गाना सुनने की फरमाइश करते हैं आपसे।
0: जी, चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपका चाहा गया ये गीत। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी।
1: धन्यवाद सर।

0: हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, अपना परिचय दीजिए, आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी मुरादाबाद से रणवीर सिंह बोल रहे हैं सर, यूपी से। आप महेंद्र जी बोल रहे हैं ना?
0: जी हाँ, मैं महेंद्र बोल रहा हूँ। मैं तो रणवीर जी, क्या करते हैं आप?
1: जी हम कॉपियों का काम करते हैं सर, कॉपी किताबों का।
0: बिक्री का काम करते हैं या बनाने का काम करते हैं?
1: बनाने का सर।
0: बनाने का काम,
1: लाइने खींचने का।
0: अच्छा अच्छा, आप उनको बनाते हैं, तो इसकी क्या प्रक्रिया रहती है, किस प्रकार से करते हैं, और कागज कहाँ से मिलते हैं आपको इसके लिए? मोटा जो कवर है वो कैसे करते हैं, उसको बाइंडिंग कैसे करते हैं आप?
1: जी पहले सादा कागज आता है सर।
0: जी
1: तो सादा कागज पे लाइने खींचते मशीन के द्वारा।
0: हाँ।
1: उसके बाद जो फिर उसकी प्रक्रिया शुरू होती है, गिन के मोड़ा जाता है कितने की स्पेस की कॉपी बनेगी सर।
0: अच्छा, पहले इसमें इनको बाइंड करने के लिए हाथों से काम किया जाता था, सुई धागे से, जो बड़ी बड़ी, तो अब तो उसकी जगह मशीन आ गई है, स्टेपल मशीन आ गई है।
1: जी जी
0: जी। तो आप किस प्रकार से उनको करते
1: हैं? सुविधाएं हो गई
0: जी, आजकल तो बहुत सुविधाएं हो गई है
1: जी, जितनी सुविधाएं

0: वही होते हैं, इनके फिर वो काम करते हैं ना, वो भी फिर कम हो रहे हैं धीरे धीरे। तो जो काम 10 जने करते थे वो दो जने मशीन कर रही है उनका काम।
1: हाँ, ये बात तो सही गई आपने, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में मशीनों का दखल कुछ देखा जाए तो ज्यादा ही हो चुका है।
0: जी जी जी
1: जी। अच्छा, एक बात बताइए आप इसमें कि आप जब कॉपियां बनाते हैं तो जो उनमें से जो कटे हुए जो पार्ट होते हैं, यानी कि जो वेस्टेज जो पेज होते हैं, उनका आप रिसाइकल करते हैं, क्या करते हैं, उसका क्या प्रयोग किया जाता है?
0: जी, वो भेज देते हैं कंपनी वाले, रद्दी जो बचती है ना साइड में उसकी,
1: जी
0: वो बिक जाती है सर 15 रुपए किलो, जैसे जिसका मौका लगता है।
1: जी, तो वो फिर से रिसाइकल होकर वापस उनके पेज बन जाते होंगे?
0: जी जी, वो बोले जाते हैं, वो वहाँ पर कंपनी में चले जाते हैं मिलों में।
1: जी, तो काफी अच्छा लगा सब, ये प्रक्रिया काफी रोचक रही है। अच्छा, और कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनेंगे आज आप?
0: जी, अभी जो फिलहाल अभी सुमन कल्याणपुर जी वो निधन हुआ है जी, तो उन्होंने एक गाना गाया था, बड़ा बेहद गाना, लोकप्रिय गाना है नसीब फिल्म का, जिंदगी इम्तिहान लेती है।
1: जिंदगी इम्तिहान लेती है, बहुत ही प्यारा गीत है ये।
0: जी जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर।
1: जरूर जरूर।
0: लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और सांसों का हिसाब है जिंदगी।
1: जी,
0: कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी।
1: जी,
0: इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी।
1: वाह, क्या बात है। लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, तो इसके पीछे पीछे मैं भी कुछ लाइन जोड़ना चाहूंगा।
0: अरे सर बिल्कुल, क्या बात है।
1: तो लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, हर पन्ने पर एक नया हिसाब है जिंदगी। कभी खुशियों की धूप तो कभी गमों की शाम, हर रंग को अपने में समेटे जनाब है जिंदगी।
0: वाह भाई वाह
1: जी,
0: वाह। तो वही होगा ना, दो जैसे मिलते हैं ना, वो बात हो गई सर।
1: तो बिल्कुल, जब आप और हम जब मिलते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो कार्यक्रम की रौनक तो बढ़ना ही बढ़ना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहें जिंदुनी राज चौकनी कलेक्टी कलेक्टर चित्तौड़गढ़।
1: जी, तो आप हमारी भी आपके प्रति यही शुभकामनाएं हैं। तो रणवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।
0: जी, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार
1: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़। नमस्कार।
1: हाँ सर नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं आप?
1: हाँ सर, मैं बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से बोल रहा हूँ सर, रामचंद मकिया काफिर भाई।
0: आपसे मेरी पहले बातचीत हुई या पहली बार आपने फोन किया है?
1: पहली बार लगा सर, लगाता था, लगती नहीं थी।
0: हाँ तो देखिए, हमारे कई सारे जो श्रोता होते हैं वो इस वक्त कॉल करते हैं हमें, तो इसी वजह से आपसे हमारा संपर्क हो नहीं पाया, आपकी कॉल जुड़ नहीं पाई कार्यक्रम में। जी तो रामचंद्र जी, करते क्या है आप वहाँ पर, बताइए अपने बारे में।
1: मेरा छोटा सा काम है सर, रेडीमेड वस्त्र विक्रेता, रेडीमेड के बने बनाए जो कपड़े आते हैं, जींस शर्ट नाइटी तो वो बेचते हैं, क्योंकि पहले थान कपड़ा बेचते थे, बाद में परिवर्तन हो गया तो रेडीमेड का चलन ज्यादा हो गया। आजकल देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको छठी से लेकर बड़े तक आजकल जींस अपना रेडीमेड का चलन है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने ही कि बच्चे के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक आजकल तो सभी रेडीमेड कपड़ों में ही, रेडीमेड वस्त्रों में ही पसंद करते हैं इनको लेना, खरीदना, पहनना। तो समय के साथ बदलाव तो होता ही है, तो व्यापार में इस प्रकार के बदलाव को आप किस प्रकार से देखते हैं अपने लिए?
1: भाई परिवर्तन जो है वो तो संसार ही अपने को चलना पड़ेगा ना।
0: जी जी, आपने सही कहा है।
1: अगर हम कहेंगे नहीं भाई, हमारे बुजुर्ग धोती और कुर्ता पहनते थे, पैजामा पहनते थे, शर्ट,

0: हमने भी उस टाइप से होना तो नहीं पाएगा, क्योंकि दुनिया जो है परिवर्तन है, दिखावा है, तो वो जरूरी है
1: जी। तो समय के साथ चलना ही,
0: समय के साथ चलना, बिल्कुल सही कहा आपने। आपका देखा था ना, स्टेशन में था ना, महेंद्र जी बोल रहे ना सर?
1: जी हाँ, मैं महेंद्र बोल रहा हूँ मैं। तो अच्छा बताइए कि गीत कौन सा सुनेंगे आज आप?
0: आप सुनेगा समय के दर्पण में सुख दुख अपना देखें, आओ मिलजुल के एक सपना देखें, जीवन धारा का सुनाएंगे सर?
1: जी बिल्कुल, आपने बहुत ही प्यारा गीत पसंद किया है फिल्म जीवन धारा से।
0: ठीक है सर, ओके, वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम, धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार, अपना परिचय दीजिए आप।
1: सोनितपुर आसाम से उमोल बसुमतारी बात कर रहा हूँ।
0: तो क्या करते हैं आप वहाँ पर?
1: जी, हम तो घर पे किसान का काम करते हैं, किटी जोड़ी में काम करते हैं, जो धान का किटी करते हैं, चाय का किटी है।
0: चाय का खेती है आपका वहाँ पर?
1: जी, हमें तो ज्यादा से चाय का ही किटी करते हैं आसाम में। तो आज पहली बार बात हो रही है सर आपसे, और बहुत अच्छा लगा कि आपके प्रोग्राम सुन के और आपसे बात करके।
0: तो हमें भी अच्छा लग रहा है, हमारे नए नए श्रोताओं से जुड़कर हमें काफी अच्छा लगता है। बताइए कि आप जो ये पहाड़ी इलाका जो आपका रहता है वहाँ पर, तो वहां पर खेती किसानों में किस तरह की समस्याएं आपको वहां पर देखने को मिलती है? वहां पर आसानी से खेती हो जाती है या कुछ विशेष आपको वहां पर प्रयत्न करने पड़ते हैं?
1: जी, यहाँ पे तो बारिश नहीं होती तो खेती में थोड़ा मुश्किल पड़ता है, खेती में अच्छा नहीं होता है, अच्छे फसल नहीं मिलता है। जब बारिश आता है तो अच्छी तरह से खेती भी हो जाता है। जो साई का खेती है ना, जहाँ पर भी पानी का जरूरत होता है
0: जी,
1: और धान का खेती भी पानी का जरूरत होता है
0: जी,
1: इसलिए जो बारिश आते है तो अच्छे लगते है।
0: तो वहां पर पानी को रोकने के लिए कोई तरीके आप लेते हैं काम में या किस प्रकार से करते हैं?
1: जो बारिश के पानी से ही करते हैं, कुछ ऐसे पकड़ी बड़े बड़े बड़ा पकड़ी बना के रख, उसके पानी को यहाँ पे जमा करते हैं, उसके बाद उसको यूज करते हैं। जैसे बोरिंग वगैरह भी सुविधा नहीं है हमारे यहाँ पे,
0: पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है वहाँ पर खेती के लिए
1: जी।
0: तो देखिए, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, तो आप मेहनत और प्रयास में कभी कोई कमी मत रखिए। तो
1: जी,
0: आप निश्चिंत रहिए। और ये बताइए कि गीत कौन सा शामिल करें हम?
1: जी, आपसे तो आज पहली बार हो रहा है, पहली बार बातचीत हो रहा है आकाशवाणी के चित्तरपुर केंद्र में, चित्तरगढ़ केंद्र में। लेकिन आज मैं पहली बार कॉल कर रहा है, तो सिर्फ टेम्पुलिम का जो पहली पहली बार मोहब्बत, ये गाना को सुनना है कुमार सानू और अलका याग्निक जी की आवाज में
0: जी। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर इस गीत को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और मैं दोस्तों को नाम ले सकते हैं?
0: जरूर
1: जी। मेरा दोस्तों का नाम है भाईकोन मुंडा, बिमोल बसुमतारी, रमेश पात्रो, जगेंद्र रंगपी और लकेंद्र वर्मा, अविनाश तैली, पुरुषोत्तम कुमार जी है और रमेश प्रजापति है, भगवान सिंह परमार है, राकेश है, पूरन वर्मा है और राम नरेश है, गोल्डी है, केसरी सिंह राजपूत है, प्रेम सिंह सोसोडिया है, मंगीलाल चांदिल है, गौतम राय बोली है और बहुत सुनने वाले दोस्तों को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। और अविनाश तैली है और दिल्ली से धर्मवीर है।
0: हम आपके साथ साथ तमाम दोस्तों को सुनवाते हैं इस गीत को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।

0: कार्यक्रम हेलो परमेश का बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय दीजिए, आप कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बसोड़ा, तहसील मालदा, जिला उज्जैन से।
0: जी प्रेम सिंह जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी थैंक यू सो मच सर, कैसे हैं आप?
0: स्वस्थ हैं। अभी इन दिनों में क्या कर रहे हैं आप? मौसम में थोड़ा सा बदलाव हो चुका है।
1: हाँ जी, मौसम परिवर्तन हो चुका है, तो अभी ट्रैक्टर हमारे खेत में सोयाबीन की फसल लगाने की तैयारी हो रही है। तो की जी, जैसे कि इस महीने में जून में 25 जून तक हमारे यहाँ पे बरसात आ जाएगी सोयाबीन की फसल के लिए।
0: जी
1: हाँ, तो उसके लिए मतलब अभी से खेत को तैयार करना पड़ेगा, तो पहले तो ट्रैक्टर से अच्छी तरह उनको जुताई करेंगे, एक जैसे मतलब समतल जगह बना दी जाएगी, फिर बरसात होगी तो सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी।
0: तो चलिए अच्छा है ये, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और कार्यक्रम में गीत
1: जी सर, वो मैं बताऊँ, मोबाइल एप से कार्यक्रम सुनता हूँ आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के
0: जी,
1: तो एकदम स्पष्ट प्रसारण मिलता है। और इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि हमें हर राज्य के श्रोता के फोन कॉल सुनने को मिलते हैं और उनकी बातें सुनने को मिलती है, साथ में उनकी पसंद के गाने भी सुनने को मिलते हैं,
0: और प्लस उनकी जगह की हमको जानकारी भी मिलती है, उनके कामकाज की जानकारी भी मिलती है। तो हम
1: जी हाँ, और ऐसे मतलब सर बताऊँ ना आपको, ऐसे हमारे दोस्तों की संख्या भी काफी बढ़ चुकी है और आकाशवाणी का ऐसा परिवार हमारा बन गया कि हमारे हर राज्य के श्रोता हमारे दोस्त बन गए हैं, जिनको हमने कभी देखा भी नहीं है, फिर भी उनसे ऐसा नाता बन गया है कि मतलब उनसे बात किए बिना रह भी नहीं सकते,
0: रह सकते। और दूसरा ये भी हमने अभी तक देखा है हमने कि जो हमारे कई सारे श्रोता है ना, वो तमाम दूसरे श्रोताओं के नाम भी इस कार्यक्रम के माध्यम से शामिल करवाते हैं, चाहे उनका फोन आया हो या नहीं आया हो।
1: जी बिल्कुल
0: तो
1: सर,
0: ये आपसी प्रेम,
1: तो आकाशवाणी का ऐसा नाता हो गया एक दूसरे श्रोता से कि मतलब सबने अपना एक दूसरे को अपना पक्का दोस्त मान लिया है,
0: दोस्त मानते हैं और एक परिवार की तरह एक दूसरे को समझते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: जी, तो ये परिवार हमेशा बना रहे। और अब हम गीत की ओर बढ़ते हैं, गीत कौन सा शामिल करें?
1: सर फिल्म का नाम रहेगा खानदान और गाने के बोल नील गगन के उड़ते बादल।
0: चलिए प्रेम जी, हम आपको सुनवाते हैं आपका चाह गया ये गीत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।

0: हेलो फरमाइश, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़, नमस्कार।
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं, ग्राम अकबरपुर, तहसील सुरंग, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।
0: मोहम्मद हारून जी, क्या करते हैं आप?
1: बस खेती बाड़ी करते हैं।
0: तो खेती में दिनों में क्या चल रहा है बताइए?
1: अभी तो कुछ नहीं चल रहा है, फुर्सत है, अभी तो मनोरंजन कर रहे हैं रेडियो पर और फोन लगा रहे हैं आकाशवाणियों पर, और लेकिन अभी बारिश का इंतजार कर रहे हैं।
0: तो बारिश तो जल्दी ही आपके वहाँ पर दस्तक देने वाली है?
1: जी हाँ, बादल तो हो रहे हैं, अब तो इंतजार कर रहे हैं बारिश कब हो, पानी गिर रहा है, दो तीन पानी गिर जाएगा तो बोनी का काम हो जाएगा, सोयाबीन और मक्का का।
0: जी सही कहा आपने। ये हारून जी, कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनेंगे आज आप?
1: फिल्म का नाम है आंखियों के झरों को, इसे सुनवा देना मिल जाए तो।
0: जी बिल्कुल मिलेगा ना, कौन सा गीत टाइटल गीत सुनना चाहेंगे, कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: टाइटल सॉन्ग सुनवा देना आप।
0: जी तो चलिए हम इसका टाइटल गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम आंखियों के झरों से।
1: जी
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।
1: जी धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।

0: तो दोस्तों ये था हमारा हेलो फरमाइश का आज का अंक, और समय अभाव की वजह से हम कई सारे श्रोताओं के कॉल्स इस कार्यक्रम में आज शामिल नहीं कर पाए। हालांकि उनकी रिकॉर्डिंग तो हमने की थी और बहुत ही खूबसूरत रिकॉर्डिंग इस कार्यक्रम के लिए उनकी हुई थी, लेकिन क्यों न हम उन्हीं की आवाज़ में उन श्रोताओं का परिचय भी जान लेते हैं कि किन किन श्रोताओं ने इस कार्यक्रम से आज हमसे जुड़ने की कोशिश की और अपनी बातों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी फरमाइश को आप तक पहुँचाने की कोशिश की।
1: हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
2: हाँ सर, मैं गंगाधर सावनकर बात कर रहा हूँ नांदेड़ महाराष्ट्र से।
3: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सातारा से तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ सर जी।
4: हाँ जी, कई बार नंबर नहीं बोल रहा हूँ।
0: तो दोस्तों यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से और अपनी फरमाइश अपनी ही आवाज़ में तमाम श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए हमारे नंबर पर जो है 01472294020। और हाँ, दिन का ध्यान रखिए, ये रहेगा बुधवार को दिन को 3:30 से 4 बजे तक, तो समय का विशेष ध्यान रखिएगा। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, ये है 01472294020। अब मुझे यानी आपके रेडियो वाले दोस्त महेंद्र खेरारू को दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति और आप सुनते रहिए आपका अपना FM मीरा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो फरमाइश FM 102.9 MHz पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। इस वक्त रात्रि के ठीक 8:15 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: कुतला बोल रहे
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सब यही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
7: किसान वाणी कार्यक्रम सुनवा वाला सगला किसान भाया और बिना ने मारी रुक्मणी की ओर गणो गणो राम राम सा।
8: किसान भाया और बिना ने देखो रुक्मणी के लाल लारे रामू भाई की ओर भी घना मानसू राम राम सा।
7: राम राम रामू भाई, राम राम।
8: राम राम सा रुक्मणी बहन,
7: देखो टेम पे माँ कार्यक्रम लेन हाजिर वे गया। हाँ, कार्यक्रम में नरी सारी जानकारी बाता चिता और मनोरंजन भी करावांगा और साथे साथे मौसम की जानकारी भी देवांगा सा।
8: बिल्कुल सा रुकुणी बहन, और देखो साबे बात करा है किसान भाई और बहना, जून महीना रो पहलो सब तो चल रहा है और ई टाइम देखो गर्मी घनी तेजू पड़ रही है तो आपा ने अपनी सेहत रो ध्यान रखनो है और ज्यादा से ज्यादा ई टाइम आपा लोगों ने पानी पीनो है।
7: और देखो बाणे भी जावा तो मुंडा पे कपड़ो बांध निकलनो है और आंखा पे चश्मा लगान निकलनो है और सेहत को ध्यान तो आपने देखो राखनो है। लारे लारे आपी खेती बाड़ी करा हाँ तो खेती को भी आपने ध्यान रखनो है सा।
8: बिल्कुल राखनो है और खान पान में आइटम थोड़ो सो बदलाव किसान भाई आपने करनो है सा, हल्को भोजन आपने करनो है और नियमित हो गया अभ्यास भी आप लोगों ने करना है।
7: तो देखो अभी खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं, हाँ तो खेती बचाओ अभियान भी अब जो चाल रहे है विके बारे में बताओ।
8: बिल्कुल सा, देखो रुकुणी बहन ई टाइम खेती बचाओ जो अभियान ई टाइम चाल रहे है 1 जून लेन 30 जून तक, तो अपने किसान भाई देखो अपने नजदीकी कृषि विभाग है कृषि विशेषज्ञों भी सलाह अपन लोग ईटम ले सका। यो अभियान रो इस ऐसा कि देखो ईटम जो अपना किसान भाई अंधाधुंध रसायन को प्रयोग खेत में कर रहा है या अपन लोग करा तो इन्हें देखो सा अपने खेत की जो उपजाऊ क्षमता है वह कम भेजा हुए है और खरपतवार नाशक उर्वरकों का उपयोग अंधाधुंध करूँ अपने मर्द को कही है कि बिल्कुल ही जो उपजाऊ क्षमता है वह खत्म होती जा रही है और अपने यही ध्यान रखनो ऐसा कि मृदा को परीक्षण जरूर करना है विके अनुसार अपने अपना खेत महीने कतरो उर्वरक देना है कतरो अपने किसी फसल अपने बोनी है या जानकारी लेनी बहुत ही जरूरी है इसके बारे में बता रहा है।
7: हाँ सा, और देखो एक लारे लारे जैविक खेती प्राकृतिक खेती पे भी आपने जागरूक रहना है और

0: केचुआ की खाद वर्मी कम्पोस्ट को भी आपने प्रयोग करना है और जैविक खाद जो है भी आप खुद भी बनान तैयार कर सका जो किसान भाई आपने खेत में काम में ले सके।
1: और रुक्मणी बहन देखो कि फसल अवशेष को उपयोग भी अपना लोग किसान भाई है जो इसको भी कर सके है, बरसात के पानी को जो उपयोग अपने खेत की मेड़ बनान बचाव कर सके है और संग्रहित कर सके है। फसलों में वाली का उपयोग के लिए ड्रिप फवारा संयंत्र को उपयोग है इसके ऊपर भी जोर दिया जा रहा है ताकि कम पानी में अपनी जो फसल है वह भी पकन तैयार हो जाए और कम लागत लागे है।
0: तो किसान भैया खेत बचाओ अभियान को उद्देश्य यही है कि जट्टे भी यह अभियान चल रहे है बटे जान अपने इसकी पूरी जानकारी लेनी है कृषि विशेषज्ञ और विशेष अधिकारी मिलन संपर्क करने इसके बारे में नवीन तकनीकी के बारे में अपने जान बनाने अपनाना ऐसा
1: और यदि खेत बचाओ अभियान अपनो सफल हुई।
0: और अभी देखो किसान भाई सरकार जो है नरी सारा अभियान चला रखा है मिशन चला रखा है तो बीमा एक है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है जिको उद्देश्य देश ने दाला के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है और आपात में निर्भरता ने कम करना है जो मिशन 6 वर्षा के लिए लागू किया जा रहा है।
1: बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात की है। देखो रुक्मणी बहन की अभी मिशन के अपना जो घरेलू उत्पादन है इन्होंने बढ़ावा देना है और आयात पर निर्भरता ने पूरी तरह समाप्त कर देना है।
0: खेती योग्य क्षेत्र ने बढ़ान और अधिक उपज वाला बीजा को प्रयोग कर उत्पादन ने बढ़ाना है। सरकार किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देन वना की आय ने स्थायी सुधार भी करेगा सर।
1: बिल्कुल किसानों के उच्च गुणवत्ता वाला बीज ने है आधुनिक तकनीकों उर्वरक उपलब्ध करवाने के लिए क्लस्टर आधारित जो खेती है उस पर भी जोर दिया जा रहा है।
0: और देखो अणि मिशन में प्रमुख दलहनी फसला जसान की अरहर उड़द मसूर और मूंग जैसी प्रमुख दाला के उत्पादन में विशेष ध्यान दियो जा रहा है।
1: बिल्कुल सा और दाला की समय पे देखो सा खरीद सुनिश्चित करवा के लिए मजबूत खरीद केंद्र जो बनाया गया है मूल्य स्थिरता लागू करवा के लिए सरकार के द्वारा तो आपने देखो सा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पे भी ध्यान देना है और समय समय पे देखो सा जो योजना निकल रही है इसका को भी अपने किसान भाई ध्यान देता रहे तो बहुत ही फायदेमंद है।
0: अब देखो रामू भाई कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा होना एक चौकसो लोग।
1: बिल्कुल सा

0: वासा किसान भैया बढ़िया सो चोको सो लोग गीत आप हुनियो है धन आ गया गर्मी का धनराज सोनी जोधपुरिया की आवाज में।
1: बिल्कुल सर, रुक्मणी बहन और किसान भाई और बहना देखो, हमेशा मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी कार्यक्रम में लेन हाजिर वहाँ। आज एक जानकारी आपके वास्ते लेन हाजिर भैया की अपने खेत बचाओ अभियान हमारी जिम्मेदारी। आज जानकारी आपने दे रहा है डॉक्टर रतनलाल जी सोलंकी साहब और आप वो बातचीत की दी है सीताराम मावर साहब, तो मिल बैठ सुना पाया चौकी सी जानकारी।
2: साथियों, इस समय कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ में अपने साथ हैं डॉक्टर रतनलाल सोलंकी जो कि प्रमुख वैज्ञानिक हैं और आज इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं खेत बचाओ अभियान को लेकर किस तरह की जानकारी।

0: भी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचने वाली है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में हमारे साथियों की ओर से स्वागत है। राम राम सर।
1: राम राम सर।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही जानकारी चाहते हैं कि खेत बचाओ अभियान की आवश्यकता क्यों महसूस की गई?
1: जी हाँ, खेत बचाओ अभियान की आवश्यकता इसलिए जरूरी है कि किसान भाई जो आज के वर्तमान में जो खेती कर रहे हैं, अंधाधुंध रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड, खरपतवार नाशों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या जो धरती माँ है, किसानों की जो माँ है, धरती है, मिट्टी है, उस मिट्टी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा, और उसमें से जो उत्पादन जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही, जमीन टिकाऊ नहीं रह पा रही है। इसलिए आज सभी से आह्वान है, पूरे देश भर में, पूरे राजस्थान में खेत बचाओ अभियान का 1 जून से 30 जून के अंतर्गत इस अभियान को चलाया गया, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी, विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक गांव गांव में जाकर किसानों को जागरूक कर कर खेत बचाओ अभियान के ऊपर विभिन्न जो बिंदु है उस पर वो चर्चा करेंगे।
0: हमारे किसान भाई का खेती करने का तरीका है, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है?
1: जी हाँ, किसान भाई जो वर्तमान में जो खेती कर रहा है या जो चीज़ डाल रहा है उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। अगर किसान की जो खेत की जो मिट्टी है, धरती माँ, इसको टिकाऊपन रखना है, इसमें से कम लागत में अधिक उत्पादन करना है, तो उनको जो वर्तमान में जो कृषि विभाग है, कृषि वैज्ञानिक है, उनके कृषि विज्ञान केंद्र के विशेष विशेषज्ञ, उनकी सलाह लेनी चाहिए या जो चर्चा कर रहे हैं अभियान में उसको अपनाना पड़ेगा, तभी ये धरती सुरक्षित रह पाएगी।
0: हमारा किसान भाई किस तरह की गलतियां कर देता है जिसके कारण खेत को, मिट्टी को परेशानी का सामना करना होता है?
1: जी हाँ, जैसे बात करते हैं अपन स्वस्थ मिट्टी, संरक्षित पानी और एक जागरूक किसान की अपन बात करते हैं, तो वर्तमान में जो सावधानी जो रखनी है, किसान क्या कर रहा है, जो अभी खेत बचाओ अभियान इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि किसान अंधाधुंध रासायनिक खाद डाला, जो फसल अभी खरीफ की फसल की, अभी जैसे मक्का है, मूंगफली है, सोयाबीन है, सब्जी की फसल है, अन्य फसल की वो बुआई करेगा, तो किसानों से आह्वान हमारा यह रहता है, एक तो किसान अपनी खेत की जो मिट्टी है, मिट्टी, उस मिट्टी का परीक्षण करवाए, परीक्षण के बाद उनके पास जो जांच रिपोर्ट आती है उसको कहते हैं सॉयल हेल्थ कार्ड या स्वास्थ्य कार्ड, उसमें जो सिफारिश दी हुई होती है उसमें संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक की सिफारिश प्रति हेक्टेयर दी हुई होती है, उस सिफारिश को वो उपयोग करे, उसी के आधार पर न तो कम डाले न ज्यादा डाले, बराबर मात्रा में, एक तरह से हम कहते हैं संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करेगा तो किसान के लागत भी कम आएगी, फसल का उत्पादन भी अच्छा रहेगा, जिससे क्या मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, किसान समृद्ध भी बनेगा।
0: हमारा किसान भाई रासायनिक खादों का उपयोग करके पैदावार तो बढ़ा लेता है, लेकिन क्या रासायनिक खादों के अधिक मात्रा में उपयोग करने से खेतों पर दुष्प्रभाव पड़ता है?
1: जी हाँ, किसान जो अभी वर्तमान में कह रहा हूँ, जैसे अंधाधुंध रासायनिक खाद है, रसायन जैसे खरपतवार नाशक, चारा नियंत्रण करने के लिए अंधाधुंध वो रसायन का उपयोग करता है, खरपतवार नाशक, साथ ही जो अपन खाद की बात करते हैं, जो उर्वरक की बात करते हैं, जो अंग्रेजी खाद भी कहता है किसान, धोड़ियाकड़ा राकोड़िया खाद, जैसे यूरिया है, DAP है, सिंगल सुपर फास्फेट है या पोटास है, उसकी एक मात्रा निश्चित होती है मिट्टी परीक्षण के आधार पर डालनी चाहिए, लेकिन किसान क्या अंदाज से डालता है या ओढ़ावट रहता है, गाँव में इसने आधा बैग डाला तो एक बैग डालता, कभी 1.5 डाल देता, 2 डाल देता, उसकी लिमिट नहीं होती है, तो आवश्यकता से ज्यादा डालने से मिट्टी के जो स्वास्थ्य है, मिट्टी की जो भौतिक दशा है, वो दिन प्रतिदिन उसका स्वास्थ्य खराब होता जाता है, जमीन में घुलनशील लवण की मात्रा बढ़ जाती है, जो जमीन की ईसी है वो बढ़ जाती है, अगर वो लिमिट से ज्यादा बढ़ जाती है, और जमीन का जो पीएच मान होता है, जो सामान्य जमीन होता है उसका पीएच मान 7 से 7.5 होता है, लेकिन आजकल अपने चित्तौड़गढ़ जिले की बात करते हैं तो अधिकतर किसानों के खेत की मिट्टी का पीएच मान 8.0 से अधिक हो रहा, कहीं कहीं तो 8.5 है, 9 है, 9.5, यह कह सकते हैं जमीन में तेज बुखार है, यानी जमीन का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, जिससे उत्पादन का कम हो रहा, इसीलिए यह अभियान चलाया जा रहा है भी किसानों को जागरूक कैसे किया जाए, अपनी मिट्टी को भी बचाना है, उत्पादन भी बढ़ाना है।
0: मिट्टी की जांच करके, संतुलित खादों का उपयोग करके हमारा किसान भाई अपने खेत को बचा सकता है। क्या जैविक खेती, प्राकृतिक खेती किसान भाई अपनाकर अपने खेतों को बचा सकेगा?
1: जी हाँ, प्राकृतिक खेती की अपन बात करते हैं, जैसा कि हम बात करें खेत खेत बचाओ अभियान।

0: करना है।
1: मिट्टी की जांच करके संतुलित खादों का उपयोग करके हमारा किसान भाई अपने खेत को बचा सकता है, क्या जैविक खेती प्राकृतिक खेती किसान भाई अपनाकर अपने खेतों को बचा सकेगा?
0: जी हाँ, प्राकृतिक खेती की अपन बात करते हैं, जैसा कि हम बात करें खेत बचाओ अभियान जो चल रहा है, उसमें एक प्राकृतिक खेती यानी जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना भी एक तरह से बहुत ही बड़ा आह्वान है हमारा किसानों से। हम प्राकृतिक खेती एक तरह से किसानों को करने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं, जैसे किसानों का हम अभियान में शिविर में मैं खुद भी जा रहा हूँ, किसानों को जागरूक कर रहे हैं, जो गोष्ठी कर रहे हैं या जो प्रशिक्षण हम उनको दे रहे हैं उसमें जैविक खेती के यानी किसान के पास जो संसाधन है जैसे गोबर की खाद जो कंपोस्ट खाद होती है वो कच्ची खाद को खेतों में डाल देता है उससे नुकसान होता है, उसकी जगह एक तरह से जैविक खाद बनती है वर्मी कंपोस्ट जिसको केचुए की खाद कहते हैं, अगर वो केचुए की खाद में परिवर्तन कर उस खाद का अपनी फसल में उपयोग करे जिसमें धरती में पोषक तत्व की मात्रा भी ज़्यादा आपूर्ति होगी, फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा, तो एक तरह से वो जैविक खाद तैयार कर सकता है। इसके अलावा वर्मीवास है, इसके अलावा बहुत सारे जैविक खेती के जो अवयव है या आयाम है जैसे बीजामृत है, जीवामृत है, डीकम्पोजर है, पंचगव्य है या ब्रह्मास्त्र है, अग्नियास्त्र है, इनका वो खुद ही किसान बनाकर वो प्रयोग करके अपनी जमीन में प्रयोग करे ताकि खेती में लागत भी कम हो और जमीन भी टिकाऊ रहे।
1: जैविक खेती और प्राकृतिक खेती करने से कैसे हमारा खेत बच पाता है?
0: जी हाँ, प्राकृतिक खेती का बात अपन करते थे, मैंने कहा कि किसान के पास जो संसाधन है उसी से जैसे किसान बेल लगता है, गाय बेल पशुपालन करता है, उसका गोबर होता है, उस गोबर की जगह वो रोड़ी में डालता है जिसको कंपोस्ट खाद कहते हैं, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, उसकी जगह वो वर्मी कंपोस्ट बना ले अपने खेतों में डाले। इसके अलावा जो मलमूत्र है इसका मूत्र भी इकट्ठा कर सकता है, उसका भी वो फसल में स्प्रे कर सकता है। साथ ही बेल होते हैं किसानों को जो खेती में जुताई करने का काम आता है, वो भी प्राकृतिक खेती में उसका संसाधन है। साथ ही किसान जो खाद बनाता है या फसल उत्पादन लेता है उसके अवशेष बच जाए उसका भी वो डीकम्पोजर का प्रयोग के फसल को अवशेष को सड़ाकर खाद के रूप में क्रम ले, तो ये एक तरह से जैविक खेती प्राकृतिक खेती के अवयव है।
1: खेतों को किस तरह से लाभ पहुंचता है ऐसा करने से?
0: जी हाँ, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, मैंने कहा जैसे अधिक मात्रा में जैविक खादें वो अगर प्रयोग करता है, भले चाहे कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है या नेटिव कंपोस्ट है या ग्रीन मैन्योर जो हरी खाद कहते हैं, इनका अधिक प्रयोग करने से मिट्टी की जो दशा है, मिट्टी का पीएच कम हो जाता है, जमीन में कार्बनिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी के जो भौतिक दशा है वो सुधरती है और मिट्टी को उत्पादन देने की क्षमता बढ़ जाती है। पौधा कोई भी फसल लेते हैं पौधे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और फसल की अच्छी पैदावार उसको मिलती है।
1: डॉक्टर साहब, जल संरक्षण को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है हमारे खेतों को बचाने के लिए?
0: जी हाँ, किसान भाइयों जैसा हमारा जो खेत बचाओ अभियान है, हम किसानों को ज़्यादातर आह्वान कर रहे हैं जल संरक्षण और उसका कुशलतम उपयोग कैसे हो, उसके लिए हम किसानों को जैसे कह रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम जब कर रहे हैं किसान गोष्ठी या प्रशिक्षण, उसमें जैसे खेत की मेड़बंदी करनी है, खेत को समतल करना है, वैसे जहाँ बरसात होती है उस जल को अपन ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण यानी जैसे नाड़ी है, तालाब है, बांध है, उसमें पानी को अपन संरक्षित कैसे कर सके उसके लिए उनको आराम करें। साथ ही हमारे कृषि विभाग की जो अनुदान पर योजनाएं है जैसे फार्म फंड है, डिग्गी है आदि का भी हम अधिक से अधिक प्रचार करें, किसान फार्म फंड ज्यादा से ज्यादा बनाए, उसमें बरसात के पानी को संग्रह करें, फिर वो रबी की फसलें जो बोता है उसमें उस पानी का उपयोग करें ताकि फसलों की बुआई हो सके, कम पानी में भी किसान अच्छी पैदावार ले सकता है। साथ ही संचित जल का उपयोग हो, ड्रिप लगाए, पाइपलाइन का उपयोग करे, कोई किसान बगीचा लगा रहा है तो उसमें ड्रिप जरूर लगाए, या फसलों में सिंचाई करे तो खुली नहीं करके वो फंवारा सेट का उपयोग करे ताकि जो जल है कम पानी में अधिक क्षेत्र में वो सिंचाई कर फसल का अच्छा उत्पादन ले सके।
1: आधुनिक तकनीक का, आधुनिक मशीनरी का भी उपयोग हमारा किसान भाई करे तो ज्यादा मात्रा में सही तरीके से खेतों को हम बचा पाएंगे और खेत बचाओ अभियान का हिस्सा बन पाएंगे।
0: जी हाँ, खेती में किसान अगर मशीनीकरण या आधुनिक यंत्रों का उपयोग करता है तो क्योंकि आजकल वर्तमान में जो श्रमिक होते हैं या लेबर की बात करते हैं, जैसे निराई गुड़ाई करने की बात करते हैं, फसल की बुआई की बात करते हैं, तो आजकल सारी मशीनें उपलब्ध है और बहुत सारी मशीनों के ऊपर किसानों को कृषि विभाग की तरफ से अनुदान भी उपलब्ध है। तो मेरा कहना है जैसे किसानों को बुआई करना है तो दो पेटी वाली सीटी लाती उससे वो बुआई करे, खाद अलग डाले, बीज को अलग डाले, उसके अलावा निराई गुड़ाई के लिए जैसे कुल्पा लगाए उसके लिए मशीनें उपयुक्त है, उसके अलावा अगर उसको खरपतवार नाशक या कोई फसल में कीड़ा लग गया उसके लिए दवा का उपयोग करना है तो पावर स्प्रे मशीन भी उपलब्ध है। इसके अलावा फसल की जुताई करनी है तो रोटावेटर आता है, उससे जुताई भी हो जाती है, मिट्टी समतल भी हो जाती है, खेत अग भी जाता है, उससे जमीन पोछी भी हो जाती है तो उसका भी उपयोग कर सकता है। या जैसे पश पर जुताई करे तो उसमें रोटावेटर का भी उपयोग कर सकता है, कल्टीवेटर का, डिस्क फ्लो इनका उपयोग कर सकता है। साथ ही अगर कस्टम हायरिंग की बात करते हैं तो बहुत सारे कस्टम हायरिंग

0: खुले हुए किसान के पास अगर ये साधन नहीं है तो वहाँ कम किराए पर वो साधन लेकर अपने खेत के उपयोग कर सकता है, जैसे फसल कटाई करने तो कंबाइन हार्वेस्टर का वो उपयोग कर सकता है, जिससे क्या उसका समय भी बचेगा, श्रम भी बचेगा और जल्दी काम उसका हो जाएगा।
1: खेत बचाओ अभियान को लेकर किस तरह का कार्य हमारे किसान भाइयों को करने की आवश्यकता रहेगी, कैसे वह अपनी भूमिका निभा सकता है?
0: जी हाँ, किसान भाइयों, खेत बचाओ अभियान इसीलिए चलाया जा रहा है क्योंकि कृषि मंत्रालय और राजस्थान कृषि विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से ये पूरे जिले में, पूरे देश में, पूरे राजस्थान में अभियान चलाया जा रहा है जो 1 जून से 30 जून चलेगा। उसमें हमारे कृषि विशेषज्ञ वैज्ञानिकों का यही किसानों से आह्वान रहेगा, जो बच्चा खेत का जो मिट्टी है, मिट्टी को टिकाऊपन यानी लंबे समय तक अगर सुरक्षित रहना और इससे लंबे समय तक अपन को खेती करना है तो इसमें एक तो हम आह्वान करते हैं किसानों को संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक का उपयोग करें और जमीन का, जैसे हम कहते हैं मिट्टी की सेहत अगर सही रहेगी, कम लागत रहेगी तो टिकाऊ कृषि उसमें होगी तो किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बनेगा। अगर मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो दिन प्रतिदिन वो अधिक से अधिक उत्पादन वो लेता रहेगा। अगर मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम यही कहते हैं कि जैविक खादों का अधिक से अधिक या हरी खाद का उपयोग समय समय पर करें और जो जीवाणु खाद आते हैं या बायो फर्टिलाइजर जिसको कहते हैं आजकल जो बायो फर्टिलाइजर का, उनका अधिक से अधिक उपयोग करें। बीज उपचार करना तो जैविक जो चीज़ आ रही है ट्राइकोडर्मा या अन्य, उनका उपयोग अधिक से अधिक करें ताकि जमीन में पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ेगी और जमीन अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमेशा वो अच्छा उत्पादन लेता रहेगा।
1: किसान भाई कैसे सहयोग कर सकते हैं खेत बचाओ अभियान में?
0: ये किसान भाइयों से मेरा यही आह्वान है क्योंकि पूरे जिले का हमने कार्यक्रम बना रखा है, हर ब्लॉक में हमारे 2-2 दिन का इस कार्यक्रम है खेत बचाओ अभियान में, तो स्थानीय कृषि प्रेक्षक को संपर्क करके अभियान जहाँ हो रहे वहाँ किसान अगर उपस्थित होते हैं, वहाँ आते हैं मीटिंग में हमारी जब कार्यक्रम होता है तो हम किसानों को रूबरू हो सकते हैं या उनकी समस्या का भी हम वहाँ मौके पर समाधान कर सकते हैं। बाकी उनको जो तकनीकी है वो तकनीकी हम उनको देते हैं, संतुलित मात्रा में खाद है असली और नकली उर्वरक अगर पहचान करनी है उसके बारे में जानकारी करते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाकर कैसे बनती है या सारे जो जैविक आपको बनाना, बीजामृत है, जीवामृत है, पंचगव्य है या अन्य जो बनाना है उसको बनाने की तकनीकी भी हम मौके पर उनको बताता है। किसान अपने खुद के संसाधन से खुद चीज बनाएगा तो उसकी चीज जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, उसकी बहुत अच्छी रहेगी और उसको विश्वास रहेगा मैंने बनाई ये चीज उस पर काम करेगी। तो इसलिए सारी चीजें हमारा किसानों से यही रहता है, एक तो प्राकृतिक खेती को हमारा बढ़ावा देना है और इस धरती को बचाना है, जो भूमि का स्वास्थ्य को बचाना है, मिट्टी की सेहत को बचाना है, इस पर हमारा जोर रहेगा। इसलिए संतुलित मात्रा में मृदा स्वास्थ्य कार्ड का इसके महत्व के बारे में उनको बताते हैं और इसके साथ सिफारिश में जो दी हुई इसको कैसे उपयोग करना, साथ ही जो उर्वरक उपयोग करता है उसको किस समय और किस तरीके से क्या सावधानी रखनी उनके बारे में सारी जानकारी दी जाती है। तो एक तरह से किसानों को जो अभी अभियान हमारा जो चल रहा है खेत बचाओ अभियान, उसमें सारी बातें की जाती है, मिट्टी से लगाकर फसल उत्पादन से लगाकर फसल सुरक्षा लगाकर सारा थ्रेसिंग भंडारण सारी या गुणवत्ता या उसमें वैल्यू एडिशन भी करना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं ताकि किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत बने, किसानों का उत्पादन बढ़ेगा तो आर्थिक स्तर उसका सुधरेगा तो किसान भी आर्थिक समृद्ध बनेगा।
1: डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है, हमारे साथियों की ओर से आभार, धन्यवाद। राम राम सा।
0: राम राम सा।
2: वासा किसान भैया, खेत बचाओ अभियान हमारी जिम्मेदारी पे डॉक्टर रतनलाल सोलंकी जी बढ़िया सी जानकारी दी थी और अणु बातचीत कर सीताराम महावर जी।
3: बिल्कुल सा, और बचाना लोकगीत की दुनिया में सुनना एक चोको सो लोकगीत।

0: वसक्सन भाई बना अच्छो सो लोग गीत अब राम भरोसी राधिका की आवाज में हुणियो।
1: अबे देखो बात करा बीजा अमृत के बारे में, तो बीजा अमृत देसी गाय के गोबर गोमूत्र और अन्य प्राकृतिक चीजों बढ़ियों एक जैविक घोल है जिको मुख्य उपयोग बीजा ने उपचारित करवा के लिए कियो जावे है। यो बीजा ने फंगस व बीमारियों बचावे और वणा के अंकुरण में तेज करे है।
0: बिल्कुल सा। और देखो रुक्मणी बहनी में बीजा अमृत को जो उपयोग है आप वो तीन तरीकों में कर सका हाँ। एक है बीज उपचार, अपन खेत में बीजा ने कही है कि प्लास्टिक की थैली या बोरी तिरपाल में फैला रहा हाँ। बीजा में बीजा अमृत जो है सब छिड़काव करना है और इन्हें अच्छी तरह इन्हें मिलाना है ताकि वो घोल एक समान बह जावे है और हर बीज पे छिड़ जावे।
1: बीजा ने कुछ देर या तो एक दिन के लिए छाया में सुखा देना है पचे एक ही बुवाई करनी है। दूसरा तरीको है रोपाई को। यदि किसान भाई धान प्याज या मिर्ची जैसी फसल की रोपाई करे तो पौधा की जड़ा रोपवाऊ पहली बीजा अमृत को घोल में डुबा देवे पचे विकी रोपाई करनी है। अणियों पौधा की नई जगह पे लगावा वाला झटकाओ राहत मिलेगा और जड़ा मजबूत वेगा।
0: और तीसरा तरीका है देखो किसान भाई मिट्टी में छिड़काव, तो बीज की बुवाई या जुताई के टाइम अपना किसान भाई 15-20 लीटर बीजा अमृत प्रति हेक्टर पानी में मिलान मिट्टी में सीधो छिड़काव कर सके।
1: यो मिट्टी में लाभदायक जीवाणु की संख्या ने बढ़ावे है और फसल की उपजाऊ क्षमता में भी सुधार करे है। बीजा मृत बीजा की अंकुरण क्षमता बढ़े है और मिट्टी में फैलाव वाला फंगस और बैक्टीरिया भी सुरक्षा मिले है। तो आप सबने सस्तो और प्राकृतिक विकल्प जो है विने अपने काम में लेना है। बीजा मृत ने जनी लागत भी कम लगेगा और उत्पादन भी बढ़िया रहेगा।
0: बिल्कुल सर किसान। और जाता जाता देखो सर कार्यालय कृषि उपज मंडी ने मरा का भाव बता दू सर। गेहूँ का भाव आ गया है 2471 रुपए प्रति क्विंटल, 2711 रुपए प्रति क्विंटल। मक्का पेड़ का भाव रहा है 1591 रुपए प्रति क्विंटल, 2226 रुपए प्रति क्विंटल।
1: आसान ही जो का भाव है 2301 रुपए लेन, 2564 रुपए प्रति क्विंटल। आसान ही चना का भाव है 4600 लेन, 5660 रुपया। सरसों का भाव है 6550 लेन, 7350 रुपए प्रति क्विंटल। और सोयाबीन का भाव है 5200 लेन, 7000 रुपए प्रति क्विंटल।
0: बिल्कुल। और आज मूंगफली की बात करें आप किसान भाई हैं तो आज निबड़ा मंडी में मूंगफली को भाव रहा है 6500 रुपए प्रति क्विंटल लेन, 8800 रुपए प्रति क्विंटल। लहसुन को भाव रहा है 5000 रुपए लेन, 17600 रुपए प्रति क्विंटल।
1: आसानी एलसी को भाव है 8201 को लेन, 9051 रुपए प्रति क्विंटल। इस सब गोल को भाव है 9000 लेन, 10500 रुपए प्रति क्विंटल। अब जाता जाता मौसम की बात करा तो आज को अधिकतम तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान है 29 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता है 32% और हवा की रफ्तार है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की।
0: और काले के मौसम की जानकारी दे दूं, काले अधिकतम रही किसान भाई तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान रही 29 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता रही 37% और हवा की गति काले रही किसान भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
1: और देखो मौसम बदल तो रेडियो है, कभी तो आंधी तूफान आ जाए, कभी तेज गर्मी आ जाए, तो इनका बदलता मौसम में आपनो ध्यान रखना है, खावा पीवा को ध्यान रखना है और बाहर निकला तो भी आपनो ध्यान रखना
0: है। बिल्कुल सर किसान भाई। और अभी टाइम भी है आप लोगों इजाजत लेवा को, तो दो दो इजाजत माने राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार है।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। FM 102.9 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ के मीरा चैनल से। रात्रि के 8:45 होने को हैं।

कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले समाचार संध्या। समाचार पहले हिंदी में प्रसारित किए जाएंगे, तत्पश्चात रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लैम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully.
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा

0: कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
1: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

0: एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
3: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे, सुखद परिणाम आ भी सकता है।
1: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
4: अहमदाबाद का एक्का एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरण अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं शोध

लता मंगेशकर के बाद आइए अब सुनते हैं आशा भोसले को फिल्म अनामिका में। रचनाकार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

आशा भोसले का ही गाया एक और गीत सुनते हैं अली बाबा 40 चोर से। धुन बनाई है आर डी बर्मन ने, वो लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।

नूतन समर्थ बहल, जी हां नूतन, इनका जन्म शोभना समर्थ और कुमार सेन समर्थ के घर सन 1936 के 4 जून को हुआ। चार भाई बहनों में नूतन सबसे बड़ी थी। पिता कुमार सेन समर्थ जाने माने कवि और निर्देशक थे तो माता शोभना समर्थ अपने जमाने की मानी हुई अभिनेत्री थी। पौराणिक फिल्मों में उनके द्वारा अभिनीत सीता के किरदार को इतना सराहा गया था कि शोभना समर्थ और सीता ये जैसे एक समीकरण ही बन गया था। आज हम बात कर रहे हैं इनकी सुपुत्री नूतन की। नूतन को अभिनय कला, संस्कृति के संस्कार धरोहर ही में मिले थे, लिहाजा उनकी माताजी ने 1950 में नूतन को ब्रेक देने के इरादे से फिल्म हमारी बेटी का निर्माण किया। तब नूतन की उम्र महज 14 साल की थी। उल्लेखनीय बात यह है कि नूतन इस छोटी सी उम्र में मिस इंडिया खिताब की विजेता रही थी। 1953 में उन्हें बड़ा ब्रेक मिला शम्मी कपूर अभिनीत फिल्म लैला मजनू में। सरदार मलिक साहब का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय बन पड़ा था इस फिल्म का।

नूतन एक संवेदनशील अभिनेत्री थी। उनके चेहरे पर उभरने वाली भावभंगिमाएं उनकी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी को जैसे कॉम्प्लीमेंट करती थी। यही उनके खूबसूरत अदाकारी की खूबी थी। किसी भी चरित्र की गहराई में घुसकर उस चरित्र को जीवंत करने के लिए अधरों का कंपन, उनके भाल पर उभरती रेखाएं, आंखों की सूक्ष्म हलचल, इन बातों से वो पात्र को बिल्कुल जीवंत बना देती थी। यही वजह है कि सन 1955 में अमिया चक्रवर्ती द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म सीमा के लिए उनका चुनाव हुआ। इस फिल्म में उनकी भूमिका को इतना सराहा गया कि इस साल के फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया।

दोस्तों, फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 5 बार जीतने वाली अपने जमाने की वो पहली अभिनेत्री थी। बात सन 1959 की है। सामाजिक विषमता की विभिषिका को बिंब बनाकर फिल्मों के साथ साथ सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले सुलझे हुए निर्देशक बिमल रॉय फिल्म सुजाता का निर्माण कर रहे थे। नारी प्रधान और सामाजिक विषमता के विषय वाली ये फिल्म और इसका सुजाता का किरदार बड़ा ही जटिल था। इस फिल्म के रोल के लिए नूतन का चुनाव हुआ और नूतन ने भी अपनी सशक्त अदाकारी से इस फिल्म के इस किरदार में जैसे जान फूंक दी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

नूतन अपनी अभिनय क्षमता के कारण जटिल से जटिल भूमिकाओं को साकार करने में महारत रखती थीं। फिल्म सुजाता के बाद जो बहुचर्चित उनकी फिल्म आई वो थी बंदनी। सन 1963 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। बिमल दा ने इस फिल्म का विषय भी बड़ा ही हटके चुना था। स्त्री का मनोविज्ञान और उसकी पेचीदगी को दर्शाने का मार्मिक चित्रण था इस

फिल्म है। जैसे कि फिल्म के नाम से ही जाहिर होता है, ये फिल्म नारी प्रधान फिल्म थी। नूतन ने अपने तरल अभिनय से विषय वस्तु की जटिलताओं को समझते हुए बड़ी सहजता से उन्हें अभिनीत किया था। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया।

1959 में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पेइंग गेस्ट में उन्होंने अदाकारी के कुछ रोमानी अंदाज पेश किए। इनके हीरो थे एवरग्रीन अदाकार देवानंद।

0: देखा?
1: कुछ ऐसी ही रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी अनाड़ी, जो आई थी सन 1959 में। इस फिल्म में नूतन के हीरो थे अपने जमाने के ग्रेट शोमैन राज कपूर।

1958 में एक फिल्म आई थी सोने की चिड़िया। इस म्यूजिकल फिल्म में भी नूतन ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। दोस्तों, देवानंद साहब के साथ उनकी एक और चर्चित फिल्म आई थी 1960 में, जिसका नाम था तेरे घर के सामने।

इसी दौरान यानी सन 1959 के आसपास नूतन ने नेवल कमांडेंट रजनीश बहल से शादी कर ली और वो नूतन समर्थ से नूतन समर्थ बहल बन गई। इसी साल आई थी फिल्म छबीली। इस फिल्म में उन्होंने जितने गाने उन पर फिल्माए गए थे स्वयं ही गाए थे। इस फिल्म का निर्माण किया था उनकी माताजी शोभना समर्थ ने।

साठ से सत्तर के दशक में उनकी कई फिल्में आईं। बहुत कम फिल्में हैं जो नहीं चली। लगभग हर फिल्म का संगीत हिट था, चाहे 1952 की फिल्म शीशम हो या 1954 की फिल्म शबाब हो, 1956 की बारिश हो या 1957 की फिल्म दिल्ली का ठग हो, 1958 की फिल्म आखिरी दांव हो या 1964 की फिल्म खानदान हो, 1965 की फिल्म रिश्ते नाते हो या हो 1900

0: जहां तक फिल्म फेयर के चौथे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का सवाल है, वो उन्हें मिला था फिल्म मिलन के लिए जो रिलीज हुई थी 1967 में, प्रसाद प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनी थी।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
2: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
2: पवन करे शोर।
1: अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

1978 में आई फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म में उनके सशक्त अभिनय के लिए भी उन्हें मिला था फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। इस समय उनकी उम्र थी 42 साल।

0: दोस्तों, अभिनेत्री नूतन ने मुख्य अभिनेत्री की भूमिकाएं तो कई की, साथ ही साथ चरित्र भूमिकाएं भी की हैं। इनमें जो यादगार हैं वो हैं 1986 में आई फिल्म जो कि दिलीप कुमार के साथ थी, फिल्म कर्मा।
1: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी,
2: तो क्या कहा आपने?
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू, सुबह सवेरे काम पे जाऊं आई लव यू,

1985 में फिल्म मेरी जंग, जिसमें उन्होंने अभिनेता अनिल कपूर की माता का रोल किया था। दोस्तों, नूतन ने कुल 70 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी पहली फिल्म थी 1950 में आई फिल्म हमारी बेटी, और आखिरी फिल्म थी 1994 में आई फिल्म इंसानियत, जो उनके स्वर्गवास के पश्चात रिलीज हुई थी। दोस्तों, उनके बेटे मोहनीश बहल एक सफल अभिनेता हैं। नूतन की छोटी बहन अपने जमाने की जानी मानी मारूफ अदाकारा रही हैं तनुजा। इन्हीं की बेटी है काजोल भी, जो हिंदी फिल्मों में एक कामयाब अदाकारा हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने फिल्मों में नूतन के अभिनय को सराहते हुए सन 1974 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। हिंदुस्तानी फिल्मों में अदाकारी के शिखर को छूने वाली शोभना कुमार सेन समर्थ की ये छबीली बेटी अपने बेटे मोहनीश बहल को खानदान की अदाकारी की ये यादगार धरोहर सौंपकर 54 वर्ष की छोटी सी आयु में 21 फरवरी 1991 में हम लोग की दुनिया छोड़ परलोक सिधार गई।

0: तो ये था आज के फनकार ये कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने की जाने मानी अभिनेत्री नूतन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गावा बैठी पियाए।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। इस वक्त रात्रि के ठीक 10 बज रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यही संपन्न होती है। कल सुबह 8:52 पर हमारी आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। जय हिंद।

0: मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई तो मुझे महसूस हुआ मेरे कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं किसे दिखाऊं।
1: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
3: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का चित्तौड़गढ़ केंद्र है। इस वक्त रात्रि के ठीक 10 बज रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यही संपन्न होती है। कल सुबह 8:52 पर हमारी आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति प्रदान करें। जय हिंद।